नमस्कार। FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 14 अक्टूबर 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 51 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव में 15 से 20 लोग सवार थे। ये सभी एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000 रुपए और घायल को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले में शामिल होंगी। इस मेले का आयोजन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत, विश्व में भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। ये सम्मेलन बृहत्तर भारत

0: परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के साथ दुनिया के विभिन्न देशों के ऐतिहासिक और वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज विशेष अभियान के 6वें चरण के अंतर्गत 1 दिन का स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे का विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहे विशेष अभियान के क्रियान्वयन चरण का हिस्सा है। अभियान के अंतर्गत कार्यस्थलों पर श्रमदान के माध्यम से सफाई, स्वच्छता अभियान और ई कचरे के निपटान जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है और व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं और व्यापार समझौते को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से आकलन कर उनमें आवश्यक बदलाव करने होंगे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों की गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा अपनाने के साथ संपन्न हुई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की।
1: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद तथा हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, संकटों का सामना करने में सक्षम, सुरक्षित, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के पीड़ितों, उनके परिवारों और प्रभावित देशों की सरकारों के प्रति गहरी संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। साथ आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: कांगो में इबोला के प्रकोप से अब तक 9,000 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 4,381 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संक्रमण 7 प्रांतों के 65 स्वास्थ्य क्षेत्रों तक फैल चुका है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने चिंता जताई है कि समुदायों में संक्रमण फैलना जारी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने बैंक ऑफ अमेरिका पर मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन के लिए 1,20,00,000,000,000 का जुर्माना लगाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार ये उसके इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा जुर्माना है। और डेनमार्क ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर का सामना करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती, पार्वती।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर श्री रामचरितमानस गान का भाग 341 सुनवाया जाएगा। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला शुरू हो रही है, राग समय चक्र। कलाकार है गायिका मंजरी आलेगांवकर। आज सुनेगा इस श्रृंखला की पहली कड़ी। ये कार्यक्रम शाम 6:45 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के।

8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रलोक, सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम होता है। आज ये कार्यक्रम केंद्रित है कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर। ये कार्यक्रम रात 9:30 पर दोबारा सुना जा सकता है। सुबह 10 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभिनेता चंदन रॉय से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत का दूसरा भाग सुना जा सकता है। प्रस्तुत करता है जुबैर खान। सुबह 11 बजे रंग तरंग, 12 बजे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल, सुरीला सफर कार्यक्रम दिन में 1 बजे होगा। 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 पर सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम होगा। आज के विषय हैं विश्व मानक दिवस, शब्द आपके विचार, शब्द हमारा विचार आपके। इस श्रृंखला में प्रार्थना शब्द पर बातें होंगी, साड़ियों का संसार। इस श्रृंखला में पोचमपल्ली इकत जो कि तेलंगाना की साड़ी है इसकी बातें, शकरकंद के व्यंजन और भी बहुत सारी बातें। आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे फिल्म लेखक और निर्देशक डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत शाम 5 बजे। पांच बजकर 30 मिनट पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा। 6:35 पर संध्या रंजन। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आपके रेडियो सेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग डीटीएच पर उपलब्ध हैं। आप हमें न्यूज ऑन एआईआर और वेव्स एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं, और वो भी दुनिया के किसी भी कोने में और दिन के किसी भी समय। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रृंखला राग समय चक्र का पहला भाग सुनवाया जाएगा। कलाकार हैं गायिका मंजरी आलेगांवकर। सुबह शाम 7 बजे जयमाला, 7:45 पर राग अनुराग। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत प्रहसन सुनवाया जाएगा, शीर्षक की खोज, देवराज दिनेश ने इसे लिखा, निर्देशक मुख्तार अहमद। 8:15 पर चित्रलोक और 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे कार्यक्रम होगा आपके लिए। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित जानी मानी कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर आप सुनेंगे दोबारा। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 बजे कार्यक्रम होगा रंग तरंग। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस कांड। आज भाग 341।

रावण का हनुमान से युद्ध हो रहा है। इसी समय वानरों को माया के प्रभाव से युद्ध भूमि में असंख्य रावण दिखने लगते हैं। ये देख

वानर भालू त्राही त्राही करते हुए रक्षा के लिए प्रभु की शरण लेने भागते हैं। उनका भ्रम दूर करने के लिए श्री राम एक ही वाण से माया जाल छिन्न भिन्न कर देते हैं। फिर वहां एक ही रावण को देखकर सारा वानर समूह उस पर टूट पड़ता है। रावण अब हनुमान, अंगद, नल और नील से युद्ध कर रहा है। इसी समय वो आकाश में एकत्रित देवताओं को देखता है जो श्री राम का जय घोष कर रहे हैं। वो उन्हें लक्ष्य कर वाण चलाने लगता है। उधर श्री राम के वाणों से कट कट कर उसके सिर और भुजाएं इधर उधर उड़ रही हैं, लेकिन कटने के साथ ही वे फिर उग आते हैं। वो अपनी विशाल भुजाओं से वानरों के समूह उठाकर मसल देना चाहता है कि तभी वृद्ध जांबवान के भरपूर पद प्रहार से मूर्छित होकर एक बार फिर धरती पर गिर जाता है।

0: राग समय चक्र। श्रोताओं, आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रृंखला राग समय चक्र। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो लीजिए, आज प्रस्तुत है श्रृंखला राग समय चक्र की पहली कड़ी।
1: योग्यम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण।

0: विभूषितः रंजको जनचित्तानां सरागः कथितो बुधैः। एक विशिष्ट स्वर समुदाय जो स्वर या वर्ण से सुशोभित होकर मनुष्यों के हृदयों का रंजन करता है, उसे गुणीजन ज्ञानीजन राग कहते हैं। श्रोताओं, राग समय चक्र, इस विषय पर हमसे विस्तृत चर्चा करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जयपुर अतरौली घराने की गायिका विदुषी मंजिरी आलेगावकर को। मंजिरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: हमारी इस श्रृंखला में तबले पर संगति कर रहे हैं बनारस घराने के मूर्धन्य तबला नवाज पंडित किशन महाराज जी के शिष्य श्री बालकृष्ण अय्यर जी। बालकृष्ण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
0: साथ ही साथ हम स्वागत करते हैं शुभांगी भावसार जी का, जो हारमोनियम पर संगत करेंगी।
3: नमस्कार।
0: श्रोताओं, मंजिरी जी का परिचय आपको संक्षेप में मैं दूं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की उच्च श्रेणी की कलाकार हैं। बचपन से ही संगीत की शिक्षा आपने प्राप्त की। चूंकि आपके पिता पंडित मोहन राव कर्वे जी अपने जमाने के माने हुए गायक थे, वे ही आपके पहले गुरु थे
1: जी।
0: आगे जयपुर अतरौली घराने की तालीम आपने हासिल की जाने माने संगीतज्ञ गुरु स्वर्गीय वामन राव देशपांडे जी से
1: जी।
0: मंजिरी जी, जहां तक जयपुर घराने की गायन शैली की बात है, उसमें एक पारंपरिक सोच होती है।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें घराने की शुद्धता और सौंदर्य के संवरण का अनोखा मिलाप देखने को मिलता है
1: जी।
0: तो इस शैली के बारे में और अपने गुरुजनों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे?
1: मेरे पहले गुरु थे पंडित मोहन कर्वे, मेरे पिताजी गायन आचार्य रामकृष्ण बुआ वजह के वो शागिर्द थे
0: जी।
1: हरिभाऊ घंगरेकर से भी उन्हें तालीम मिली थी।
0: हाँ हाँ।
1: और मास्टर कृष्णराव जी का सांगीतिक सहवास भी मिला था। बाद में मैंने नवनीत भाई पटेल से तालीम प्राप्त की
0: जी।
1: वो तबला नवाज थे, बंदिश रचनाकार थे, जलतरंग बजाते थे और आकाशवाणी पे म्यूजिक कॉम्पोजर थे। उनके साथ साथ पंडित आप्पा साहेब कानेटकर भुर्जी खां के शागिर्द, उनसे मैंने तालीम हासिल की। और बबन राव जी हरदनकर, उन्होंने भी मुझे मार्गदर्शन किया।
0: जयपुर अतरौली घराने की विशेषता, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
1: जयपुर गायकी में पहली विशेषता यह है कि आकार से, खुली आकार से गाना, और उसके लिए कुछ सूरत बिगाड़ने की जरूरत नहीं होती। और एक विशेषता यह है जयपुर घराने की, वो ज्यादातर अनवट राग जोड़ राग पेश करती है। तिहाई ज्यादातर नहीं लेती, सरगम नहीं लेती, और गायकी का जो चलन होता है वो हमारे गुरुजी ने घरंदाज गायकी में, उन्होंने लिखा है स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर। वो कर्वेचर टेढ़ी गायकी। हाँ। जयपुर गायकी वो सीधी नहीं जाती और चलन ही ऐसा है उसका।
0: हाँ।
1: आलाप करने में भी वो ऑफबीट आलापी करती हैं। और बाकी सूक्ष्म लय की हम सोच विचार कर सकते हैं
0: जी।
1: और ज्यादातर धीमी लय होती है। बंदिशों का मुखड़ा आकर्षक होता है, उसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है बंदिशों के मुखड़े में भी और गायकी में भी। और ऐसी बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं
0: जी।
1: जो वामन राव जी के पास मैं जब सीखती थी उसको मैं समझ गई थी।
0: मंजरी जी
1: जी,
0: राग समय चक्र ये श्रृंखला जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि हम दिन के पहले प्रहर से जो राग गाए जाते हैं वहां से किन रागों की उनकी विशेषता बताते हुए कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आपसे हम इसकी जानकारी चाहेंगे।
1: स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय संगीत पद्धति में रागों के गाने बजाने के बारे में
0: जी,
1: समय सिद्धांत प्राचीन काल से वेद काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन रागों में, अर्वाचीन रागों में समय सिद्धांत पर कुछ मतभेद भी हैं, तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हमारे प्राचीन संगीत पंडितों ने
0: जी,
1: रागों को उनके ठीक समय पर गायन या वादन करने का सिद्धांत अपने ग्रंथों में जरूर स्वीकार किया है। उसी को आज के संगीतज्ञ भी स्वीकार करके अपने रागों में समय सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। और ये स्वर और समय के अनुसार उत्तर भारतीय रागों में तीन वर्ग मानकर कोमल तीव्र स्वरों के हिसाब से उनका विभाजन किया है
0: जी।
1: संधि प्रकाश राग अर्थात कोमल ऋषभ और कोमल ध वाले राग, शुद्ध रे और शुद्ध ध वाले राग, और तीसरा विभाजन है कोमल ग और कोमल नी वाले राग। समय चक्र के अनुसार मैं आज यहाँ भैरव यानी ब्राह्म मुहूर्त से सुबह 4 से हम शुरू करेंगे ये समय चक्र
0: जी जी।
1: तो समय चक्र के अनुसार हम अलग अलग रागों की चर्चा करेंगे और बंदिशें भी सुनाएंगे।
0: जी बिल्कुल मंजरी जी।
1: जी
0: जयपुर अतरौली घराने की विशेषता को उजागर करने वाला कौन सा राग और उस राग की बंदिश आप हमें सुनाएंगी?
1: आज मैं राग सावनी पेश कर रही हूँ। सावनी ये जयपुर का खास राग है, उसकी बंदिश भी जयपुर घराने की है
0: जी।
1: वो बंदिश ऐसी है, दे हो सतसंग श्री रंग बावा गंग कारण शरण सब शिव के आए। ये प्रार्थना स्वरूप बंदिश है
0: जी जी।
1: और वामन राव जी ने हमें पहले दिन सिखाई थी। वो जयपुर घराने की तालीम की शुरुआत इस बंदिश से हुई। सावनी राग रात को गाते हैं, रात के पहले प्रहर में गाते हैं, इसमें शुद्ध स्वरों का प्रयोग होता है।

0: क्या बात है मंजरी जी, प्रार्थना के इन सुरों से बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है हमारे इस राग समय चक्र श्रृंखला की। अगली कड़ी में हम प्रथम प्रहर यानी जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है,
1: हाँ।
0: सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक
1: जी।
0: उस समय में जो राग गाए जाते हैं,
1: हाँ।
0: उसकी हम चर्चा करेंगे। आज इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: राग समय चक्र, ये थी इस श्रृंखला की आज पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जानी मानी शास्त्रीय गायिका विदुषी मंजरी आलेगांवकर आपसे बातचीत की थी जयंत पात्रीकर ने। तबला संगत बाल कृष्ण अय्यर का, हारमोनियम पर शुभांगी भावसार। चलने से पहले आपको बता दें, तकनीकी सहयोग गणेश शिंदे का।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सभी श्रोताओं को जय श्री महाकाल। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम महाकाल वंदन।

बाबा महाकाल की नगरी में इस भक्तिमय सुबह की शुरुआत भी आइए बाबा महाकाल के इस सुंदर भजन के साथ करते हैं।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। 8:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। 9:00 सुनिएगा कार्यक्रम संस्कृति के स्वर। नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर।

10 बजे सुनिएगा उज्जैन दर्शन, 10:30 पर महिला सभा कार्यक्रम सुना जा सकेगा, 11 बजे आप सुनेंगे रंग तरंग।

कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे दोपहर 1 बजे, फिल्म संगीत आप सुनेंगे दोपहर 2 बजे, 2:30 पर सदाबहार नगमे सुने जा सकेंगे।

3 बजे सखी सहेली कार्यक्रम सुना जा सकेगा। शाम 4 बजे सुनिए आज के मेहमान। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में सुनिए शाम 5 बजे युवा श्रोताओं का अपनी पसंद का प्रोग्राम युववाणी।

5 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्मी बातें। शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 6:30 पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा।

अपने केंद्र से आपको चौपाल पर ले चलेंगे। शाम 7:21 पर कार्यक्रम होगा माटीरी बात, जिसमें मालवी समाचारों के साथ आनंद लीजिए मालवी गीतों का। रात 8 बजे सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। 8:35 पर फिल्म संगीत सुना जा सकेगा। 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

10 बजे सुनिएगा आपकी फरमाइश के नगमे, 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी सुना जा सकेगा। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उमरिया से लाडली बहना योजना की 41वीं किश्त जारी करेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए, सुखबीर सिंह बने मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मुकाबला आज हैदराबाद में, सीरीज में 2-1 से आगे है भारत। और प्रदेश में अगले 3 दिन कई संभागों में आंधी बारिश और गरज चमक की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उमरिया जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 41वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खातों में राशि भेजी जाएगी। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जिले में करीब 144 करोड़ रुपए की लागत के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। राज्य सरकार ने कल शाम बड़ा प्रशासनिक फेर बदल करते हुए 11 जिलों के कलेक्टरों की नई पदस्थापना की है। तबादला सूची के अनुसार कुमार सत्यम को हरदा, आशीष वशिष्ठ को नर्मदापुरम, आदित्य सिंह को पालाघाट, अंकित अस्थाना को सिंगरौली, अरुण कुमार विश्वकर्मा को जबलपुर, रोहित सिसोनिया को रायसेन और परीक्षित संजय राव झाड़े को शाजापुर का कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा पवन कुमार जैन को भिंड, हर्ष सिंह को पन्ना, विवेक कुमार को बुरहानपुर और राजेश कुमार ओगरे को मऊगंज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रश्मि अरुण शमी को लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है। उन्हें लोक निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है, जबकि भरत यादव को जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में पराली प्रबंधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दोनों मंत्रियों ने कहा कि धान की कटाई और रबी फसलों की बुआई के बीच बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में प्रशासनिक तंत्र को कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करना होगा।
1: भूपेंद्र यादव जी और मैंने राज्य के विशेषकर एनसीआर से जुड़े जो राज्य हैं, कृषि मंत्रियों अधिकारियों के साथ और विभिन्न विभागों के भारत सरकार के अधिकारियों के साथ की पराली प्रबंधन पर विशेष रूप से चर्चा की है। हमने समीक्षा भी की है। एक संतोषजनक बात यह है कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में पिछले साल के मुकाबले अगर इसी अवधि को देखा जाए तो पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन लगातार जागरूकता पैदा करने की और मॉनिटरिंग की आवश्यकता है।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं का तत्परता से समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कल भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि श्रमिकों की मांगों और सुझावों पर चर्चा के लिए कल गुरुवार को संबंधित विभाग के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। खंडवा में कल आयोजित राष्ट्रीय किशोर कुमार अलंकरण समारोह में अभिनेता रघुवीर यादव को वर्ष 2026 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अलंकृत किया गया। उन्हें 5,00,000 रुपए की सम्मान निधि और स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल से वर्चुअली समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किशोर कुमार अपने सदाबहार गीतों और बेमिसाल अभिनय से हमेशा लोगों की स्मृतियों से जीवित रहेंगे। उन्होंने बताया कि खंडवा में शीघ्र ही एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर सांस्कृतिक राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने नशा मुक्त भारत अभियान की समीक्षा करते हुए नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों, उत्पादकों और सप्लायरों के नेटवर्क तक पहुंचकर कार्रवाई की जाए। पुलिस के अनुसार रीवा संभाग में पिछले 18 महीनों के दौरान नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के मामलों में 1,615 आरोपियों को जेल भेजा गया और लगभग 13,17,00,000 रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए गए। अवैध कारोबार में इस्तेमाल किए जा रहे 312 वाहन जब्त किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय कर सप्लायरों पर कार्रवाई करने और नशे की गिरफ्त में आए लोगों के उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से कल इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ

0: मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
1: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
0: डॉक्टर एलमुरुगन ने कहा है कि मंत्रिपरिषद में पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के धैर्य, करुणा और असाधारण समर्पण को करीब से देखने का अवसर मिला। राजगढ़ जिले में कल यूनिसेफ के वैश्विक और राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल ने बाल संरक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों, किशोरों और युवाओं से संवाद कर बाल विवाह की रोकथाम, बच्चों की शिक्षा जारी रखने और जोखिम ग्रस्त बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर चर्चा की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे T20 मैच में वेस्टइंडीज को 14 रनों से हराने के बाद भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। प्रदेश में कल से 3 दिन आंधी बारिश गरज चमक का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव से ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में मौसम बदलेगा। 15 और 16 अक्टूबर को ग्वालियर, चंबल, सागर संभाग में जबकि 17 अक्टूबर को जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अर्पित वर्मा ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज शिवपुरी स्थित ईवीएम गोदाम का निरीक्षण किया। झाबुआ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए 37 आवेदकों की शिकायतें सुनी। मंदसौर कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई करते हुए 64 आवेदनों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आगर मालवा जिले में मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु जिले के सभी 636 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सतना जिले में नरवाई और पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर ने धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। डिंडौरी में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में कोदो कुटकी की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन कार्य 6 अक्टूबर से 5 नवंबर तक किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है और मैं गोपाल गर्वित लेकर आया हूँ सुबह की ताजगी, शहर की महक और कुछ ऐसी बातें जो आपको इस उज्ज्वल प्रभात से और भी गहराई से जोड़ देंगी। सूरज की पहली किरण जैसे ही क्षिप्रा की लहरों पर सुनहरी रेखा खींचती है, उज्जैन जाग उठता है। घंटों की मधुर ध्वनि के साथ, बाबा महाकाल की भस्म आरती की ऊर्जा के साथ और इस शहर की उन अनगिनत कहानियों के साथ जो हर सुबह को एक नई शुरुआत बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

श्रोताओं, प्रकृति और संस्कृति का संगम किसी भी तीर्थ की सुंदरता को और बढ़ा देता है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के अंतर्गत पंचक्रोशी मार्ग को हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और वन मंडलाधिकारी ने पंचक्रोशी मार्ग पर पौधारोपण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विभिन्न गांवों का भ्रमण कर मार्ग के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाने, पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाने और नियमित देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मार्ग पर लगभग 50,000 पौधों का रोपण किया जा रहा है। साथ ही 12 उपवन विकसित किए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विश्राम शेड बनाए जा रहे हैं। पौधों के संरक्षण में ग्राम पंचायतों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। तो इसी हरियाली से सजे उज्जैन और प्रकृति के इसी सुंदर संदेश के साथ चलिए सुनते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का पहला गीत।

0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुँचाती है।
1: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

0: मेरी बाइक में नॉथिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन से प्रस्तुत है स्थानीय समाचार। सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सिख समाज करेगा 24 घंटे लंगर और निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था। गंभीर बांध में नर्मदा का पानी पहुंचाने की तैयारी। रोज 7 MCFT पानी लेने की योजना। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर। शहर में बिजली आपूर्ति का वोल्टेज सुधारने के लिए 18 नए कैपेसिटर बैंक शुरू और नगर निगम नारियल तथा पुराने जूते चप्पलों के कचरे का पुनः उपयोग करने के लिए लगाएगा रिसाइकलिंग प्लांट। अब समाचार विस्तार से। सिंहस्थ 2028 के दौरान उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सिख समाज ने व्यापक व्यवस्थाएं करने का भरोसा दिया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के सचिव के नेतृत्व में हुई समीक्षा बैठक में गुरु नानक घाट पर चल रहे निर्माण कार्यों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर चर्चा की गई। सिंहस्थ के दौरान यहां 24 घंटे लंगर, आवास और निशुल्क चिकित्सा शिविर की व्यवस्था प्रस्तावित है। जरूरतमंद श्रद्धालुओं को दवाइयां भी निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन चालू रखने की योजना है। सिख समाज ने आवश्यकता होने पर कार सेवा के माध्यम से नदी और घाटों की सफाई में सहयोग देने की भी बात कही। आगामी त्योहारों के दौरान शहर में जलापूर्ति बेहतर बनाए रखने के लिए नगर निगम गंभीर बांध में नर्मदा का पानी पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। योजना के अनुसार प्रतिदिन 7 MCFT पानी लिया जाएगा। कम वर्षा के कारण गंभीर बांध इस बार पूरी क्षमता तक नहीं भर पाया है। बांध की कुल क्षमता 2250 MCFT है, जबकि मंगलवार तक इसमें 636 MCFT पानी दर्ज किया गया। डेड स्टोरेज घटाने के बाद उपलब्ध पानी से करीब 70 दिन तक जलापूर्ति संभव होने का अनुमान है। नगर निगम के अनुसार नर्मदा का पानी मिलने से बांध का जलस्तर बढ़ाने और शहर की जल प्रदाय व्यवस्था बेहतर रखने में मदद मिलेगी। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन फसल के लिए पंजीयन 17 अक्टूबर तक कराया जा सकता है। जिले में

0: 7 केंद्रों पर पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। किसान एमपी किसान ऐप के माध्यम से भी पंजीयन कर सकते हैं। सरकार ने इस वर्ष सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,708 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। पंजीयन के लिए अधिकतम 50 रुपये शुल्क तय होने की जानकारी दी गई है। किसानों से निर्धारित समय सीमा में पंजीयन कराने की अपील की गई है। नवरात्रि के दौरान महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा के लिए उज्जैन पुलिस का शक्ति स्क्वाड सक्रिय है। मंदिरों और गरबा पांडालों में पहुंचने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न स्थलों पर निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के साथ असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेजर्स यानी केट की इंदौर और उज्जैन संभाग की बैठक स्कॉन ऑडिटोरियम में संपन्न हुई। बैठक में सिंहस्थ मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल और उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा सहित व्यापारी प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में केट की भूमिका, संगठन की कार्यप्रणाली और व्यापारियों के हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी दी गई। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनका लाभ लेने की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। बिजली आपूर्ति का वोल्टेज स्थिर रखने और गुणवत्ता सुधारने के लिए एमपी ट्रांसको ने जिले के 10 अतिरिक्त उच्च दाब सब स्टेशनों में 210 एमवीएआर क्षमता के 18 नए कैपेसिटर बैंक शुरू किए हैं। कंपनी के अनुसार इनसे वोल्टेज में उतार चढ़ाव कम करने और उपभोक्ताओं को निर्धारित मानक के अनुरूप बिजली उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उज्जैन नगर निगम कचरे के पुनः उपयोग के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहा है। मेयर इन काउंसिल की बैठक में नारियल के कचरे और पुराने जूते चप्पलों के पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की अनुशंसा की गई। नारियल के अपशिष्ट से रस्सी, खाद और कोकोनट पीट तैयार करने की योजना है, जबकि पुराने जूते चप्पलों से प्राप्त प्लास्टिक और रबर का उपयोग अन्य उत्पाद बनाने में किया जा सकेगा। इसके अलावा घटिया तहसील के ग्राम डबरी में गीले कचरे से संपीड़ित बायोगैस बनाने और सूखे कचरे का पृथक्करण कर पुनः उपयोग करने वाले संयंत्र की स्थापना भी करने की अनुशंसा की गई। दमा रोगियों के लिए 25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के अवसर पर निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा। इंदिरा नगर में शाम 6 बजे से होने वाले शिविर का आयोजन सहयोगी मित्र मंडल के सहयोग से किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार उपचार लेने वाले रोगियों के लिए शिविर स्थल पर रात भर जागरण करना अनिवार्य रहेगा। इच्छुक रोगी भाग लेने से पहले चिकित्सीय सलाह और शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी अवश्य लें। न्यायांतर संगीत कला संस्थान द्वारा संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से आयोजित 5 दिवसीय कथक नृत्य कार्यशाला का समापन हुआ। फ्रीगंज स्थित संस्थान परिसर में 9 से 13 अक्टूबर तक आयोजित इस कार्यशाला में प्रतियोगिताओं प्रतिभागियों को कथक की तकनीक, बारीकियों और कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रशिक्षण दिया गया। इसी के साथ स्थानीय समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।
1: इन्वेस्टिंग का पार्ट

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: चलिए दोस्तों, सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम के अगले गीत की ओर चलते हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण परिवार और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाएं अपने निर्णय अधिक आत्मविश्वास के साथ ले सकती है और परिवार की आवश्यकताओं में भी प्रभावी योगदान दे सकती है। इसी उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र महिलाओं को आज 41वीं किश्त की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से लगभग 1,25,00,000 पात्र महिलाओं के खाते में 1,500 रुपये प्रति महीना की दर से राशि अंतरित करेंगे। सितंबर 2026 तक योजना की 40 किश्तें जारी की जा चुकी है। महिला सशक्तिकरण और आत्मविश्वास के इसी भावना के साथ अब सुनते हैं अगला गीत।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: समर्पण और मानवता का संदेश हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब किसी बड़े धार्मिक आयोजन में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं तब उनके लिए भोजन, आवास, चिकित्सा और स्वच्छता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ पर्व को देखते हुए सिख समाज भी श्रद्धालुओं की सेवा के लिए तैयारियां कर रहा है। शिरोमणि गुरुकुल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के सचिव एस बलविंदर सिंह कहलावन के नेतृत्व में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और गुरुद्वारा श्री गुरु नानक घाट से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। योजना के अंतर्गत श्रद्धालुओं के लिए आवास, 24 घंटे लंगर, निशुल्क चिकित्सा और दवाइयों की व्यवस्था करने की तैयारी है। इसके साथ ही 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू करने की बात भी कही गई। सिंहस्थ से पहले सिख समाज के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों द्वारा नदी एवं घाटों की सफाई के लिए कार सेवा करने की भी तैयारी है। सेवा और मानव कल्याण की इसी भावना के साथ चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: श्रोताओं, ज्ञान की वास्तविक उपयोगिता तब सामने आती है जब वो समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में सहायक बने। शोध केवल अकादमिक उपाधि प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि नए विचारों और व्यवहारिक समाधानों तक पहुंचने का महत्वपूर्ण रास्ता भी है। इसी उद्देश्य से उज्जैन स्थित मध्य प्रदेश सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान में 12 अक्टूबर को 5 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित इस कार्यशाला का विषय सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान लेखन एवं समसामयिक विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग है। इसमें मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से शोधार्थी और विभिन्न विषयों के संकाय सदस्य शामिल हुए। कार्यशाला में कुल 18 तकनीकी सत्रों के माध्यम से शोध लेखन, आधुनिक तकनीकी उपकरणों और विश्लेषण की नई विधियों से प्रतिभागियों को परिचित कराया जाएगा। विशेषज्ञों ने शोध की गुणवत्ता, अकादमिक गंभीरता और सहकर्मी की समीक्षा के महत्व पर भी जोर दिया। ज्ञान, जिज्ञासा और नए विचारों की इस यात्रा के साथ चलिए सुनते हैं सुप्रभात उज्जैन कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध।
1: 3 दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान एकत्रित होंगे। इस सम्मेलन में भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों तथा विश्व के विभिन्न देशों के साथ उसके जुड़ाव पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान सहित विभिन्न देशों के प्रतिभागी साझा सांस्कृतिक विरासत और सभ्यतागत आदान प्रदान से जुड़े विषयों पर होने वाली चर्चाओं में योगदान देंगे। यह सम्मेलन ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस संस्था की स्थापना आज ही के दिन 1926 में कोलकाता में भारतीय विद्वानों की एक पीढ़ी द्वारा की गई थी, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जुड़े थे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर आज विजयवाड़ा जाएंगी। राष्ट्रपति आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1500 से अधिक महिलाएं ग्रामीण उत्पाद, पारंपरिक हस्तशिल्प और क्षेत्रीय खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन करेंगी। नई दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक कल दिल्ली घोषणा के साथ संपन्न हो गई। दिल्ली घोषणा में बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित हर तरह के आतंक की कड़ी निंदा की है।
2: बिम्स्टेक देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद को व्यापक तथा निरंतर प्रयासों से रोकने, उनका मुकाबला करने और उन्हें समाप्त करने का संकल्प दोहराया। सदस्य देशों ने एक दूसरे से जुड़े, सुरक्षित, संकटों का सामना करने में सक्षम, विकसित और समृद्ध बिम्स्टेक क्षेत्र के निर्माण के लिए क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देशों ने सदस्य राष्ट्रों में हुए आतंकवादी हमलों के दोषियों को संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत दंड दिलाने का आह्वान किया। दिल्ली घोषणा में मानव तस्करी, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और धन शोधन की रोकथाम से जुड़ी कार्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया गया। घोषणा में आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता से संबंधित बिम्स्टेक संधि को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी बल दिया गया। इस संधि पर मार्च 2022 में कोलंबो में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी है और समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के व्यापार मंत्री इस समझौते पर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा है कि हर देश को अमेरिका के साथ अपने संबंधों का नए सिरे से आकलन कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। चीन के संबंध में उन्होंने कहा है कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता भंग होने पर द्विपक्षीय संबंधों पर इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। श्री जयशंकर ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में स्थिति सामान्य होने के साथ दोनों देशों के संबंध भी सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बहाल करने में सफल रहे हैं। रूस से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी ऐसा कोई संकेत नहीं पाया है कि रूस से खरीदे जा रहे किसी भी सामान में चीनी तकनीक शामिल है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि रूस के पास कई विकल्प होना भारत और पूरी दुनिया के हित में है। इस संदर्भ में भारत रूस के लिए एक स्वाभाविक विकल्प है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले सप्ताह भारत आएंगे। इससे दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी। वे भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की मजबूती, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचार विमर्श तथा ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है
5: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर दियारा इलाके में कल रात एक नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में अधिकांश नाबालिग हैं। वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि नाव पर लगभग 20 लोग सवार थे, जो एक भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। 6 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन की इस सोच से प्रेरित सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को धरातल पर उतारा जा रहा है।
4: भारत के अधिकांश औद्योगिक शहर पहले विकसित हुए, बाद में वहाँ बुनियादी सुविधाएं पहुँची। धोलेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी पहल है, जो खम्भात की खाड़ी के पास एक ऐसी ग्रीनफील्ड सिटी है जहाँ कोई भी प्लॉट बिकने से पहले सड़क, पानी, बिजली और फाइबर जैसी सुविधाएं पहुँचाई गई है। धोलेरा के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरने को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
5: हमें धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन पर भी बहुत गर्व है। ये शहर मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा केंद्र बन रहा है। धोलेरा में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी तैयार हो रही है। ये रीजन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के लिए अर्ली मूवर एडवांटेज दे रहा है, यानी आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में जमीन पूरी तरह तैयार है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पॉलिसी प्रेडिक्टेबल है और विजन लॉन्ग टर्म है।
4: स्मार्ट सिटी के विस्तार और इसके तीव्र गति से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डालते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
6: धोलेरा स्मार्ट सिटी का विकास अंदाजन 920 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में हो रहा है। यहाँ सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे इमर्जिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज आ रही है और उसके लिए सरकार ने हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शुरू कर दिया है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे के निर्माण से कनेक्टिविटी आसान हो गई है और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम अंतिम दौर में है। आने वाले दिनों में धोलेरा देश की पहली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में स्थापित होगी।
4: ऐतिहासिक समुद्री विरासत से लेकर भारत के अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग भविष्य तक धोलेरा दूरदर्शी योजना और विकसित भारत के संकल्प का एक अनूठा प्रतीक है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह दिखने लगा है। आज चतुर्थी पर शहर में हर्षोल्लास का माहौल है। रंग बिरंगे पंडाल, जगमगाती रोशनी और ढाक की गूंज से पूरा शहर उत्सवमय हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: पूजा पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियां जोरों पर हैं। कई लोग अभी से पंडालों में घूमने और त्योहार की खरीदारी के लिए निकल रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और स्थानीय प्रशासन यातायात व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। बंगाल के लोगों के लिए दुर्गा पूजा महज एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशी और परंपरा और आपसी मेलजोल का अवसर है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
3: भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। रविवार को इंदौर में खेले गए तीसरे मैच में वेस्टइंडीज को 14 रन से हराने के बाद भारत 5 मैच की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। तन्वी ने पहले दौर में जापान की नात्सुकी निदायरा को हराया। अगला मुकाबला उनका जर्मनी की यमोन ली से होगा। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी फ्रांस के अर्ना मर्कले को हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। वे दूसरे दौर में फ्रांस के ही एलेक्स लेनियर से खेलेंगे। पुरुष डबल्स में आज सात्विक साईराय रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: लड़का लड़की है बराबर, तो पूछना क्यों?
9: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
10: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
11: धन्यवाद मुकेश। ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, भारत वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ रहा है। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत किसी की कीमत पर नहीं दुनिया के साथ विकास करता है। लोकसत्य का शीर्षक है, दुनिया को जोड़ने की ताकत रखता है भारत। 12 वर्षों की आर्थिक नीतियों में सशक्तिकरण पर रहा जोर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, दुनिया में तनाव के बीच IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान, आगे भी विकास दर तेज रहेगी। पत्र के अनुसार भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में बना हुआ है। अमर उजाला के अनुसार, त्योहारी सीजन, अर्थ जगत में राहत, बाजार झूमा, UPI पर शुल्क, दीपावली तक टला। शेयर बाजार की रफ्तार से 1100 अंक से अधिक चढ़ा सेंसेक्स। दैनिक जागरण ने गृहमंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, 8000 की भीड़ जुटा देश की आवाज नहीं बन सकते राहुल, 2029 में भी हार के लिए तैयार रहे कांग्रेस। SIR के विरोध के नाम पर घुसपैठियों को बचाने की विपक्ष की रणनीति समझ चुकी है जनता। गृहमंत्री अमित शाह का बिम्स्टेक देशों से आह्वान पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, आतंकियों को पनाह ना मिले। पत्र ने दिया है, चीन को भारत की दो टूक, लद्दाख हमारा अटूट अंग, विदेश मंत्रालय ने कहा, पेचिंग का दावा करने से हकीकत नहीं बदलने वाली। राजस्थान पत्रिका ने पेपर लीक मुद्दे पर नंदन नीलेकणी का सुझाव देते हुए लिखा है, AI से तैयार करें पेपर, प्रश्न बैंक से बनाएं प्रश्न पत्र, परीक्षा से ठीक पहले तय किए जाएं सवाल, 1.5 लाख परीक्षा केंद्रों का नेटवर्क बढ़ेगा। दैनिक भास्कर ने दावा शीर्षक से दिया है, प्रदर्शन कहां और कैसे हो, कोर्ट ने केंद्र से मांगा पक्ष, प्रदर्शनों से व्यापारियों को 2000 करोड़ रूपये का नुकसान। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, NEET JEE की तैयारी के लिए जल्द आएगा अभ्यास AI ऐप, घर में प्रैक्टिस पेपर डाउनलोड कर एग्जाम दे सकेंगे।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वीडियो संदेश के माध्यम से 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिम्स्टेक देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंक के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता सही दिशा में जारी, समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए अगले सप्ताह भारत आएंगे। बिहार में वैशाली के राघोपुर में नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम हैदराबाद में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: श्रोताओं, बदलती तकनीक ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या भी बढ़ी है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, चार्जर, टेलीविजन और खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को हम अक्सर सामान्य कचरे के साथ फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन उपकरणों में मौजूद कुछ पदार्थ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसी गंभीर विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सही संग्रहण, पुनः उपयोग और सुरक्षित पुनर्चक्रण के प्रति जागरूक करना है। याद रखिए, खराब मोबाइल या पुराना कंप्यूटर बेकार वस्तु नहीं, बल्कि सही तरीके से निस्तारित किए जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। आइए तकनीक का उपयोग जिम्मेदारी से करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएं। इसी संदेश के साथ सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का पहला गीत।
1: चिक बम बम बम चिक चिक बम।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, आज मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। नया फोन आते ही हम पुराना फोन अलमारी में रख देते हैं या कभी कभी उसे कबाड़ी को बेच देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निस्तारण सामान्य घरेलू सामान्य की तरह नहीं किया जाना चाहिए। पुराने मोबाइल, बैटरी, चार्जर और अन्य उपकरणों को खुले में फेंकने या सामान्य कचरे में मिलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस हमें याद दिलाता है कि इन वस्तुओं के प्रति हमारी जिम्मेदारी उनके खराब होने के बाद भी खत्म नहीं होती। पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अधिकृत संग्रह केंद्र या ई वेस्ट पुनर्चक्रण केंद्र तक पहुंचाना बेहतर विकल्प है। यदि उपकरण उपयोग करने योग्य है तो उसे मरम्मत कराकर दोबारा इस्तेमाल करने पर भी विचार किया जा सकता है। छोटी सी सावधानी बड़े पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में मदद कर सकती है। तो आइए जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। इसी सकारात्मक सोच के साथ सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, स्वच्छ पर्यावरण केवल सड़कों और गलियों को साफ रखने से नहीं बनता, बल्कि इस बात से भी बनता है कि हम अपने घरों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण किस तरह करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में पुराने कंप्यूटर, प्रिंटर, तार, बैटरी, टीवी और अनेक ऐसे उपकरण शामिल है जिनका गलत तरीके से निपटान मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित कर सकता है। कई बार जानकारी के अभाव में लोग इन्हें खुले स्थानों पर फेंक देते हैं या अनौपचारिक तरीके से इनके पुर्जे अलग करते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधित जोखिम बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस हमें इस आदत को बदलने की प्रेरणा देता है। घर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को अलग रखें, उसे सामान्य कचरे में न डालें और अधिकृत संग्रह या पुनर्चक्रण व्यवस्था का उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों से होती है। आइए धरती को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें और इसी सुंदर संदेश के साथ सुनें ये सुंदर गीत।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कई ऐसे पदार्थ और धातुएं होती है जिन्हें उचित प्रक्रिया से निकालकर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। यानी जिस उपकरण को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वो संसाधनों के संरक्षण में योगदान दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सुरक्षित पुनर्चक्रण, नए कच्चे माल की आवश्यकता कम करने और पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को घटाने में सहायक होता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि ई वेस्ट को सही तरीके से एकत्रित कर अधिकृत पुनर्चक्रण केंद्रों तक पहुंचाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस इसी सोच को बढ़ावा देता है कि उपयोग करो, जरूरत पड़ने पर मरम्मत कराओ और अंत में सही तरीके से पुनर्चक्रण कराओ। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदते समय भी उनकी जरूरत और टिकाऊपन पर ध्यान देना चाहिए। संसाधनों की बचत केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी और सकारात्मकता के साथ अब सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है।
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है।
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: तो श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस हमें सोचने का अवसर देता है कि क्या हम अपने पुराने उपकरणों का सही उपयोग और निस्तारण करते हैं, क्या हम खराब बैटरियों और मोबाइल फोन को सामान्य कचरे में डालने से बचते हैं, क्या हम ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के बजाय मौजूदा उपकरणों का उपयोग बढ़ा सकते हैं। शुरुआत अपने घर से कीजिए, पुराने उपकरण अलग रखिए, उन्हें अधिकृत केंद्रों पर दीजिए और परिवार तथा मित्रों को भी जागरूक कीजिए। याद रखिए, स्मार्ट नागरिक वही है जो स्मार्ट तकनीक के साथ स्वच्छ पर्यावरण का भी ध्यान रखे। इसी जागरूकता भरे विचार के साथ चलिए सुनते हैं उज्जैनी आरजे कार्यक्रम का अंतिम गीत।

तो इसी के साथ आज का उज्जैनी आरजे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी खास दिवस पर, किसी नए मौके पर, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के ठीक 9 बजे हैं और अब समय है कार्यक्रम संस्कृति संवाद का।

0: आदाब दोस्तों, मैं अमन जादौन शायरों की इस महफिल में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, उर्दू अदब का ये सिलसिला, उर्दू गज़ल का ये सिलसिला, जो कि मीर तकी मीर से होता हुआ, मिर्ज़ा गालिब से होता हुआ आया है आज के दौर में, जहां राहत इंदौरी जैसे शायर, मुनव्वर राना जैसे शायरों ने, बशीर बद्र जैसे शायरों ने हमें गज़ल की रोशनी दी है। और वही सिलसिला आज हमारे दौर में नए शायरों तक, नए नौजवान शायरों तक पहुंचा है। ऐसे ही दो शायर आज हमारे साथ यहां मौजूद हैं, इंदौर से भाई विशाल शर्मा जानिब और इंदौर से ही हमारे बीच अनुराग अर्श आज मौजूद है।
1: बहुत शुक्रिया।
0: शायरों के परिचय के बाद आइए हम शुरू करते हैं शायरी का सिलसिला, गज़ल का सिलसिला। मैं अपने पहले शायर को आवाज़ देने से पहले, वो एक नौजवान शायर है, धीरे धीरे उसकी रोशनी इस सुखन के जहान में फैलती जा रही है। आइए हम विशाल शर्मा जानिब को धीरज चौहान साहब के इन मिसरों के साथ आवाज़ देते हैं कि मौत की यूं अहमियत सस्ती रखी है, जिंदगी की जीते जी बरसी रखी है, हम चमकना चाहते हैं देर तक, हमने अपनी रोशनी हल्की रखी है। भाई भाई विशाल सर,
2: बहुत शुक्रिया भैया। मतलब पढ़ता हूँ कि एक कहानी बनी फिर गजल बन गई, एक कहानी बनी फिर गजल बन गई, आंख पानी बनी फिर गजल बन गई।
0: वाह वाह वाह वाह,
2: एक लड़की मिली तो मिली इस तरह, एक

0: लड़की मिली तो मिली इस तरह जिंदगानी बनी, फिर गजल बन गई।
1: वाह जिंदगानी बनी, क्या कहने क्या कहने,
0: फिर गजल बन गई। जहां तक हो वहां तक खूब टाला कर,
1: आए हाय
0: जहां तक हो वहां तक खूब टाला कर, ख्याले खुदकुशी में दिल संभाला कर।
1: क्या कहने क्या कहने,
0: कि जहां तक हो वहां तक खूब टाला कर, ख्याले खुदकुशी में दिल संभाला कर। मैं दुनिया में उलझ कर बैठ जाता हूँ, मैं दुनिया में उलझ कर बैठ जाता हूँ, मुझे तो खुद से बाहर मत निकाला कर।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कि मैं
1: मुकर्रर इरशाद,
0: कि जहाँ तक हो वहाँ तक खूब टाला कर, ख्याले खुदकुशी में दिल संभाला कर। मैं दुनिया में उलझ कर बैठ जाता हूँ, मैं दुनिया में उलझ कर बैठ जाता हूँ, मुझे तू खुद से बाहर मत निकाला कर।
1: क्या कहने,
0: मुझे तू खुद से बाहर मत निकाला कर। एक गजल से चंद अशार और के, युग देखेगा वो करतब कर जाएंगे पानी में।
1: वाह,
0: युग देखेगा वो करतब कर जाएंगे पानी में, पानी की जितनी हद है धर जाएंगे पानी में।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: कि युग देखेगा वो करतब कर जाएंगे पानी में, पानी की जितनी हद है धर जाएंगे पानी में। जितने भी भारी पत्थर हैं सारे लाकर रख दो, कि जितने भी भारी पत्थर हैं सारे लाकर रख दो, जिन जिन पर राम लिखा है तर जाएंगे पानी।
1: क्या कहने क्या कहने,
0: हो शुक्रिया भाई, कि जिन जिन पर राम लिखा है तर जाएंगे पानी में। आने वाली नस्लें डर जाएंगी दरियाओं से, आने वाली नस्लें डर जाएंगी दरियाओं से, तेराक अगर हम जैसे मर जाएंगे पानी में।
1: वाह वाह वाह,
0: हो शुक्रिया कि आने वाली नस्लें डर जाएंगी दरियाओं से, तेराक अगर हम जैसे मर जाएंगे पानी में।
1: वाह वाह,
0: एक गजल मतलब मुलायजा फरमाए कि जमी या आसमां के हो मगर मेरे नहीं हो।
1: क्या कहने,
0: जमी या आसमां के हो
1: मगर
0: मेरे नहीं हो, न जाने तुम कहाँ के हो मगर
1: मेरे नहीं।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, कि जमीन या आसमां के हो मगर मेरे नहीं हो, न जाने तुम कहाँ के हो मगर मेरे नहीं हो। ये जो मैं हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा बस तुम्हारा, ये जो मैं हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा बस तुम्हारा, ये जो तुम हो जहाँ के हो मगर मेरे नहीं।
1: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय,
0: हो शुक्रिया भाई कि ये जो तुम हो जहाँ के हो मगर मेरे नहीं हो, हवा हो तुम परिंदे हो कि तितली हो जो भी हो, हवा हो तुम परिंदे हो कि तितली हो जो भी हो, बहारे बेखिजां के हो मगर मेरे नहीं हो, तुम्हें ये तंज लगता है तो जाना तंज कह लो।
1: आहा,
0: तुम्हें ये तंज लगता है तो जाना तंज कह लो, फलां के थे फलां के हो मगर मेरे नहीं।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: तुम्हें ये तंज लगता है तो जाना तंज कह लो, फलां के थे फलां के हो मगर मेरे नहीं हो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता अगर हो जाते मेरे, तुम्हारा क्या बिगड़ जाता
1: अगर
0: हो जाते मेरे, यहाँ के हो वहाँ के हो मगर मेरे नहीं। शुक्रिया भैया कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाता अगर हो जाते मेरे, यहाँ के हो वहाँ के हो मगर मेरे नहीं हो। तुम्हारी बात लहजा कह रहे हैं साफ जानिब, तुम्हारी बात लहजा कह रहे हैं साफ जानिब, किसी ऊंचे मकान के हो मगर मेरे नहीं।
1: वाह क्या कहने क्या कहने,
0: जमीन या आसमां के हो मगर मेरे नहीं हो। एक गजल और मुलाहिजा फरमाए के, कभी बाहर निकल सुनसान रातों में, कभी बाहर निकल सुनसान रातों में, सुकून है कल्ब है वीरान रातों में।
1: वाह वाह,
0: कभी बाहर निकल सुनसान रातों में, सुकून है कल्ब है वीरान रातों में, सुखन होता ही है रोशन अंधेरे में।
1: क्या मिसरा है, क्या मिसरा है,
0: होता ही

0: है रोशन अंधेरे में, कहा है मीर ने दीवान रातों में।
1: हाय हाय हा हा हा हा भाई मुकर्रर
0: है कि
1: वाह वाह वाह वाह
0: कभी बाहर निकल सुनसान रातों में, सुकूने कल्ब है वीरान रातों में, सुखन होता ही है रोशन अंधेरे में, कहा है मीर ने दीवान रातों में।
1: आए, आए।
0: शेर सुने के कहूंगा शेर चाहत में सवेरे की, कहूंगा शेर चाहत में सवेरे की, करूंगा और क्या भी जान रातों में।
1: वाह वाह वाह
0: वाह बहुत शुक्रिया भैया कि कहूंगा शेर चाहत में सवेरे की, करूंगा और क्या भी जान रातों में, सहर होते ही चुप्पी ओढ़ लेते हैं, सहर होते ही
2: चुप्पी
0: ओढ़ लेते हैं, मचलते हैं जो भी अरमान रातों में। सहर होते ही चुप्पी ओढ़ लेते हैं, मचलते हैं जो भी अरमान रातों में, किसी की चीख तो आती है कानों तक, किसी की चीख तो आती है कानों तक, कोई तो रहता है हलकान रातों में।
1: क्या कहने क्या
0: कि किसी की चीख तो आती है कानों तक, कोई तो रहता है हलकान रातों में, बहुत जाया किया है वक्त ख्वाबों पर, बहुत जाया किया है वक्त ख्वाबों पर, बहुत रोया में एक दौरान रातों में, बहुत रोया में एक दौरान रातों में, कहां जाएंगे मछुआरे किनारे से, कहां जाएंगे मछुआरे किनारे से, कहां से आ गया तूफान रातों में, कहां जाएंगे मछुआरे किनारे से, कहां से आ गया तूफान रातों में, लगा रहता है दिन भर काम पर जानिब, लगा रहता है दिन भर काम पर जानिब, धड़कता है दिले नादान रातों में, धड़कता है दिले नादान।
1: बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा शेर, बहुत अच्छा। दोस्तों ये हैं विशाल शर्मा जानिब, जिन्होंने बहुत खूबसूरत गजलों से और अपने बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा। आइए हम अपने इस शायरों की महफिल को आगे बढ़ाते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और मैं उस शायर को दावत सुखन देता हूँ जो आज की पीढ़ी का एक ऐसा शायर है जिसे इंस्टाग्राम पर लाखों लोगों द्वारा देखा जाता है, सुना जाता है। जहाँ जहाँ गज़ल से मोहब्बत करने वाले हैं वहाँ वहाँ उसके चाहने वाले हैं। केसरुल जाफरी ने कहा है कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है। तो आइए हम आवाज देते हैं अनुराग अर्श को अब्बास ताबिश साहब के इन चार मिसरों के साथ के इज्जत में बदल दी गई रुसवाई हमारी, दुनिया को समझ फिर भी नहीं आई हमारी, ये हम जो तुझे जाता हुआ देख रहे हैं, ऐसे तो चली जाएगी बिनाई हमारी। अनुराग अर्श,
3: बहुत शुक्रिया अमन भाई आपकी इस निजामत का और इस महफिल का। मैं सबसे पहले आकाशवाणी रेडियो केंद्र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस महफिल का मुझे हिस्सा बनाया। मैं चंद अशार आपके बीच पेश करता हूं कि
1: पता हो,
3: एक मतलब दो शेर से शुरू करता हूं अपनी बात।
1: पता हो भाई
3: विशाल भाई, देखें कि कहीं फिर मिल गया हमको वही तो, कहीं फिर मिल गया हमको वही तो, मोहब्बत हो गई फिर से नई तो,
1: आए हाय हाय हाय,
3: कहीं फिर मिल गया हमको वही तो, मोहब्बत हो गई फिर से नई तो। मैं वैसे शायरी में किसी चीज़ को समझाना बेअदबी है, लेकिन मैं अपने युवा भाइयों को के कोई शेर नज़र करता हूँ कि जो लोग ज़िंदगी में हिम्मत हार जाते हैं, मैं खासकर उनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ कि कहीं फिर मिल गया हमको वही तो, मोहब्बत हो गई फिर से नई तो, इरादा कर लिया है खुदकुशी का,
1: आहा,
3: मगर उस पार भी दुनिया हुई तो,
1: क्या कहने क्या कहने क्या कहने,
3: इरादा कर लिया है खुदकुशी का,
1: बा, बा, बा, बा, बा, बा,
3: मगर उस पार भी दुनिया हुई तो, हमें अंदर से गुर्बत पी गई है,
1: आहा,
3: कहीं बाहर से दौलत खा गई तो,
1: क्या कहने क्या
3: बहुत शुक्रिया
1: क्या कहने
3: बहुत शुक्रिया भाई, हमें अंदर से गुर्बत पी गई है, कहीं बाहर से दौलत खा गई तो
1: आहा।
3: कोई ताबीज मंत्र टोटका दो, बुरे साए सी है ये जिंदगी तो।
1: बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा।
3: बुरे साए सी है ये जिंदगी तो।
1: वाह वाह वाह वाह,
3: बहुत शुक्रिया। अगली गजल से कुछ अशार
1: इरशाद,
3: कोशिश करता हूँ कि एक एक उसकी कसम है सो मुकरने के नहीं हम।
1: आहा।
3: एक उसकी कसम है सो मुकरने के नहीं हम, बस इसलिए जीते हैं कि मरने के नहीं हम।
1: क्या कहने, क्या कहने।
3: एक उसकी कसम है
1: सो मुकरने
3: कि मुकरने के सो मुकरने के नहीं हम, बस इसलिए जीते हैं कि मरने के नहीं हम। दुश्मन की तरफ हो गया हम जिसकी तरफ थे।
1: आहा।
3: दुश्मन की तरफ हो गया हम जिसकी तरफ थे, अब खुद की तरफदारी भी करने के नहीं हम। दुश्मन की तरफ हो गया हम जिसकी तरफ थे, अब खुद की तरफदारी भी करने के नहीं हम।
1: क्या कहने।
3: बेहतर तो यही है कि गुजर जाए तू हमसे, बेहतर तो यही है कि गुजर जाए तू हमसे, ए जिंदगी तुझसे तो गुजरने के नहीं हम।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
3: ए जिंदगी
1: अच्छा शेर है भाई।
3: तुझसे तो गुजरने के नहीं हम। बतौर खास एक शेर देखें अमन भाई, विशाल भाई, कि चढ़ जाए तेरे सर पे कोई और मोहब्बत।
1: आहा।
3: चढ़ जाए तेरे सर पे कोई और मोहब्बत, फिर भी तो तेरे दिल से उतरने के नहीं हम।
1: क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने।
3: शुक्रिया भाई। चढ़ जाए तेरे सर पे कोई और मोहब्बत, फिर भी तो तेरे दिल से उतरने के नहीं हम। अब एक नया घाव पुराने को भरेगा।
1: क्या कहने।
3: अब एक नया घाव पुराने को भरेगा, मरहम की इनायत पे उभरने के नहीं हम।
1: वाह वाह वाह,
3: मरहम की इनायत पे
1: वाह वाह वाह
3: उभरने के नहीं हम। इस गजल का आखिरी शेर देखें कि नजरों से गिरा दो या हमें दिल में जगह दो। नजरों से गिरा दो या हमें दिल में जगह दो, पलकों पे बहुत देर ठहरने के नहीं हम। पलकों पे बहुत देर ठहरने के नहीं हम। भाई बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि हमारे FM वाले दोस्तों को भी जो सुनेंगे इसको उन्हें मज़ा आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं एक गज़ल और पेश करता हूँ कि ये खौफ उदासियाँ गम मुझ में कब बनाए गए। ये खौफ उदासियां गम मुझ में कब बनाए गए, कहां पड़ा था मैं जब आप सब बनाए गए। ये खौफ उदासियां गम मुझ में कब बनाए गए, कहां पड़ा था मैं जब आप सब बनाए गए। मेरे ही ख्वाब की तस्वीर मेरे बाद बनी।
1: आए हाय,
3: मेरे ही ख्वाब की तस्वीर
1: मेरे बाद
3: मेरे बाद बनी, मेरे ही खून के कतरों से लब बनाए गए।
1: आए हाय हाय हाय,
3: मेरे ही खाब की तस्वीर
1: वाँ वाँ वाँ वाँ
3: मेरे बाद बनी। बहुत शुक्रिया भाई। मेरे ही खून के कतरों से लब बनाए गए, एक एक शब्द है लकब जिसका मतलब होता है नाम
1: जी।
3: वो जिसको देखता उसका ही नाम हो जाता। वो जिसको देखता इसका उसका ही नाम हो जाता, इसी तरह से जवां में लकब बनाए गए।
1: हाय हाय हाय हाय,
3: वो जिसको देखता उसका ही नाम हो जाता।
1: क्या कहने।
3: इसी तरह से जवां में लकब बनाए गए, और इस वक्त जो दुनिया में हालात हैं मेरे शेर से आप रिलेट कर जाएंगे कि इसी तरह से जवां में लकब बनाए गए, ये आदमी ही है शैतान कोई और नहीं।
1: आहा।
3: ये आदमी ही है शैतान कोई और नहीं, इसी को कैद में रखने को रब बनाए गए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
3: ये आदमी ही है शैतान कोई और नहीं, इसी को कैद में रखने को रब बनाए गए, रब बनाए गए। सवाल कुछ अगर हमारे हसास लोग सूफी लोग ये शेर सुन रहे हों तो उनके लिए मैं शेर कह रहा हूं कि सवाल किसने बनाया हमें ये बाद का है। सवाल किसने बनाया हमें ये बाद का है, सवाल पहले ये है किस सबब बनाए गए।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
3: सवाल किसने बनाया हमें ये बात का है
1: भाई अनुराग, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
3: सवाल पहले ये है किस सबब बनाए गए। बहुत शुक्रिया। मैं एक नज्म पढ़ना चाह रहा हूँ, और इस नज्म का जो मफहूम है अभी उनवान में इसका रख नहीं पाया हूँ, लेकिन ये हमारे सभी के आसपास घरों में

0: शायद हमारे घरों में भी हों, तो इस नज़्म से एक आवाज़ उठाने की कोशिश है और हमारा काम है कि हम आवाज़ उठाएं। तो आप सीधे नज़्म से जुड़ें। एक लड़की की कहानी है। कुछ दिनों से मोहल्ले में है जो एक लड़की, बड़ी उम्र वाली, उसके बारे में पूछा जो मैंने, नाम माने बताया है लाली।
1: आए हाय,
0: आदमी छोड़कर आ गई है, कोई था एक शराबी मवाली, इसका मुश्किल समय चल रहा है, कुछ घरों में है ये काम वाली। मैंने फिर गौर से उसको देखा, जा रही थी वो जब काम करके, अपने हिस्से के सूरज की किरणें दूसरों के लिए शाम करके, उसकी आंखों में पत्थर सा दुख था और गले में थी तुलसी की माला, चूड़ियां थी कलाई में बस दो और बिंदी का माथा भी काला।
1: हाय हाय हाय हाय,
0: अब तो झूठी हंसी से भी उसकी सच्ची बातें नहीं कट रही थी, पांव में बोझ पायल का कम था, हाँ मगर एड़ियां फट रही थी।
1: हाय हाय हाय हाय,
0: एक मोहल्ले की दीदी से मैंने उसकी बिखरी कहानी जुटाई, कुछ ना पूछो ये भैया ये कहकर उनकी आवाज भी लड़खड़ाई, आदमी उसका अब भी है जिंदा पर वो लड़की है विधवा सुहागन। आदमी उसका अब भी है जिंदा पर वो लड़की है विधवा सुहागन, मांग में उसकी आंसू भरे हैं, एक बच्ची है उसकी अभागन।
1: हाय हाय,
0: ब्याह को 6 बरस हो गए थे, पिट रही थी वो सब सह रही थी, बाप का खेत गिरवी था उनसे, सब कुशल है वो ये कह रही थी, एक दिन सब्र का बांध टूटा, वो नरक में ब्याही गई थी, जैसे तैसे निकल आई बचकर, वो जुए में लगाई गई थी। तब से वो इस किराए के घर में, रह रही है मोहल्ले में भैया, काम करती है वो कुछ घरों का, ऐसी भोली है जैसे कि गैया, उसकी सोची हुई जिंदगी अब क्या पता क्यों सजा पा रही है, ये कहानी है ऐसी कली की जो बहारों में कुंभला गई है।
1: हाय हाय हाय हाय,
0: कुछ दिनों से मोहल्ले में है जो एक लड़की, बड़ी उम्र वाली।
1: वाह वाह वाह वाह अनुराग भाई, वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या खूबसूरत नज़्म।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: आपने सुना।
0: अब हम इस कार्यक्रम के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं कि जो हमारे नाजिम साहब हैं, जिनका नाम है अमन जादून साहब, जो इस खूबसूरत महफिल के कारकर्दा भी हैं, तो मैं दो शेर सुना के उनको अपनी ओर बुलाता हूँ, कि उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अशार सुनाएं, कि जो ख़त उसे दिए थे हमने फूल में दबे हुए, जो ख़त उसे दिए थे हमने फूल में दबे हुए, रखे ही रह गए कहीं पे धूल में दबे हुए। मैं इस वजह से खो चुका हूँ प्यार पिछली बार का, तू मत कुरेद दुख मेरे फिजूल में दबे हुए। तो भाई अमन जादौन आप सबके बीच में अपनी गजलों और रचनाओं से हमें सराबोर करेंगे।
1: बहुत शुक्रिया अनुराग भाई।
0: जी भाई,
1: सबसे पहले आकाशवाणी उज्जैन के सभी श्रोताओं का आदाब और आकाशवाणी केंद्र उज्जैन का दिल से शुक्रिया जिन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया। आइए बिना किसी तमहीद के सीधे सीधे
0: जी जी
1: एक गजल से आपको जोड़ता हूँ।
0: स्वागत है भाई इरशाद।
1: उम्र गुजरी जवानी का नशा उतरा नहीं अब तक, उम्र गुजरी जवानी का नशा उतरा नहीं अब तक, बदन की मेजबानी का नशा उतरा नहीं अब
0: तक। क्या कहने, क्या कहने भाई, वाह
1: वाह। बदन की मेजबानी का नशा
0: उतरा नहीं अब तक,
1: सरापा कल पढ़ी थी जो किताबे हुस्न से हमने,
0: हाँ
1: सरापा कल पढ़ी थी जो किताबे हुस्न से हमने, तुम्हारी उस कहानी का नशा उतरा नहीं अब तक।
0: क्या कहने भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: तुम्हारी उस कहानी का नशा उतरा नहीं अब तक, मोहब्बत की नई तस्वीर आंखों तक नहीं आई।
0: क्या कहने,
1: मोहब्बत की नई तस्वीर आंखों तक नहीं आई, मेरे सिर से पुरानी का नशा उतरा नहीं अब तक।
0: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह भाई वाह।
1: मेरे सिर से, बहुत शुक्रिया भाई, मेरे सिर से पुरानी का नशा उतरा नहीं अब तक, भला हम मैकशी करते भी तो फिर किस तरह करते, भला हम मैं कशी करते भी तो फिर किस तरह करते, तेरे हाथों के पानी का नशा उतरा नहीं अब तक।
0: क्या कहने भाई, वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया भाई, तेरे हाथों के पानी का नशा उतरा नहीं अब तक, हमारे जिस्म से आती है तेरे हुस्न की खुशबू।
0: अरे वाह वाह,
1: हमारे जिस्म से आती है तेरे हुस्न की खुशबू।
0: क्या गजल पढ़ रहे हैं भाई।
1: महकती रात रानी का नशा उतरा नहीं अब
0: तक। वाह वाह वाह वाह वाह, काफी है कि खास दाद देना चाहूंगा भाई। वाह वाह वाह,
1: महकती रात रानी का नशा उतरा नहीं अब तक, मुझे बिछड़े हुए उससे जमाना हो गया लेकिन, मुझे बिछड़े हुए उससे जमाना हो गया लेकिन, मोहब्बत की रवानी का नशा उतरा नहीं अब तक।
0: हाय हाय हाय हाय, भैया क्या अच्छी रदीब निभाई है। वाह वाह वाह वाह, अमन भाई बहुत अच्छे,
1: बहुत शुक्रिया भाई। एक गजल से कुछ शेर देखें।
0: जी
1: जी, जमी पर आसमां जैसा हसी मंजर तेरा कमरा।
0: जी,
1: जमी पर आसमां जैसा हसी मंजर तेरा कमरा, मोहब्बत की रुमानी खुशबुओं का घर तेरा कमरा। मोहब्बत की रुमानी खुशबुओं का घर तेरा कमरा, मैं तुझको सोचकर सोता हूँ तो ख्वाबों में आता है। मैं तुझको सोचकर सोता हूँ तो ख्वाबों में आता है, तेरा तकिया तेरा चादर तेरा बिस्तर तेरा कमरा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह भाई,
1: तेरा तकिया तेरा चादर तेरा बिस्तर तेरा कमरा।
0: बहुत अच्छी चीजें जुटाई।
1: सरापा तू मुझे खुद में कहीं महसूस होती है।
0: जी,
1: सरापा तू मुझे खुद में कहीं महसूस होती है, यूं दिल बनकर धड़कता है मेरे अंदर तेरा कमरा। यूं दिल बनकर धड़कता है मेरे अंदर तेरा कमरा, तुझे पाने की ख्वाहिश जागती रहती है आंखों में। तुझे पाने की ख्वाहिश जागती रहती है आंखों में, तलाशे है हमारे ख्वाब का लश्कर तेरा कमरा।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या कहने भाई।
1: और हमारी हमारी आंख में घुलती हुई नींदों की ख्वाहिश है। हमारी आंख में घुलती हुई नींदों की ख्वाहिश है, मयस्सर हो हमारे ख्वाब को शब भर तेरा कमरा।
0: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या काफी है भाई, शब भर तेरा कमरा।
1: मयस्सर हो हमारे ख्वाब को
0: शब भर तेरा कमरा,
1: शब भर तेरा कमरा। बहुत शुक्रिया भाई। एक गजल से कुछ अशार कुछ शेर देखिए कि जिस तरफ कोई औरत नहीं जा रही, जिस तरफ कोई औरत नहीं जा रही, उस तरफ रब की नेमत नहीं जा रही।
0: क्या कहने भाई, वाह।
1: जिस तरफ कोई औरत नहीं जा रही,
0: वाह वाह,
1: जिस उस तरफ रब की नेमत नहीं जा रही। जानता हूँ कि तू जा चुकी है मगर, जानता हूँ कि तू जा चुकी है मगर, मेरे दिल से तेरी लत नहीं जा रही।
0: भाई क्या कहने, भाई क्या कहने, वाह वाह।
1: बहुत शुक्रिया भाई के मैं जानता हूँ कि तू जा चुकी है मगर, मेरे दिल से तेरी लत नहीं जा रही। मैंने धोखा दिया था किसी को कभी, मैंने धोखा दिया था किसी को कभी, मेरे अंदर से लानत नहीं जा रही।
0: भाई वाह भाई वाह,
1: मैंने धोखा दिया था किसी को कभी,
0: भाई वाह,
1: मेरे अंदर से लानत नहीं जा रही।
0: उसको
1: बहुत शुक्रिया भाई।
0: लेना भाई, क्या कहना है।
1: नाम तेरा पुकारे है बेसाख्ता।
0: हाँ,
1: नाम तेरा पुकारे है बेसाख्ता, मेरे होठों की आदत नहीं जा रही।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: और शेर बतौर खास, ये है मेरी मोहब्बत की जादूगरी।
0: हाँ,
1: यह है मेरी मोहब्बत की जादूगरी, उसकी मेहंदी की रंगत नहीं जा रही। यह है मेरी मोहब्बत की जादूगरी, उसकी मेहंदी की रंगत नहीं जा रही। उसकी शादी के 11 बरस बाद भी, उसकी शादी के 11 बरस बाद भी, उसको पाने की हसरत नहीं जा रही।
0: भाई 11 बरस का जवाब नहीं है भाई। वाह वाह वाह वाह,
1: उसकी शादी के 11 बरस बाद भी,
0: वाह वाह वाह,
1: उसको पाने की हसरत
0: नहीं जा रही।
1: तेरे लब को तसव्वुर में चूमा था कल, तेरे लब को तसव्वुर में चूमा था कल, मेरे होठों से लज्जत नहीं जा रही।
0: वाह वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया भाई।
0: अब एक रंगीन सा माहौल बना दिया आपने।
1: बहुत शुक्रिया भाई। अब एक नज्म से पहले एक गजल से एक दो शेर और फिर नज्म के साथ आप सबसे इजाजत के। उम्र की ढलती हुई लाचारियों से डर गए।
0: हाँ,
1: उम्र की ढलती हुई लाचारियों से डर गए, आखिरश बूढ़े बदन बीमारियों से डर गए।
0: आहा, क्या कहने, क्या कहने?
1: आखिरश बूढ़े बदन बीमार

0: हाँ, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया भाई। अब आखिर में एक नज्म के साथ, नज्म का उनवान है मैं तेरी नज्म होना चाहती हूँ।
0: भाई वाह,
1: देखिए
0: इरशाद।
1: दोस्तों के, तेरे ख्वाबों का सरमाया हूँ साथी, मैं तेरी सोच का साया हूँ साथी,
0: आहा
1: मैं तेरी आशिकी से ही जवां हूँ, मैं
0: आ
1: तेरे हर तसव्वुर में रवां हूँ,
0: वाह
1: मेरी बुनियाद भी तू ही रखेगा, मुझे आबाद भी तू ही रखेगा,
0: आहा,
1: मेरा मतलब निकालेगा तू पहले, मुझे
0: हाँ
1: हरफों में ढालेगा तू पहले,
0: क्या
1: मुझे
0: कहने।
1: तरतीब देगा ढंग देगा, मेरे हर लफ्ज को तू रंग देगा, मेरी तकदीर की तस्वीर होगी,
0: आहा
1: तेरे गम से मेरी तहरीर होगी,
0: भाई वाह,
1: मैं कागज पे तेरा दिल बनूंगी, मैं
0: हाँ
1: तेरे प्यार का हासिल बनूंगी, मुझे दीवाने वहशत में पढ़ेंगे,
0: आहा
1: मुझे आशिक इबादत में पढ़ेंगे, मैं तेरे नाम को रोशन करूंगी, मैं
0: हाँ
1: तेरे काम को रोशन करूंगी, मैं
0: हाँ
1: तेरे बाद भी जिंदा रहूंगी, मैं तेरी दास्ता सबसे कहूंगी, मैं
0: वाह
1: सोई हूं तेरे अंदर जगा दे, मुझे आंसू की स्याही से बना दे,
0: वाह,
1: तेरी आंखों से रोना चाहती हूं, मैं तेरी नज्म
0: नज्म
1: होना
0: होना
1: होना चाहती हूं।
0: चाहती भाई,
1: बहुत
0: वाह वाह
1: शुक्रिया,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: बहुत शुक्रिया दोस्तों।
2: दोस्तों, सुबह के इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी पर 9 बजकर ठीक 30 मिनट हुए हैं और अब समय है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स का।

दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके सामने बाकी सारी बातें छोटी लगने लगती है। किसी अपने का साथ हो तो सफ़र आसान लगने लगता है और मुश्किल दिनों में भी उम्मीद बनी रहती है। प्यार की खूबसूरती भी शायद इसी एहसास में है। जब कोई इंसान हमारी दुनिया का इतना अहम हिस्सा बन जाता है कि हर खुशी और हर ख्याल उसी से जुड़ने लगता है। विशाल मिश्रा की आवाज़ में ऐसे ही अपनत्व और प्रेम की भावनाओं को महसूस करने का मौका मिलेगा फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के इस गीत के साथ, जो अपने खास अंदाज में रिश्तों की अहमियत को सामने रखता है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दोस्तों, प्रेम जब दिल पर दस्तक देता है तो इंसान का नजरिया ही बदलने लगता है। कभी किसी की मुस्कान दिन बना देती है तो कभी उसकी मौजूदगी साधारण से पल को भी खास बना देती है। ऐसे ही एहसासों को संगीत जब अपनी धुन में पिरोता है तो गीत सीधे दिल तक पहुंचता है। सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाज़ों की जुगलबंदी गीतों में एक अलग रंग भरती है। फिल्म रेड 2 का ये गीत भी अपनी लय और गायकी के साथ श्रोताओं को एक अलग संगीत अनुभव देता है। तो तैयार हो जाइए इस गीत की धुन के साथ कुछ पल बिताने के लिए। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के मुताबिक नहीं चलता। कभी रास्ते कठिन हो जाते हैं, कभी परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती हैं, लेकिन इसी बीच कुछ लोग, कुछ अनुभव और कुछ सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। फिल्म श्रीकांत का ये गीत इसी सकारात्मक भाव की ओर ध्यान खींचता है। अरिजीत सिंह की आवाज़ में भावनाओं की गहराई और सादगी का ऐसा मेल मिलता है जो गीत के संदेश को और असरदार बना देता है। तो आइए कुछ पल ठहर कर इस एहसास को महसूस करते हैं।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, किसी से मिलने के बाद जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे हैं तो समझिए कि वो मुलाकात हमारे लिए खास बन गई है। उसकी बातें याद रहना, बिन वजह मुस्कुराना और दिन के बीच अचानक उसी का ख्याल आ जाना, प्यार के शुरुआती एहसास अक्सर ऐसे ही सामने आते हैं। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का ये गीत इसी रोमांटिक एहसास को अपनी मधुर धुन में समेटता है। राघव, आशीष कौर और सचिन जिगर की आवाज़ों का एक साथ गीत को अलग रंग देता है। इसकी धुन में प्रेम की सहजता भी है और किसी खास के करीब होने की खुशी भी। तो आइए इस मधुर एहसास को संगीत के साथ महसूस करते हैं, इस गीत के साथ।

तो दोस्तों बॉलीवुड बीट्स में चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। फिल्म स्त्री 2 का ये गीत है जिसमें एक रोमांटिक एहसास भी है, किसी का इंतज़ार भी है और किसी की खूबसूरती को बयां करती हुई एक तस्वीर भी। वरुण जैन और शिल्पा राव की आवाज़ें इस गीत को मधुरता और ताजगी देती है, जबकि सचिन जिगर की धुन इसे सुनने में सहज और आनंददायक बनाती है। तो आइए अपने मूड में थोड़ी मिठास घोलते हैं और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: तो चलिए दोस्तों, गीतों की इस फहरिस्त के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और अब एक ऐसा गीत आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो भावनाओं की गहराई को संगीत के रूप में बहुत ही उम्दा अंदाज में पेश करता है। फिल्म पुष्पा 2 द रूल का गीत है। इसमें इसी तरह की भावभूमि है। श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज़ गीत के एहसास को और प्रभावशाली बनाती है। उनकी गायकी की खासियत है कि वो शब्दों के साथ साथ उन भावनाओं को भी आवाज़ देती है जिन्हें महसूस तो किया जा सकता है लेकिन आसानी से कहा नहीं जा सकता। तो आइए संगीत के इसी रंग में डूबते हैं और सुनते हैं बॉलीवुड बीट्स का अंतिम गीत।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टो

तो दोस्तों इसी के साथ बॉलीवुड बीट्स कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए तरानों के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10 बज चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम उज्जैन दर्शन का। श्रोताओं, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की पहचान यहाँ के प्राचीन मंदिरों और उनसे जुड़ी आस्था की परंपराओं से भी है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण स्थान है नगरकोट की महारानी माता मंदिर का। माता को उज्जैन की नगर रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माँ नगरकोट उज्जैन की उत्तरी दिशा से रक्षा करती हैं और अपने भक्तों को सुख शांति एवं समृद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्र के पावन दिनों में माता के दरबार में श्रद्धालु दर्शन पूजन और आरती के लिए पहुंच रहे हैं। आइए माँ की महिमा का स्मरण करते हुए सुनते हैं उज्जैन दर्शन कार्यक्रम का पहला भजन।

श्रोताओं, देवी आराधना की परंपरा हमारी प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। उज्जैन स्थित नगरकोट महारानी माता मंदिर का संबंध भी ऐसे ही प्राचीन मान्यताओं से जुड़ा है। मंदिर के पुजारी पंडित मथुरानाथ शास्त्री के अनुसार स्कंद पुराण के अवंती खंड में माता का उल्लेख 24 देवियों में किया गया है। उन्हें नव मातृकाओं की सातवीं कोटरी देवी भी माना जाता है। नवरात्र में मां के दर्शन कर भक्त अपने परिवार की सुख समृद्धि और नगर की मंगल कामना करते हैं। मां की महिमा का गुणगान करते हुए आइए अब सुनते हैं दूसरा भजन, जो हमें भक्ति और श्रद्धा के भाव से जोड़ता है।

श्रोताओं, हमारी धार्मिक परंपराओं में पूजा अर्चना के साथ साथ प्रकृति के प्रति सम्मान का भाव भी समाहित है। उज्जैन की नगरकोट महारानी माता मंदिर में परिक्रमा की एक विशेष परंपरा है। यहाँ श्रद्धालु जल कुंड से परिक्रमा आरंभ करते हैं और अग्निकुंड के मार्ग से होते हुए माता के दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस परिक्रमा में जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी यानी पंच तत्वों का प्रतीकात्मक भाव जुड़ा है। भक्त इस परिक्रमा को देवी की आराधना और प्रकृति के मूल तत्वों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम मानते हैं। तो आइए माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन।

श्रोताओं, भक्त और भगवान के बीच का संबंध विश्वास, समर्पण और प्रेम से बना होता है। नवरात्र में माँ नगरकोट महारानी के दरबार में भक्त देवी का चोला चढ़ाते हैं, चौकी सजाते हैं और प्रसाद अर्पित कर परिवार की मंगल कामना करते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित मथुरा नाथ शास्त्री के अनुसार मान्यता है कि चोला चढ़ाते समय सिंदूर अर्पित करने में बार बार कठिनाई आए तो भक्त इसे माता की इच्छा से जोड़कर देखते हैं। वहीं सिंदूर सहज रूप से अर्पित हो जाने पर देवी का श्रृंगार पूर्ण किया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए ये परंपरा माँ की दिव्य उपस्थिति में विश्वास का प्रतीक है। इसी श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ आइए सुनते हैं उज्जैन दर्शन कार्यक्रम का अंतिम गीत।

इसी के साथ आज का उज्जैन दर्शन कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की किसी धार्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

एफएम 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज ऑन एआईआर के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब समय है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का।

नमस्कार सखियों, कैसी हैं आप? मैं हूं आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर अनुभा गुप्ता। स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन के महिला सभा कार्यक्रम में। इन दिनों हवाओं में एक अलग ही जादू घुला हुआ है। सुबह सुबह हल्की सी गुलाबी ठंड, गुनगुनी धूप और हर गली मोहल्ले से आती ढोल धमाकों की गूंज, चारों तरफ नवरात्रि और आने वाले त्योहारों की धूम मची हुई है। सखियों, इन दिनों बाजारों की रौनक बस देखते ही बन रही है और हम महिलाएं त्योहारों के पहले शॉपिंग भी करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या बाजार में चमकती हुई हर चीज सचमुच सुरक्षित और टिकाऊ होती है? कई बार हम कम दाम या सुंदर पैकिंग देखकर सामान खरीद लेते हैं जो कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है या फिर घर में सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है। और इसी बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज विश्व मानक दिवस मनाया जा रहा है, जो हमें याद दिलाता है कि त्योहारों के इस चमक दमक के बीच हमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड यानी मानकों का खास ख्याल रखना चाहिए। इस बार जब आप अपने किचन के लिए प्रेशर कुकर, गैस स्टोव या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें तो उस पर निर्धारित मानक जैसे ISI मार्क है या नहीं जरूर देखें, क्योंकि ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणन चिन्ह है जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्पाद भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरता है। इसी तरह जब आप कोई खाने का सामान खरीदें तो उस पर FSSAI का मानक चिन्ह जरूर देखें, ताकि आपके परिवार की सेहत पर कोई आंच ना आए। त्योहारों पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। अपनी गाड़ी कमाई का एक एक पैसा सही जगह पर लगे, इसके लिए हमेशा 6 अंकों वाला HUID हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें। ये 6 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है जिसे आप ये पता कर सकती हैं कि सोना कितने कैरेट का है, उसकी हॉलमार्किंग कब हुई और उसे बनाने वाले जौहरी का क्या नाम है। ये कोड प्रमाणित करता है कि वह आभूषण भारतीय मानक ब्यूरो के शुद्धता मानकों पर खरा उतरा है। साथ ही आप BISKR ऐप का भी उपयोग कर सकती हैं। ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च किया गया एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस ऐप को उपभोक्ता की सुरक्षा और उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से बिना मानक के बेचे जा रहे उत्पाद की आप शिकायत भी कर सकती हैं। अगर हम महिलाएं शॉपिंग करते समय इन छोटे छोटे मानकों का ध्यान रख लें तो हम अपने परिवार को दुर्घटना और मिलावट से बचा सकती हैं। सखियों, कार्यक्रम में हम आगे चर्चा करेंगे गर्भ संस्कार कोच श्रीमती नीलम नाइक जी से, लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं ये गाना।

0: मेरी बाइक में नॉकिंग कम है,
1: मेरी कार से पहले से कम पोल्यूशन निकलता है,
2: मेरा स्कूटर क्या मस्त पिकअप देता है।
3: व्हीकल कोई भी हो, पेट्रोल जब E20 है तो गाड़ियों में नॉकिंग कम होती है, कार्बन एमिशन 40% कम होता है और हाई ऑक्टेन की वजह से पिकअप अमेजिंग। योर पेट्रोल व्हीकल इज 100% कंपैटिबल विद E20। भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: सखियों कहते हैं कि जब कोई स्त्री माँ बनने की यात्रा शुरू करती है तो उसके साथ कई सपने, उम्मीदें और भावनाएं भी जन्म लेती हैं। नए जीवन के आगमन की कल्पना पूरे परिवार को खुशियों से भर देती है। गर्भावस्था में मां का शारीरिक स्वास्थ्य जितना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही जरूरी होता है उसका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य। इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच मातृछाया गर्भ संस्कार उज्जैन की कोच श्रीमती नीलम नायक जी मौजूद हैं। नीलम जी गर्भ संस्कार कोच, योग प्रशिक्षक और योग थेरेपिस्ट हैं। नमस्कार नीलम जी, आकाशवाणी उज्जैन के महिला सभा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: नमस्कार अनुभा जी।
4: नीलम जी, आमतौर पर लोग गर्भ संस्कार को सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं, आप सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बताइए कि गर्भ संस्कार क्या है और इसका क्या महत्व है।
5: गर्भ संस्कार महज एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, आज उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर कई रिसर्च की जा चुकी है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसका इसलिए ज्यादा महत्व है क्योंकि जब माता पिता दोनों ही आज वर्किंग होते हैं और उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनमें नकारात्मकताएं भी बहुत आसपास के वातावरण की वजह से आ जाती है, काम के पैटर्न की वजह से आ जाती है, जो कि उनके शरीर में कार्टिसोल लेवल को बढ़ाती है, बेड हार्मोन्स को बढ़ाती है, उसका लेवल बढ़ने की वजह से। ऐसे में जब बच्चा कंसीव होता है तो उसकी स्ट्रेस वाले बेड हार्मोन्स वाली ही नींव पड़ती है और उसका व्यक्तित्व भी नकारात्मक बन जाता है, क्योंकि माता के गर्भ में ही 85% बच्चे का व्यक्तित्व बन जाता है। हम गर्भ संस्कार के माध्यम से उनके स्ट्रेस लेवल को लो करना, उन्हें बहुत अच्छा डेली रूटीन देना, उनके विचारों को सकारात्मक बनाना, उनके अंदर आनंद और प्रेम के भाव भरना, योगासन के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, एक्यूप्रेशर पद्धतियों के माध्यम से तथा भूत शुद्धि क्रियाओं की जैसी आध्यात्मिक प्रोसेस के माध्यम से उनके शरीर का वातावरण बेहतर बनाते हैं।
4: गर्भावस्था के किस महीने से एक महिला को गर्भ संस्कार और इसके नियमों का पालन शुरू करना चाहिए, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
5: जब गर्भावस्था का पता पड़े, चाहे वो कोई भी मंथ या कोई भी सप्ताह हो, तभी से उन्हें गर्भ संस्कार के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि हर सप्ताह और हर मंथ में बच्चे के अलग अलग अंगों का विकास होता है।
4: गर्भावस्था के दौरान योग और ध्यान गर्भवती स्त्री और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं?
5: योग और योग में किए जाने वाले आसन, ये शारीरिक पक्ष है तथा ध्यान मानसिक पक्ष है। विशिष्ट योग आसनों के माध्यम से गर्भवती महिला

0: शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित किया जा सकता है और ध्यान के द्वारा उसके हार्मोनल सिस्टम को, उसके विचारों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे वो अपनी गर्भावस्था को एक उत्सव के रूप में ले और पूरे आनंद के साथ एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके।
1: मैडम, योग और ध्यान के अतिरिक्त और कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो गर्भ संस्कार के दौरान आप सिखाते हैं?
0: बिल्कुल, योग और ध्यान के अतिरिक्त पंच तत्वों की शुद्धि क्रिया, जिसे हम पंच भूत की महाशुद्धि क्रिया भी कहते हैं, इसमें हमारे शरीर जिससे बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये ही हमारे शरीर को संतुलित करके चलते हैं और इनके बिगड़ जाने से विविध प्रकार की बीमारियां होती है। इस क्रिया के माध्यम से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। पंच तत्वों की शुद्धि क्रिया वात, पित्त, कफ आदि दोषों को भी नियंत्रित करके चलती है, क्यों? यदि वो पंच तत्वों की शुद्धि क्रिया ये प्रोसेस पूरे समय करती रहे तो वो समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त करके एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है।
1: नीलम जी, आप एक्यूप्रेशर थेरेपी में भी विशेषज्ञ हैं। गर्भावस्था की छोटी मोटी समस्याओं में एक्यूप्रेशर कैसे सुरक्षित और मददगार होता है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम मेरिडियन पॉइंट्स कहते हैं। कुछ मेरिडियन होते हैं और कुछ डायरेक्ट होते हैं। यदि हम इनको प्रेस करें तो उन ऑर्गन में, उन नर्व में स्टिम्युलेशन मिलता है, मैसेजेस अच्छे से ट्रांसफर होते हैं, जिससे कि ब्रेन हमारे उन ऑर्गन्स को अच्छे से नियंत्रित कर सकता है और ऑर्गन के थ्रू भी ब्रेन को मैसेज किसी भी बाधा के बिना पहुँचाए जा सकते हैं। गर्भावस्था में होने वाली छोटी मोटी समस्याएं जैसे बैक पेन, सिर दर्द होना, हाथों पैरों में स्वेलिंग आना आदि को कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।
1: नीलम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि गर्भ संस्कार की यात्रा में पति और परिवार की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?
0: बिल्कुल, परिवार की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे ही इस खुशखबरी का पता पड़ता है कि एक छोटा बेबी आने वाला है, तब से प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि उसके आसपास अच्छा वातावरण बनाए, उसको बहुत, उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि वो बच्चा केवल उस माता पिता का बच्चा नहीं होता है, वो पूरे परिवार और कुटुंब का बच्चा होता है। इसी के महत्व को समझते हुए इनों में गर्भ पुष्टि यज्ञ करवाया जाता है, जिससे कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों की आहुति दी जाती है और वो फ्यूम्स जब गर्भवती माता के गर्भ में जाते हैं तो उसे पुष्ट करते हैं। परिवार के प्रत्येक सदस्य की ये जिम्मेदारी है कि उस बच्चे के आसपास हम कैसा व्यवहार करें, किस भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि वो आपकी प्रत्येक बात सुन रहा है और आपके हर व्यवहार को अपने अंदर आत्मसात कर रहा है।
1: नीलम जी, 15 अक्टूबर यानी कल विश्व गर्भावस्था और शिशु मृत्यु स्मरण दिवस मनाया जाएगा। ये दिन उन माता पिता और परिवारों की भावनाओं को समझने का अवसर है जिन्होंने गर्भावस्था के दौरान या शिशु के जन्म के आसपास अपने बच्चे को खोया है। ऐसे समय में परिवार को उसकी भावनाएं समझने और उसका साथ देने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में आप बताइए।
0: ऐसे समय में परिवार उसका बहुत बड़ा संबल बन सकता है। उसके आसपास अच्छा वातावरण बनाए रखना जाना चाहिए। उसे इस बात का विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि इस आघात के लिए वो अकेली दोषी नहीं है। उसके आसपास आनंदमय वातावरण बनाया जाना चाहिए। उसकी भावनाओं को साज संभाल करना चाहिए। उसे प्रेम और धैर्य देना चाहिए। जब भी परिवार में ऐसी कोई घटना होती है तो उस अकेली महिला को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस समय वो गहरे मानसिक आघात से गुजर रही होती है, बल्कि ये कोशिश की जानी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी एक सामान्य जीवन में वापस आ सके। उसके स्वास्थ्य के को ध्यान में रखते हुए उसे अच्छी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: इस तरह के केस में उदासी, अपराध बोध, चिंता और अकेलेपन से जूझ रही महिलाओं को गर्भ संस्कार में आप किस प्रकार से मदद करती हैं, इस बारे में बताइए।
0: जो महिलाएं इन भावनाओं से गुजर चुकी हैं, इसमें हम गर्भ संस्कार के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो दबी हुई ये सारी नकारात्मक भावनाएं हैं, उसे विशिष्ट योग क्रियाओं के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से

0: और योग निद्रा के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है। माता पिछले बच्चे के चले जाने के अपराध बोध, डर और नकारात्मकता से जो घिरी हुई होती है, गर्भ संस्कार में यह प्रयत्न किया जा सकता है कि आगे आने वाले बच्चे के ऊपर उसकी इन भावनाओं का प्रभाव न पड़े। अंत में आप हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को, विशेषकर महिला श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं आकाशवाणी उज्जैन के समस्त श्रोताओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान राम, भक्त प्रह्लाद, अभिमन्यु ये सभी गर्भ संस्कार के ही उदाहरण हैं। गर्भ संस्कार के माध्यम से विचारों को उच्चतम बनाया जा सकता है, अच्छे विचारों को रोपित किया जा सकता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि विचार ही है जो एक व्यक्ति को उच्चतर स्थिति की ओर ले जाते हैं और विचार ही है जो निम्नतर स्थिति की ओर व्यक्ति को अग्रसर करते हैं, क्योंकि अच्छे गुणों का प्रत्यारोपण एक बीज में ही किया जा सकता है, उसके वृक्ष बन जाने के बाद नहीं।
0: नीलम जी, आज आपने गर्भ संस्कार, योग और मानसिक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही सरल और सहज शब्दों में हमें मार्गदर्शन दिया। हमें उम्मीद है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी से हमारे श्रोता जरूर लाभ उठाएंगे। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ साझा करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद अनुभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आकाशवाणी केंद्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
2: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
3: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
4: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
0: सखियों, अभी आपने गर्भ संस्कार कोच श्रीमती नीलम नायक जी से विशेष चर्चा सुनी। कार्यक्रम में वक्त हो गया एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो आइए सुनते हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहने का ये खूबसूरत गाना।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: सखियों, नवरात्रि के बाद सभी जगह दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है, और जब हम घर की सफाई करते हैं तो क्या क्या सामान बाहर निकलता है? टूटा फूटा बंद पड़ा मोबाइल फोन, पुराने चार्जर, हेडफोन, बैटरी, मिक्सी ग्राइंडर के खराब तार, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद घड़ियां, बच्चों के पुराने इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, और भी न जाने कितना सामान आ जाता है जो हम कबाड़ में दे देते हैं या यूं ही फेंक देते हैं। लेकिन ठहरिए, ये जो आपको सामान दिख रहा है ये कोई साधारण कबाड़ नहीं है, बल्कि यही ई वेस्ट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिसमें सीसा, पारा और जहरीले रसायन होते हैं। यदि इन्हें हम खुले में ऐसे ही फेंक दें तो बारिश और धूप में ये रसायन हमारी मिट्टी और पीने के पानी में घुल जाते हैं। सोचिए, दिवाली पर हम घर तो साफ कर लेते हैं लेकिन अपनी धरती माँ को जहरीला बना देते हैं। तो चलिए, आज 14 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस पर हम सब एक संकल्प लें, अपने घर में ई कचरा बॉक्स बनाएं, इसमें सभी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामानों को रखें, इसे कभी भी गीले या सूखे कचरे के साथ ना मिलाएं, बल्कि इन्हें उपयुक्त संग्रह केंद्र या पंजीकृत ई कचरा रिसाइकिल तक पहुंचाएं, ताकि इसे सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल किया जा सके। अगर कोई सामान थोड़ा बहुत खराब है और रिपेयर करवाया जा सकता है तो उसे रिपेयर करवा लें, इससे पैसे भी बचेंगे और कचरा भी कम होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके काम का नहीं है और आप उसे यूं ही फेंक रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो सामान हम किसी जरूरतमंद को दे दें। सखियों, यदि आप भी अपने घर में इस तरह के प्रयास करेंगी तो ई कचरे के सही निपटान और प्रकृति की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। बातें आगे आपसे और भी होगी, लेकिन उसके पहले सुनते हैं प्यार भरा ये सदाबहार गाना।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सखियों, इन दिनों नवरात्रि की धूम है और आप में से कई बहनें दर्शन के साथ साथ व्रत उपवास भी रख रही हैं, तो सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। व्रत उपवास के दौरान कुछ छोटी पर जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, साथ ही नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ लेते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे और कमजोरी महसूस ना हो। भूखे रहने के बजाय हर 3 से 4 घंटे में फल, मखाने, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे से बनी हल्की और पौष्टिक चीज़ें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, साथ ही तली हुई चीज़ों से परहेज करें। व्रत के दौरान शरीर को आराम की भी जरूरत होती है, इसलिए भरपूर नींद लें ताकि चेहरे पर चमक और ताजगी बनी रहे। तो बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और इस पावन पर्व का आनंद लीजिए। आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। अपनी रेडियो मित्र डॉक्टर अनुभा गुप्ता को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: FM 102.5 MHz और साथ ही न्यूज ऑन AIR के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। 11 बजने को है। अब हमारा अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

आप सुन रहे हैं विवेक भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

0: स्नेहा शंकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये और गैर फिल्मी रचना। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ

0: विविध भारती पर
1: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
2: कार्यक्रम का अगला गीत रोचक कोहली के संगीत निर्देशन में गुरुप्रीत सैनी का लिखा हुआ, आवाज है आयुष्मान खुराना की।

यह आवाज़ थी आयुष्मान खुराना की। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं अदनान सामी का संगीत, रियाजुर रहमान सागर की रचना, स्वर अदनान सामी और आशा भोसले के।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए शुभा मुदगल की आवाज में ये गैर फिल्मी रचना।

यह आवाज थी शुभा मुद्गल की, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित कुमार गंधर्व का गाया ये भक्ति पद।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम

0: प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर
2: मार उड़ाई
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

शोभा जोशी की आवाज में हम आपको मिर्जा गालिब की ये रचना सुनवा रहे हैं। संगीत शांतनु मोइत्रा का।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जिससे वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में भी निरंतर विकास सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ प्राथमिकता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले भारत के व्यापार समझौतों में लगभग $10 ट्रिलियन के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद GDP वाली अर्थव्यवस्थाएं शामिल थी, जो अब बढ़कर लगभग $70 ट्रिलियन हो गई हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत विश्वसनीय साझेदारियों की तलाश में है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन के तहत देश के जहाज निर्माण उद्योग को सहायता देने के लिए ऋण जोखिम बीमा की 2 विशेष योजनाओं की घोषणा की है। मुंबई में 21वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि जहाज निर्माण एक बड़ा और कई वर्षों तक चलने वाला कार्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी देगी और बीमा दावों की स्थिति में बीमा कंपनियों को प्रत्यक्ष सहायता भी प्रदान करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और आसियान एक शांतिपूर्ण, स्थिर और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र में समान हित साझा करते हैं। नई दिल्ली में आज आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आसियान भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का केंद्र है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया का जल क्षेत्र परस्पर जुड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र है, जिससे इसकी सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है।
1: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
0: दिल्ली की विशेष अदालत ने आज CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पार्टी के एक अन्य नेता अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने तीनों नेताओं को जंतर मंतर में प्रवेश करने की कोशिश के आरोप में हिरासत में लिया था। इससे एक दिन पहले ही जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4था T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 39 अंक गिरकर 72,995 पर और निफ्टी 30 अंक की गिरावट के साथ 22,692 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज 14 अक्टूबर है, विश्व मानक दिवस है ना। मानकों की दुनिया में अंकों और गिनती का विशेष महत्व है। चाहे किसी वस्तु का वजन करना हो, लंबाई मापनी हो, या किसी चीज की सही मात्रा तय करनी हो, तो हर जगह गिनती और सटीक माप बहुत जरूरी होता है। तो खरीदारी की बात करें या कारोबार की बात करें, पैसे की अपनी अहमियत होती है। यानी रुपयों और पैसों का हिसाब किताब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आइए आज सुनते हैं कुछ ऐसे ही फिल्मी नगमे जिनमें कहीं रुपए पैसे की बात है, तो कहीं खरीदारी और लेन देन का जिक्र, तो कहीं अंकों की भूमिका। ये है कार्यक्रम का पहला गीत। कैफी आजमी का लिखा गीत है, एसडी बर्मन का संगीत है, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम कागज के फूल।

गीता दत्त और साथियों की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कागज के फूल का ये गीत। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे एसडी बर्मन। और आइए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आवारा से सुनते हैं। स्वर शमशाद बेगम और साथियों के, बोल शैलेंद्र के हैं और धुन शंकर जयकिशन की।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
5: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
6: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध।

0: वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
1: मेरा साया साथ होगा।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं जयदेव के संगीत निर्देशन में सुदर्शन फाकिर का लिखा गीत। फिल्म का नाम है दूरियां। आवाजें प्रीति सागर, रेणु मुखर्जी और साथियों की।
1: इकड़ तुकड़ भंबे भो 80-90 पूरा सौ गलोटा तीतर मोटा

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने फिल्म चलती का नाम गाड़ी का गीत सुना। शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीत SD बर्मन का था।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे। संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी, उनसे होगी संगीत साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर

कल्याणपुर और कमल बारोट की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे का ये गीत, शब्द शकील बदायूनी के थे। कृपया से दोबारा सुने, शब्द शकील नोमानी के थे और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की थी। और ये है राजेश रोशन का संगीत, पयाम सईद की रचना, नितिन मुकेश की आवाज है, फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म संत ज्ञानेश्वर का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास हैं, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है कर्ज़।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नील बट्टा सन्नाटा से हमने लिया है। स्वर है रोहन उलपत, आरती शेनाई और साथियों के, गीतकार नितेश तिवारी हैं, संगीतकार हैं रोहन और विनायक।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
2: थी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म दे दनादन का गाना, गाने वाले कलाकार RDB, मानक और सेलिना।
6: क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा, क्या बात है, क्या चीज है पैसा।

0: ये था फिल्म दे दनादन का गाना।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा सारा साथ होगा।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
5: हाँ जी।
1: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
1: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: है ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
4: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप? अच्छे हैं बिल्कुल आप अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम को सुनने के लिए बेताब हैं। भाई देखिए ना, आज सुरीला सफर हम सजा रहे हैं नामों से। हाँ, आज सुरीला सफर में सजेगी नामों की महफिल, जहाँ कोई कहेगा माय नेम इज एंथनी और कहीं गूंजेगा रेखा, शबनम और लीना जैसे नामों का जादू। तो आइए गीतों के इस सफर में मिलते हैं कुछ जाने पहचाने नामों से, कुछ दिलचस्प अंदाज में। हो सकता है इनमें से कोई नाम आपका भी हो।

0: तो चलिए पढ़ लेते हैं हमारी आज की इबारत क्या है, या यूं कहें कि आज का टेक्स्ट क्या है। दोस्तों, आज नाम की महफिल सजी तो हर कोई अपने नाम की तारीफ करने लगा। एंथोनी बोले, हमारी पहचान का तो अपना ही अंदाज है। जी हाँ, एंथोनी ने कहा, हमारी पहचान का तो अपना ही अंदाज है। रीटा ने कहा, जरा अप्रैल फूल देखने जाइए, वहां भी हमारा ही जलवा है। लीना क्रिस्टीना इतराई, नाम हो तो ऐसा कि सुनते ही सब मुस्कुराएं। सुल्ताना ने ठसक से कहा, आप सब अपनी जगह पर, मेरा नाम भी किसी से कम नहीं। रेखा ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, जब से मुझे देखा खाना पीना सब दुश्वार हो गया ना। तभी लीना बोली, अरे मुझे कैसे भूल गए, मैं दिल छीन लेती हूँ। अब्दुल ने कहा, नाम की बात छोड़िए, मैं तो सबकी खबर रखता हूँ। तभी अब्दुल रहमान ने टोका, जरा हमें भी याद रखिए, हमारा नाम भी अब्दुल रहमान है। शबनम, जमीला और राजू एक साथ बोल उठे, बस बस, अब फैसला श्रोता करेंगे कि किसका नाम सबसे प्यारा है। तो सुनिए नामों की ये मजेदार तकरार, जिसमें हर नाम का अपना रंग है, हर नाम का अपना तराना, आज के इस सुरीले सफर में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत।
1: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate.
2: What?
3: My name is Anthony Gonsalves.
2: Gonsalves?
3: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: से मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: बात वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: ये आवाजें थी किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में नामों की महफिल सजी है। नाम भी कितने खास होते हैं, हर नाम की अपनी पहचान, अपना अंदाज और उससे जुड़ी कुछ प्यारी सी यादें होती हैं। कोई नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कोई दिल में प्रेम और अपनत्व का एहसास जगा देता है। नाम केवल पहचान नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, भावनाओं और रिश्तों का सुंदर हिस्सा भी है। फिल्मी गीतों में भी नामों ने कभी प्रेम की दस्तक दी, कभी शरारत जगाई तो कभी दिल की धड़कनों को आवाज दी। और आपने कुछ गानों के बोल लिखे हैं जो हमारी लिस्ट में आज शामिल भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि आपने तो आज पूरी खिचड़ी बना दी है और हमें तो कोई नाम याद नहीं आ रहा है। फिल्में जरूर देखी हैं लेकिन उम्र का असर है शायद। चलो छोड़ो, आज गाने सुनाना आपको और सभी को नमस्कार देती हैं। भाई हमने खिचड़ी नहीं पकाई, हमने पुलाव बनाया है जिसमें चावल बिल्कुल अलग है।

अलग अलग अलग है, ध्यान से देखिए तो सही हमारी डिश क्या है। और मैं एक श्रोता लिख दें कि मेरे पापा रेडियो बहुत ही चाव से सुनते थे, खासकर पापा जी लता जी की गजलें बहुत सुनते थे, उन्हें संगीतकार मदन मोहन जी बहुत पसंद थे। मैं छोटा था तो मैंने पूछा पापा जी मेरा नाम ये क्यों रखा, तो उन्होंने कहा संगीतकार मदन मोहन जी का संगीत उन्हें बहुत पसंद है इसलिए तुम्हारा नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा है। आज मेरे पिताजी को गुजरे 46 बरस हो गए हैं लेकिन उनकी चॉइस पर मुझे गर्व है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखती है कि नवरस नवकल्पना नवरूप सज्जित नवीन नामकरण युक्त गीतों भरी इबारत स्वागत योग्य है। और आप लिखते हैं कि कुछ नाम गीत और व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ जाते हैं, इन्हीं भांति भांति के नामों से पिरोई हुई संगीतमय सुरीला सफर का आज आपको इंतजार है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज नाम पर आधारित कार्यक्रम होगा, इसमें भी व्यक्ति दो दो विचार चलते हैं। कोई कहता है कि नाम में क्या रखा है, गुलाब का कुछ नाम रखने पर भी वो खुशबू तो देगा ही, तो कोई कहता है नाम ही आदमी की पहचान है, जैसे कि सुहाना सफर। अब कार्यक्रम में मित्रों के विविध विचार और आपके विचार भी लिए जाएंगे, देखें क्या निर्णय लिया जाता है। तो के सवाल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और उनका जवाब दें तो मजा आएगा। हाँ, हमने आज आपसे जानना चाहा है कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का बहुत फिल्मों में नाम विजय था, तो ये नाम बड़ा अच्छा लगता था हमें, या चांदनी, ये नाम भी बहुत फेमस हुआ। तो आप के फिल्म जो फिल्मी किरदार हैं उनमें आपको कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है? कई बार आपका नाम उनके नामों से मिलता जुलता भी हो सकता है, इसलिए भी हमें वो नाम पसंद आता है ना। बताइएगा कि आप फिल्मी किरदार का नाम बहुत पसंद है आज तक। और हमारा दूसरा सवाल है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा या मोगेम्बो खुशवा, इस तरह के जो किरदार मशहूर हुए हैं फिल्मी दुनिया में, फिल्मों में, और हम उनका यदाकदा प्रयोग भी कर देते हैं। आपको ऐसे तकिया कलाम वाले कौन से किरदार आज तक याद हैं और आप अक्सर उन्हें गुनगुनाते हैं या पसंद भी करते हैं? जैसे ही वो फिल्म हम देखते हैं और कलाकार हमारे सामने कहता है कि मोगेम्बो खुशवा, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही कोई किरदार आपके मन पे अंकित हुआ होगा, उसका भी जिक्र आप करें, किसी एक किरदार का, बहुत सारे किरदार नहीं, फिर हम उसे शामिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है। किसी एक किरदार जो आपकी पसंद से जुड़ा है उसका जिक्र आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनते हैं, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, फिल्म का नाम है भाई भाई। बहुत ही प्यारा गीत है, ध्यान से सुनिएगा। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की जुगलबंदी बड़ी मजेदार है।

मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा। मेरा नाम अब्दुल रहमान, रिश्ता वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल होता गुल गुल बार बार बाबा।

0: तो बड़ा ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। एक श्रोता लिखती है कि वर्ष 1956 में आई प्रसिद्ध फिल्म भाई भाई का सदाबहार गीत मेरा नाम अब्दुल रहमान वास्तव में भारतीय सिनेमा का एक अनमोल रत्न है। इस गीत को लॉन्च किया गया था महान संगीतकार मदन मोहन के संगीत निर्देशन में और इसके जादुई बोल राजेंद्र कृष्ण ने लिखे थे। मेरा नाम अब्दुल रहमान सिर्फ एक मनोरंजक फिल्मी गाना नहीं बल्कि ये मदन मोहन का बेजोड़ संगीत और किशोर कुमार और लता मंगेशकर की अमर गायकी का एक ऐसा उत्सव है जो हर पीढ़ी को पसंद आता है। बिल्कुल आपने सही लिखा, वाकई ये गीत बेजोड़ है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि नाम की भी अपनी एक अद्भुत दुनिया होती है जहां शब्दों से अधिक भावनाएं बोलती हैं और अक्षरों से अधिक यादें सांस लेती हैं। कितना अनोखा है किसी का नाम हमारी जबान पर आते ही उसका चेहरा आंखों के सामने उभर आता है। नाम अक्षरों में भले ही सीमित हो लेकिन उसके एहसास की कोई सीमा नहीं होती। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नाम केवल अक्षर का समूह नहीं बल्कि मनुष्य के अस्तित्व पहचान और सामाजिक अस्मिता का आधार है। जहां नाम संज्ञा होती है वहां एक निराकार चेतना से साकार पिंड तुम्हें बदल जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने राम लिखा तो वो केवल एक शब्द नहीं मर्यादा और मानवीय आदर्शों की साक्षात प्रतिमूर्ति बन गया। और जब नाम के अहंकार का विसर्जन सर्वनाम यानी मैं से उठकर हम या तुम पर आता है तो वो समष्टि से जुड़ जाता है। नाम तब तक मात्र कोरी स्लेट रहता है जब तक कि विशेषण उसे अपने रंगों से नहीं भरता, क्योंकि नाम की पहचान उसके गुण दोषों से जुड़ी होती है। वैसे ही राजा हरिश्चंद्र का नाम के साथ सत्यवादी जगते ही ये एक शाश्वत मूल्य यानी सिद्धांत बन जाता है। नाम का चरम लक्ष्य अवयव हो जाना है। जब कोई नाम इतिहास काल मृत्यु और युगों के थप्पड़ों के बाद भी नहीं बदलता तो वो अवयव बन जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी या सुभाष चंद्र बोस, समय बीतने पर भी इनकी चमक और प्रासंगिकता अपरिवर्तित बनी हुई है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात लिखी और आपने हमारा मन जीत लिया। वाकई चलिए तो हमारे सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। आपने नोट कर लिए हैं ना? वैसे तो कुछ श्रोताओं ने जवाब देना शुरू भी कर दिया है लेकिन चलिए एक बार सवाल फिर से दोहरा देते हैं कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब का कितनी फिल्मों में नाम विजय था और चांदिनी ओ मैं तेरी चांदिनी ये नाम भी हमें बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे बहुत सारे फिल्मी किरदारों के नाम दर्शकों के दिलों में बस गए, वो कौन सा नाम है जो आपको आज भी पसंद है? तो हमारा दूसरा सवाल था प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा और मोगैम्बो खुश हुआ। इस तरह के किरदार हम अक्सर अपने घर में गुनगुनाते हैं जब फिल्म देखकर आते थे। बहुत पहले तो यही होता था कि ये किरदार हमारे होठों पे हर वक्त रहा करते थे। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। कौन से है वो मशहूर किरदार जो आज भी आपके दिल से नहीं निकले हैं? उनका जिक्र आपको किसी एक किरदार का जिक्र करना है। आगे बढ़ते हैं एक और गीत के साथ। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन की धुन। ये भी एक नायाब गीत है जिसे गाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
1: शबनम, प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो।

ए पहचाना, मिले थे कभी उस रात को? डरो नहीं, बात है वो रात की, पर रात रात ही रहेगा। मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

उस रोज रात भर शहनाई बजती रही, मैं थी, तुम थी और वो शर्मा नहीं, घबराओ नहीं, कहूंगी किसी से नहीं। जानती हो मेरा नाम है शबनम, प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मीना, मीना, अंजू या मंजू? मीना, मीना, अंजू, मंजू या मधु।

जीवन भर हमारे साथ चलती है और जन्म के साथ ही हमें नया नाम मिलता है, लेकिन उस नाम का अर्थ हमारे कर्म, हमारा व्यवहार और हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व वो हमें प्रदान भी करता है। वहीं एक श्रोता का कहना है कि नाम केवल संबोधन नहीं, हमारी पहचान का वो अक्षर है जिसमें स्मृतियों की सुगंध और व्यक्तित्व की आभा समाहित होती है। आज नामों की इस दिलचस्प महफिल में शब्दों ने मुस्कुराना सीखा है और सुरों ने संवाद करना। सचमुच जब साहित्य की शालीनता में हास्य का रस घुल जाए और संगीत की स्वर लहरियां साथ चले तो साधारण सी बातचीत भी एक अविस्मरणीय महफिल बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम ये जो कार्यक्रम लेकर आते हैं एक मनोरंजक कार्यक्रम है ये आप सभी के लिए, और इसमें हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हम ऐसी महफिल सजाएं कि आपको याद रहे वो महफिल, है ना, और यही एक प्रयास हर उद्घोषक का होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार आम जिंदगी में सिनेमा, टीवी या साहित्य की दुनिया में किसी कलाकार का निभाए हुआ किरदार या मिला हुआ उपनाम इतना मशहूर हो जाता है कि लोग उनका असली नाम भूल जाते हैं। समीर खाकर को लोग उनके असल नाम से कम और टीवी सीरियल नुक्कड़ के किरदार खोपड़ी के नाम से ज्यादा जानते थे। इसी तरह कलाकारों को इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने असली नाम बदलने पड़ते थे या नए नाम मिलते ही वो जैसे ही मैन, बिग बी, गब्बर सिंह, बसंती, ये नाम आपको पसंद आते हैं। बिल्कुल यही सवाल हमने किया था कि कौन से नाम आपको पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज नाम की इतनी बोलबाला है, पर भारत का एक गांव ऐसा भी है वहां किसी का नाम नहीं है। मेरा इशारा भारत के उस अनोखे गांव की तरफ है जहां लोगों को पारंपरिक नामों के बजाय सीटी बजाकर पुकारा जाता है। इस गांव का नाम है कोंगथोंग, जो मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय की खासी हिल्स में बसे कोंगथोंग गांव को विस्लिंग विलेज या एशिया का म्यूजिकल विलेज भी कहा जाता है, जहां अब भी जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ उसके लिए खास और अनोखी सीटी की धुन यानी ट्यून तैयार करती है। वही धुन जीवन भर के लिए उस व्यक्ति की पहचान या नाम बन जाती है। गांव के लोग एक दूसरे को बुलाने, आवाज देने के लिए इतनी सीटी की धुन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर व्यक्ति की धुन बिल्कुल अलग होती है। अरे, आपने एक नई जानकारी हमें दी और हमें लगता है कि ये गांव क्या है इसके बारे में हम भी जानना चाहेंगे, शुक्रिया। वही एक श्रोता लिखते हैं कि नाम पहचान एक जरिया है। इस संसार में जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसे सबसे पहले जो उपहार मिलता है वो है उसका नाम। नाम केवल कुछ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि वो किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व, उसके गौरव, उसकी सामाजिक पहचान का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने।

जब नामों की बात चली तो अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो बहुत ही प्यारा गीत है, शायद बहुत कम सुना है हमने, लेकिन जो हमारे असली श्रोता हैं जो एक एक गीतों की पहचान रखते हैं वो समझ जाएंगे कि हाँ ये गीत तो हमने कई बार सुना है। शंकर जयकिशन के बोल हैं, हसरत जयपुरी की रचना, आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम अप्रैल फूल।

हमारे श्रोताओं ने सवाल के जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक लिखते हैं कि सलमान खान का नाम जो प्रेम है वो उन्हें बेहद पसंद आता है, वहीं किसी को राजू नाम बहुत प्यारा लगता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे तो VBS के सभी उद्घोषकों के नाम बहुत ही पसंद है। अच्छा वहीं एक श्रोता को राधा, नरगिस, राधा, वैजंती माला ये नाम बहुत पसंद आते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि नाम को लेकर दो मुहावरे ज्यादा प्रचलित हैं, आंख का अंधा नाम नयनसुख, नाम लिया और शैतान हाजिर, ये आपने मुहावरे लिखे हैं। वहीं एक श्रोता को शाकाल नाम जो है बहुत पसंद आता है, कुलभूषण खरबंता शायद शाकाल की भूमिका में काफी प्रसिद्ध हुए। और एक श्रोता लिखते हैं कि विजय दीनानाथ चौहान ये नाम बहुत पसंद है, जो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं विजय दीनानाथ चौहान नाम है हमारा और वैसे उन्हें फिल्मों में विजय के नाम से भी बहुत जाना गया है, आप लिखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप हैं, नाम है शहंशाह, ये बहुत अच्छा लगता है। और एक लिखते हैं कि किसी एक फिल्म में उत्पल दत्त को धुरंधर भटावटेकर पसंद आई थी, जोरू का गुलाम में गोविंदा ने फिल्म में अपने मामा को पीके गिरपड़े नाम भी दिया था, वो मजेदार था। एक श्रोता लिखती है कि स्कूल कॉलेज में तरह तरह के नामकरण होते रहते हैं, कुछ नाम को हम बिगाड़कर ही अपने दोस्तों को बोलते थे। 8वीं में क्लास में एक लड़की थी सतवंत कौर, जिसे हम प्यार से सेऊ से सत्तू बोलते थे। उसे समय बिहार में सत्तू अच्छे भजन में नहीं गिना जाता था, पता नहीं कैसे क्लास टीचर को पता लगा और हम जितनी लड़कियां उसे सत्तू बोलते थे सभी सजा मिली। सत्तू खूबसूरत लड़की और पढ़ने में बहुत तेज थी, बाद में वो MBBS डॉक्टर बनी और अपने कार्यक्षेत्र में बहुत सफल रही, अब तो रिटायर होकर अपना जीवन गुजार रही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शाहरुख खान जी का जो नाम था राहुल वो बहुत ज्यादा होता है फिल्मों में, ये नाम उन्हें बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चंद्रमुखी जो फिल्म चंद्रमुखी से है, नैन के चैन चुरा के ले गई चंद्रमुखी, ये नाम इन्हें बेहद पसंद आता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बॉन्ड, माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का किरदार 6 कलाकारों ने निभाया पर नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने, और अगर किसी कलाकार से पूछा जाए तो वो जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाना चाहता भी है। एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदीदा हीरो नाम है मोगेम्बो और हीरोइन में मोना डार्लिंग वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत नाम पसंद है, क्योंकि भारत यानी अपने देश की याद करवाते हैं मनोज कुमार जी, और फिल्मों में वो इसे यूज करते हैं, उनका नाम भारत रखा जाता है, वो इन्हें बेहद अच्छा लगता है। और वही कि प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, जब वो बोलते हैं तो वो बहुत पसंद आता है। जी तो सवाल फिर से दोहरा देते हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो से ट्यून किया है, हो सकता है किसी काम से श्रोता समय पर इस सफर में नहीं आ पाते हैं, तो हमारे सवाल ये हैं कि आपके पसंदीदा फिल्मी किरदार का नाम क्या है। जैसे अभी हमने बहुत से श्रोताओं के जवाब पढ़े और उन्हें अच्छा लगा जो नाम उन्होंने बताए, तो आपको भी बताना है कि जैसे विजय नाम बहुत था फिल्मों में, चांदनी, ऐसे जो नाम है जो हमें बहुत पसंद आए उनको आपको बताना है। और वहीं जैसे हमारा दूसरा सवाल था कि प्रेम नाम है प्रेम चोपड़ा और मोगेम्बो खुशवा, इस तरह के जो किरदार मशहूर हो गए और आज भी हमारे दिल में घुसे हुए हैं, उनका जिक्र आपको करना है, किसी एक किरदार का और किसी एक नाम को पसंद करना है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है स्वर्ग नरक, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

हमारे श्रोता अपनी पसंद के नाम हमें बराबर लिख रहे हैं। एक लिखती हैं कि बाजीराव सिंघम, लिखा है इन्होंने आता माजी सटकले, ये बहुत अच्छा लगता है डायलॉग अजय देवगन का फिल्म सिंघम से। और वहीं एक श्रोता को गब्बर का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए हैं, ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने कहा है कि मुझे मनोज कुमार जी का नाम हमेशा बहुत ही पसंद रहा है, आज भी है भारत गीत तो पूर्व पश्चिम का गीत, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, ये अच्छा लगता है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अमरीश पुरी साहब तो मोगम्बो के नाम से घर घर में मशहूर हो गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते गए, बहुत ही अच्छे विलन के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। बिल्कुल, उनका चेहरा देखकर ही डर लगता था जब वो कहते थे मोगम्बो खुश हुआ, है ना, कितना अजीब सी घबराहट होती थी। वहीं एक श्रोता को शत्रुघ्न सिन्हा का नाम, जो कहते कि नाम चीनू कहते हैं मुझे, बहुत अच्छा लगता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा का अगर ये डायलॉग आपको पसंद है तो एक डायलॉग और अच्छा लगता होगा, खामोश, जो अक्सर उनके साथ जुड़

है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे राज, अनिल, जय ये नाम बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, ये बहुत अच्छा लगता है। और करण अर्जुन फिल्म में अमरीश पुरी का नाम ठाकुर है जो इन्हें पसंद आता है एक श्रोता को। एक श्रोता ने कहा है कि अमजद खान का शोले में गब्बर सिंह का नाम भूले से भुलाया नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा, वो तो नाम इतिहास में लिख दिया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गुजराती फिल्मों के कलाकार फिरोज ईरानी जो कि विलेन का रोल करते थे, कई फिल्मों में उनका प्रेम चोपड़ा के जैसा ही डायलॉग होता था, गुलाब गुलाबनी बात गुलाब जेबी। अच्छा। और वहीं एक श्रोता को विजय और रवि नाम ही पसंद है। एक श्रोता लिखती है कि रेखा और हमारा ही नाम हमें ज्यादा पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा कि किसी फिल्मी चरित्र को मेरे वाला नाम प्राप्त हुआ होगा। हाँ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हमारा नाम किसी फिल्मी चरित्र से मिले। हमने तो ये पूछा, ऐसा हो सकता है कई बार हमारा नाम कहीं आया हो और हमें याद हो। वहीं एक श्रोता को मनोज कुमार का भारत कुमार, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, मोगैम्बो खुशवा ये बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता को देवानंद साहब का जो है हीरा नाम, हीरा पन्ना फिल्म में हीरा नाम था, वो बेहद पसंद है। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, और ये गीत भी बहुत कम सुना गया है। बताइएगा ये गीत आपने सुना था बहुत पहले कभी?

अच्छा बताइए ना, ये गाना आप में से कितने लोगों ने सुना था, मेरा नाम है जमीला, बताइएगा। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नाम रूप और गुण से ही तो भरी हुई है दुनिया और उसमें अपने अपने व्यवहार की फलश्रुति है। वैसे उस एक के अनेक संज्ञा स्वरूप ही नहीं अपितु गुण रूप ज्ञापक सहस्त्र नाम तो केवल निदर्शन परक ही है, अन्यथा वो विष्णु सहस्त्र नाम का एक तो अनाम होते हुए रूप गुण धाम से परे भी स्वयं के सच्चिदानंद स्वरूप में भी प्राप्य है और वही प्रिय भी है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ओ जूली, ओ शीला और रानी जमालो, ये गाना जो है इन्हें बेहद पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत सारे नाम आते हैं। और एक श्रोता ने कहा कि पहले एक बार नाम पर ही एक प्रोग्राम हुआ था, याद नहीं। अच्छा, उसमें एक सवाल आया था कि क्या आपका नाम कोई गीत में आता है। अच्छा, ऐसा कोई कार्यक्रम था। वहीं एक श्रोता का कहना है कि बच्चन साहब पर अमिताभ बच्चन बहुत ही कम लोग कहते हैं, या तो बिग बी या अब एक नया नाम आ गया है करोड़पति अंकल। एक श्रोता लिखते हैं कि अमर अकबर एंथनी फिल्म में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन अमर अकबर एंथनी बनते हैं, ये नाम इन्हें पसंद है। एक श्रोता ने लिखा है कि कहते हैं कि व्हाट इज द नेम, बट सब कुछ नाम में ही है और सब भागते भी नाम के लिए, पहचान भी नाम से ही है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें गैम्बलर पिक्चर का गाना जो देवानंद साहब और जाहिदा गाते हैं, मेरा मन तेरा प्यासा पूरी कब होगी आशा, अच्छा लगता है। और बातों बातों में हम कहते हैं कि हमारा नाम सूरमा भोपाली, ये सूरमा भोपाली नाम इन्हें बेहद पसंद आया, जो कि फिल्म शोले में जगदीप साहब बोलते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप मुझे लिखते हैं कि आप एक नाम तो भूल ही गई हैं, मेरा नाम है चमेली, मैं हूं मालन अलबेली। बिल्कुल नहीं भूले जनाब, पिछले कार्यक्रम में इस गाने को हमने शामिल कर लिया था, इसलिए इस बार इस गाने को हमने नहीं लिया। वहीं एक श्रोता को मेरा नाम है लखन, राम लखन बहुत पसंद आता है। और एक श्रोता कहते हैं कि आज तो नामों की भरमार रहेगी, नाम करने के लिए सब कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं। रही बात फिल्मी नामों की, तो वो तो सर चढ़कर बोलते हैं, जैसे मेरा नाम राजू, घराना अनाम, जूली आई लव यू, लीना उली ना मिली, ये सभी गाने पसंद हैं या नाम पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मैं खो सी जाती हूं, संगीत में इतनी शक्ति होती है कि हर दुख दर्द आदमी भूल जाता है। ऐसा ही इंसान की भी फितरत होनी चाहिए, उसके बोली में इतनी सच्चाई और अपनापन होना चाहिए कि राह चलता आदमी भी अपना बन जाए। क्या बात है। कार्यक्रम का अगला गीत रविंद्र रावल का लिखा हुआ राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया हुआ है, आवाजें उषा मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है तराना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि नाम अब्दुल है मेरा शान, फिल्म का ये गाना हमें बहुत अच्छा लगता है, जो अब अगला गीत है। बिल्कुल हाँ, रफी साहब की खनकती आवाज में आप सुनना चाहते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पड़ोसन में सुनील दत्त का नाम भोला और किशोर कुमार का गुरु इतना लोकप्रिय हुआ कि वे दोनों कलाकार जीवन पर्यंत एक दूसरे को गुरु और भोला कहकर बुलाते रहे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो अभी पूछा जमीला वाला गाना, हमने ये पहली बार सुना है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि मेरा नाम है जमीला, ये गाना उन्होंने पहली बार सुना है। चलिए, अच्छा लगा ना आपको ये गाना। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सच कह रहा हूं, मेरा नाम किसी एक्टर का फिल्म में वही होता है जो मैं खुश होता हूं, या किसी गीत में या कृष्ण जी के किसी भजन में मेरा नाम आता है तो खुशी होती है, क्योंकि कृष्ण जी का पर्यायवाची ही मेरा नाम है। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे अमृता सिंह का रूबी नाम पसंद है, क्योंकि मेरा घर पर पुकारने वाला नाम यही है, सब मुझे कहते हैं सुन रूबिया। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा लगता है जब हमें इस तरह से नामों से चिढ़ाया जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि क्या अभी तक किसी ने मुगले आजम और सलीम और अनारकली को याद नहीं किया। और वहीं एक श्रोता को कटी पतंग का बिंदु का गीत बहुत पसंद है, जो अभी हमने आपको सुनवाया। और एक नाम मैं आपको याद दिलवाना चाहती हूँ, बसंती, बसंती नाम है मेरा, ये भी किसी ने याद नहीं किया। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां शान फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में सुनवा रहे हैं गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

0: क्या? हाँ, नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर
1: जी। सबकी खबर आप रखें ना रखें, लेकिन अपनी खबर, अपने लोगों की खबर आपको जरूर रखनी है, अपने नाम को बचाए रखना है। और इसी उम्मीद के साथ आज का सुरीला सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी ना अगले किसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए खिलाड़ी फिल्म का गीत। अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ों में अनवर सागर का लिखा ये गीत है और धुन जतिन ललित की है।

और अब सुनिए भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज़ में। गीत समीर का है और संगीत अमाल मलिक और प्रीतम का।

0: सोनू निगम के गाए इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया है। इस लेख में देश की शासन व्यवस्था में कल्याण से आगे बढ़कर लोगों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता, गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवाओं और ऋण सुविधाओं के जरिए लोगों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य का अहम हिस्सा बताया। श्री सिंधिया ने अपने लेख में कहा कि देश की प्रगति का असली पैमाना हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाना और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत में जरूरी सामग्री के उत्पादन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर चिप बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, गैस और अन्य जरूरी चीजों के लिए कुछ देशों पर निर्भरता बड़ी चुनौती है। सरकार अब चिप निर्माण के साथ इनसे जुड़ा हुआ पूरा इकोसिस्टम देश में विकसित करने पर ध्यान दे रही है। इसके तहत मटेरियल, कंपोनेंट और मशीनरी के घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज उमरिया जिले के गुरवाही गांव में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी करेंगे। इसके तहत प्रदेश की करीब 1,25,00,000 पात्र महिलाओं के खातों में 1,500 रुपये प्रति महिला के हिसाब से राशि अंतरित की जाएगी। इसके साथ ही पात्र लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस रिफिल के लिए अनुदान राशि भी दी जाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 144

करोड़ रुपये से ज़्यादा 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। प्रदेश सरकार ने कल रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 जिलों के कलेक्टरों समेत कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सुखबीर सिंह को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया है, जबकि उन्हें पीडब्ल्यूडी का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। भरत यादव को जनसंपर्क विभाग के सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं हरदा, नर्मदापुरम, बालाघाट और सिंगरौली में भी नए कलेक्टर नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना को लेकर आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने पर चर्चा जारी है। इस योजना के तहत चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक हर साल 12,000 रुपये यानी कुल 48,000 रुपये की मदद मिलती है। इसके लिए अभिभावकों की सालाना आय 3.5 लाख रुपये तक और कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक होना जरूरी है। मध्य प्रदेश अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में होने वाले इस आयोजन का मकसद शहरों के विकास के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देना है। कॉन्क्लेव में शहरी बुनियादी सुविधाओं, आधुनिक आवास, डिजिटल गवर्नेंस और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा होगी। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित करने पर भी विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही निवेशकों के साथ बैठकें और निवेश प्रस्तावों पर चर्चा होगी। भारत में 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 12% रही। टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है और टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 28 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जांच की जा चुकी है। सरकार ने दवा प्रतिरोधी टीबी के मरीजों के लिए 6 महीने का नया इलाज भी शुरू किया है। इसके अलावा 11 राज्यों के 55 जिलों में जागरूकता अभियान चलाकर बीमारी की जल्द पहचान और समय पर इलाज पर जोर दिया गया है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में 15 से 17 अक्टूबर के बीच मौसम बदलने वाला है। प्रदेश के 20 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना है। 15 और 16 अक्टूबर को ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में असर दिखेगा, जबकि 17 अक्टूबर को रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में फिलहाल बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में रैंप योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर 2 दिवसीय वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम कल से शुरू होगा। मंदसौर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित जिला स्तरीय पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में मंदसौर जिले की टीम प्रथम स्थान पर रही और नर्मदापुरम के शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दोपहर समाचार के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान और भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और आसियान देशों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त शोध, तकनीकी साझेदारी और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत रक्षा थिंक टैंक फोरम में रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद, साइबर अपराध, समुद्री चुनौतियों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी देशों को साथ आना होगा। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान सदस्य देशों के शांतिपूर्ण, स्थिर और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित हैं और भारत के हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में आसियान का महत्वपूर्ण स्थान है।
2: भारत और आसियान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समृद्धि और खुले समावेशी सहयोग के पक्षधर हैं। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा सागर और महासागर की परिकल्पनाएं खुले और बहुध्रुवीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें भारत आसियान में नेतृत्व वाले मंचों के माध्यम से आगे बढ़ाता है।
1: श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे इसकी सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है।
2: हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत समुद्री डकैती, मानव तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और अन्य खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इन प्रयासों में समुद्री सूचना केंद्रों के बीच नियमित संवाद, नौसेना और तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: श्री सिंह ने समुद्री आपदा मोचन पर अभ्यास सत्र और ड्रोन रोधी समाधानों पर संयुक्त अध्ययन जैसे पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। श्री सिंह ने चर्चाओं को जारी रखने के लिए संवाद को बढ़ावा देने की बात कही। श्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और अंतरिक्ष आधारित प्रणालियों जैसी प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मध्यम शक्ति वाले देशों द्वारा तय नियमों को लागू करने में सहमति, आपसी समझ और साझा हित महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मध्यम शक्ति वाले देशों यानी मिडल पावर से आशय अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले देशों से हैं। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में डॉ जयशंकर ने कहा कि धमकियों के माध्यम से दूसरे देशों पर अपनी शर्तें थोपने का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि विश्व नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान बदलाव को एक अलग प्रकार की व्यवस्था के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए।
3: अब हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें देशों की हिस्सेदारी बदल रही है और निर्णय लेने में उनकी भूमिका बढ़ रही है। दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस पर अब अधिक देश सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। यह नई व्यवस्था भले ही पूरी तरह व्यवस्थित न हो और उसमें कुछ उलझने हो, लेकिन यह पुराने अनुभवों, देशों के अपने हितों और व्यवस्था बिगड़ने के संभावित परिणामों की चिंता को ध्यान में रखकर विकसित होगी।
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है जिसकी GDP लगभग $4 trillion है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने पिछले चार वर्षों में 38 विकसित देशों के साथ वरीयता आधारित व्यापार समझौते किए हैं। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य भारतीय व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच को बढ़ाना और देश के बाजारों को वैश्विक साझेदारों के लिए खोलना है। श्री गोयल ने कहा कि भारत कनाडा, मेक्सिको, मर्कोसुर, यूरेशिया और कई अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है।
4: भारत को 2014 तक कई देशों के बाजारों में विशेष व्यापारिक पहुंच हासिल थी, जिनकी कुल अर्थव्यवस्था लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर थी। आज भारत के व्यापार समझौतों के दायरे में लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर की संयुक्त अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। हमारा लक्ष्य 115 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में से 85 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले देशों के बाजारों तक भारत की पहुँच बढ़ाना है।
1: श्री गोयल ने भारत अमेरिका संबंधों पर कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहद महत्वपूर्ण है और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव के बावजूद ये और मजबूत होंगे।
4: भारत के संबंध अमेरिका के साथ कई अहम क्षेत्रों में मजबूत हैं। इनमें व्यापार, रक्षा, तकनीक, महत्वपूर्ण खनिजों और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हम कई स्तरों पर अमेरिका के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत और अमेरिका के संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं और आने वाले समय में इनके और मजबूत होने की उम्मीद है।
1: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सतत विनिर्माण के लिए संपूर्ण तंत्र विकसित करना आवश्यक है।
5: मटेरियल्स आर वेरी इम्पोर्टेंट।
6: सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी सामग्री का पूरा तंत्र विकसित करने में काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए भारत में हमें इस दिशा में विशेष प्रयास करने होंगे। इसमें सामग्री की पहचान और समझ से लेकर उसे संभालने, बनाने, प्रसंस्करण, भंडारण और चिप सहित अन्य विनिर्माण प्रक्रियाओं में इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित करना शामिल है। हमारा लक्ष्य ऐसा तंत्र तैयार करना है जो भारत के लिए भी उपयोगी हो और पूरी दुनिया के लिए भी।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। पिछले 5 वर्षों में भारत का सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 61% से घटकर 55% रह गया है। उन्होंने कहा कि देश का लक्ष्य वित्तीय, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में मजबूती लाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हो गई है। अगस्त में ये 9.92% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार खनिज तेल, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला और धातुओं की कीमतों में वृद्धि से थोक मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है। रसायन, कपड़ा, रबड़, प्लास्टिक और बिजली के उपकरणों की कीमतों में बढ़ोतरी का भी इसमें योगदान रहा। दिल्ली की विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन से पहले कल हरियाणा के करनाल स्थित केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें कृषि प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रणालियों और पोषण के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों पर मीडिया से संवाद होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर विजयवाड़ा जाएंगी। वे आज शाम विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति कल विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का उद्घाटन करेंगी। मेले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों की 1,500 से अधिक महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। देश में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर ये कमी 12% रही। एक बयान में सरकार ने कहा है कि टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भारत में टीबी के मामलों में लगातार हो रही कमी यह दर्शाती है कि निरंतर प्रयासों, सामुदायिक भागीदारी और मजबूत जन स्वास्थ्य योजनाओं से सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है, 20 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से बचाव की दवा दी गई है, जबकि 5,70,000 नए निक्षय मित्र इस अभियान से जुड़ चुके हैं। देश भर के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और ज्यादातर निजी स्वास्थ्य केंद्रों में टीबी की जाँच और इलाज मुफ्त में कराया जाता है। वहीं टीबी के भारत की लड़ाई में लोगों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जोश पहल की शुरुआत की है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि देश के विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग इसी संकल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मार्च 2024 को इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था।
8: अरुणाचल प्रदेश में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला सुरंग पूर्वी हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में इंजीनियरिंग कौशल की एक बड़ी मिसाल है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस परियोजना में दो सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1,003 मीटर और 1,595 मीटर है। इस सुरंग का उद्देश्य असम के तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच हर मौसम में बेहतर संपर्क सुनिश्चित करना है। इससे भारी बर्फबारी और खराब मौसम के दौरान भी आवाजाही आसान होगी। सामरिक दृष्टि से ये सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। इससे ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रे की चुनौतियों से निपटने और सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के जवानों, सैन्य उपकरणों तथा आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही सुगम बनाने में मदद मिलेगी। इससे सेना की परिचालन तैयारियां भी मजबूत होगी। सुरंग से स्थानीय लोगों को भी लाभ होगा। बेहतर सड़क संपर्क से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजारों और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी। साथ ही पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सेला सुरंग दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले दो दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। ये अभ्यास इस महीने की 2 से 12 तारीख तक आयोजित किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने समुद्री सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, विश्व एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसमें कई देश वैश्विक मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत की थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति इस वर्ष सितंबर में बढ़कर 11.39% हुई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 क्रिकेट मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। स्वर लता मंगेशकर और साथियों के थे। फिल्म का नाम था गंगा की लहरें। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जब जब फूल खिले से चुना है। शब्द आनंद बख्शी की, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

0: साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: रवि के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, स्वर लता मंगेशकर का, और ये फिल्म है खानदान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म अदालत का गीत सुनिए, गायिका लता मंगेशकर, शब्दकार हैं राजेंद्र कृष्ण और धुन मदन मोहन की।

0: लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: बैठी बदजवा दो कन्या,
1: उड़ बैठी बदजवा दो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बदजवा दो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: बनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी बनवड़िया दो
0: कन्या, उड़ बैठी बनवड़िया दो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे।

अभी आपने मन्ना डे और साथियों को सुना। फिल्म का नाम था तीसरी कसम। गीत को शैलेंद्र ने लिखा था और तर्ज शंकर जयकिशन की थी।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम था पूरब और पश्चिम। गीत को इंदिवर ने लिखा था और धुन कल्याण जी आनंद जी की थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली तुम्हें और हमारे सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।

0: मैं समझ गई आपका हिंदी नमस्कार होगा। और भी नवरात्रि का त्योहार
1: बिल्कुल
0: बड़ी शोर शोर से पूरे देश में मना रहे हैं और बहुत सारी महिलाएं जो है व्रत भी करती हैं,
1: बहुत तो, सारे भाई भी करते हैं, बहुत और बच्चे भी करते हैं, युवा को भी बहुत देखा है करते हैं। और ऐसे में अपने सेहत का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। कुछ लोग जो है बिल्कुल भी यानी सिर्फ पानी पर रहते हैं या फिर बहुत ही कम खाते हैं, या कुछ लोग जो है बहुत सारे करिष्ट चीजों का सेवन करते हैं, तो हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं इन दिनों में, उपवास के, और फलहार बनाया जाता है
0: जी।
1: कई सारी जगह पे कई लोग अलग अलग रेसिपी शेयर भी करते हैं अपने, और ऐसी इसी तारतम्य में हमने सोचा चलिए शकरकंद के आपको अलग अलग व्यंजन बताया जाए।
0: शकरकंद जो है बहुत हेल्दी होता है, बहुत पौष्टिक होता है, उपवास में खाया जाता है। तो शकरकंद के जो व्यंजन है वो आज हमारे बहुत सारे सखियों ने, हमारे श्रोताओं ने ऑलरेडी लिख भेजे हैं, वे भी हम शामिल करेंगे। और भी अगर आप कुछ अलग शकरकंद के व्यंजन बनाते हैं तो वो जरूर हमसे शेयर कीजिएगा।
1: बिल्कुल। अच्छा, नवरात्र के दिन हो और तरह तरह के परिधान हम पहनते हैं, साड़ियों का तो देखो सदा बाहर मौसम रहता है, जब पहनिए तब अच्छा लगता है
0: जी।
1: तो अलग अलग हम प्रदेशों की साड़ियों को उसकी जानकारी हम बताना चाहते हैं आपको। तो आज तेलंगाना की पोचमपल्ली इक्कत साड़ी जो है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। बहुत सारे संदेश भी आए हैं और ऐसा लग रहा है हमारी सहेलियों को ये वाली साड़ी बहुत पसंद है,
0: और हम पूछ भी लेते हैं ना अपनी सहेलियों से कि उनके पास में ये साड़ी है कि नहीं। और बहुत सारे हमारे श्रोता भाइयों से भी पूछते हैं कि आपने अपनी पत्नी जी के लिए पोचमपल्ली साड़ी दिलवाई है, उन्हें गिफ्ट दी है या नहीं।
1: और अगर ना दी होगी ना तो आज की जितनी जानकारियां हैं वो सुनने के बाद जरूर दिलवाइएगा।
0: साथ ही आज जो है एक खास दिन है, विश्व मानक दिवस है
1: जी,
0: उस विषय पर भी हम बात करेंगे। और एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है दीपा, कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा।
1: बिल्कुल, जो आज का युवा है 26 के बाद घरों में आमतौर पे भारतीय घरों में ये होने लगता है कि भाई शादी करनी है, हम तुम्हारे लिए लड़का देखें या लड़की देखें, इस तरह की बातचीत शुरू हो जाती है। वहां फिर देखिए हमारे बच्चों को लगता है अभी नहीं करनी, अभी हम सेटल नहीं हुए हैं, अभी तो ये वक्त ही नहीं है, अभी हमारी नौकरी प्रॉपर नहीं है, इस तरह की सारी बातें शुरू हो जाती। कोई स्टार्टअप लेके बैठा है तो कहता है अरे भाई स्टार्टअप लेके हम बैठे हैं, कहां हम ये शादी और इन सब की झमेलों में हमें मत डालिए मम्मी पापा, इस तरह के घर में बातचीत शुरू हो जाती, कहीं कहीं तो बहस भी हो जाती है।
0: और पहले ये बातें जो हुआ करती थी ना दीपा, ये सिर्फ लड़के करते थे, पर आजकल लड़कियां भी इस तरह की बातें करने लगी
1: जी।
0: सही बात है, उन्होंने भी बड़ी मेहनत से अपने करियर को सजाया सवारा है, पर हर चीज का एक वक्त होता है। शादी अगर बहुत एक वक्त होने के बाद में अगर शादी हो तो बहुत सारी आगे जाके दिक्कतें आ सकती हैं।
1: बिल्कुल, तो हम इस बातों पे विचार विमर्श तो करेंगे ही, और चाहते हैं कि आप सब भी, आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत आपके अनुभव में घर में
0: जी,
1: तो आप जरूर शेयर कीजिए।
0: और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखे हैं, पर वे जैसे बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया के जो मैसेजेस हैं वो कॉपी पेस्ट किए हुए हैं, तो अपने विचार लिखिए कि इस बारे में आपके विचार क्या है।
1: घर में कोई ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है, या कुछ चल रही है इन दिनों, या आप अपने बच्चे को या पोता पोती को किसी को समझा रहे हैं और वो ना मान रहे हैं, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो जरूर बताइएगा।
0: और एक खास और एक और सेगमेंट है, ये है कि शब्द हमारा विचार आपके
1: जी,
0: इसके अंतर्गत आज का शब्द चुना है प्रार्थना, जिसको तो सुनते ही सुकून हमें महसूस होता है।
1: तो चलो शब्द बात की है प्रार्थना की, तो एक प्रार्थना ही सुने
0: जी, सुनते हैं।

0: तो दीपा, अंबे माँ को हम यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी के जीवन में खुशहाली हो और बस आनंद के साथ हम जिंदगी गुजारें।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, भक्तिपूर्ण माहौल हो गया है, प्रार्थना भी हमने कर ली है और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं, और जिंदगी भर करते ही रहना चाहिए। हम जिस चीज को मानते हैं, जिस भी बात पे आस्था है, उसे हमें बनाए रखना चाहिए। और देखिए, बहुत सारे हम विशेष दिनों की बातें करते हैं, तो आज है विश्व मानक दिवस, जो हर साल आज ही के दिन यानी 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के महत्व को समझाने के लिए और उन विशेषज्ञों को उन्हें योगदान, उनके योगदान का सम्मान उन्हें हो सके, उनको समर्पित किया जाता है ये दिन। तो जो वस्तुएं होती है ना, सेवाओं और तकनीकी प्रणालियों के लिए एक मानक तैयार करते हैं। मानक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रतिदिन अनेक ऐसी वस्तुओं का उपयोग भी करते हैं सोनाली, जिनकी गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मानकों की अहम भूमिका होती है।
0: ये बात आपने बहुत सही कही दीपा। और चाहे मोबाइल फोन हो, बिजली के उपकरण हो, खाद्य पदार्थ हो या दवाइयां हो, हर क्षेत्र में मानकों का विशेष महत्व है। और विश्व मानक दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। 14 अक्टूबर 1946 को लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आगे चलकर इसी प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO की स्थापना हुई।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1970 में ISO के तत्कालीन अध्यक्ष जो थे उस वक्त फेरुक सुंटर, इन्होंने 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाने की पहल की। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मानकों के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
0: और इस वर्ष की जो थीम है ना दीपा, 2026 की, वो है बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण, सतत विकास लक्ष्य पर विशेष ध्यान, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इस वर्ष का संदेश है
1: बिल्कुल,
0: प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित, भरोसेमंद, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में अंतर्राष्ट्रीय मानक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मानक क्या होते हैं? मानक यानी किसी वस्तु, सेवा या प्रक्रिया की गुणवत्ता, सुरक्षा, आकार, माप और कार्यक्षमता के लिए निर्धारित नियम या दिशा निर्देश है। अब उदाहरण के लिए, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा, बिजली के उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के नियम और मोबाइल और इंटरनेट उपकरणों के बीच तालमेल, वजन और माप में एकरूपता, जैसे 1 किलोग्राम और 1 मीटर का समान माप।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से इमारत और जो पुल होती है उनकी सुरक्षा से संबंधित भी नियम होते हैं। तो इन मानकों से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता

0: मान्यता मिलती है। तो आईएसओ जो है वो अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। ये संगठन अलग अलग उद्योग या सेवाएं या प्रक्रियाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित करता है। और इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग यानी IEC ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के मानकों पर काम करता है। और इसी तरह से फिर एक और है ITU अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का, इसका फुल फॉर्म है। ये दूर संचार और संचार नेटवर्क और डिजिटल तकनीक के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के विकास में योगदान देता है। अब ये तीनों जो संस्था हैं मिलकर विश्व मानक दिवस के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: और भारत में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS राष्ट्रीय मानक तैयार करने और उत्पादों की गुणवत्ता और अनुरूपता से संबंधित कार्य करने वाली प्रमुख संस्था है। हमारे दैनिक जीवन में मानकों के महत्व को इन उदाहरणों से समझ सकते हैं, जैसे सोने के आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क देखना, निर्धारित गुणवत्ता वाले बिजली के उपकरण चुनना, उत्पादों पर ISI चिन्ह और अन्य लागू प्रमाणन चिन्हों की जांच करना, वस्तुओं की पैकिंग पर दी गई जानकारी और गुणवत्ता संबंधी विवरण पढ़ना। हर उत्पाद पर एक चिन्ह लागू नहीं होता, हर उत्पाद पर हर चिन्ह लागू नहीं होता है, हर उत्पाद पर एक ही चिन्ह लागू नहीं, इसलिए खरीदारी करते समय संबंधित उत्पाद के लिए लागू मानक और प्रमाणन देखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो हमें लगता है अब सखियां हमारी सच में इस बात, इस जो जानकारी है इससे और सचेत हो जाएंगी और हमेशा मानक की महत्व
1: चिन्ह देखकर ही
0: खरीदारी करेंगे।
1: अब जैसे कोई सोने के गहने खरीदते हैं तो उसमें भी मानक हमें देखना है, चिन्ह देखना है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, कोई भी चीजें हैं तो उसे उसका चिन्ह देखकर ही हमें खरीदारी करना चाहिए।
0: फिलहाल अभी क्या करना चाहिए,
1: गीत सुनना चाहिए?
0: चलिए।

0: सपनों का रंग देखो कभी कभी परिधानों पे भी आ जाता है
1: और कभी कभी डरा भी देता है।
0: कैसे?
1: जैसे हमेशा एक ही सपना आता है कि हम परीक्षा में लिखने बैठे हैं और हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है, हमें कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है, या फिर हम दौड़े जा रहे हैं और रेगिस्तान में हमारे पैर ही उठ रहे हैं।
0: ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी कोई साड़ी खरीदने की इच्छा होती है ना, तो आप देखिएगा कितनी सारी हमारी सखियां इस बात से सहमत भी होंगी, वो सपने में आने लग जाती है।
1: हाँ, आपकी आती है?
0: आती है। हाँ? बिल्कुल, सच में ऐसी इच्छा है कि कभी हम जाएं ऐसी बर्फीली पहाड़ियों पे, हम भी कोई ऐसे शिफॉन की साड़ी लहरा करके एक बढ़िया सा कुछ वीडियो बनवाएं,
1: यानी जैसे फिल्मों की हीरोइने।
0: हाँ, जैसे फिल्मों की हीरोइने करती है, हीरोइंस करती है भाई। अभिनेत्री हर महिला अपने जीवन की अभिनेत्री तो होती है ना, और साड़ी उनका वही खूबसूरत परिधान है। और ये सिर्फ परिधान नहीं है, हमारे देश की कला संस्कृति और परंपराओं को अपने आंचल में समेटे हुए एक खूबसूरत विरासत है। देश के अलग अलग हिस्सों की साड़ियों की अपनी अलग पहचान होती है ना सोनाली।
1: बिल्कुल,
0: इन्हीं में से एक जो हम आज बात कर रहे हैं ना, पोचमपल्ली इक्कत, जिसे अपने जिसमें उसमें बड़े अट्रैक्टिव ये होते हैं
1: डिजाइन,
0: ज्योमेट्रिक डिजाइन होते हैं, हिंदी में अपन ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं, और उसकी अनोखी बुनाई होती है जो कि दुनिया भर में जानी जाती है।
1: और पोचमपल्ली तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ पीढ़ियों से बुनकर परिवार इक्कत की कला को संजोते आए हैं और पोचमपल्ली इक्कत को भारत की पारंपरिक हाथकरघा कलाओं में विशेष स्थान प्राप्त है। इसे जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ
0: जीआई
1: टैग, यानी हमने मानक की जो बात की,
0: हाँ, मानक की बात की,
1: तो इसे भी जीआई टैग मिला हुआ
0: जी,
1: है।
0: जी, अब इस साड़ी में ऐसा क्या खास है? तो असल में इक्कत की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रंगाई और बुनाई की तकनीक है। सामान्य साड़ी में अक्सर कपड़ा बुनने के बाद उस पर डिजाइन बनाया जाता है, लेकिन इक्कत में धागों को बुनने से पहले एक खास तरीके से बांधकर उनमें रंग भरा जाता है, यानी डिजाइन कपड़े पर बाद में नहीं बल्कि जब बुनाई होती है ना तो धागे में पहले से ही तैयार किया जाता है।
1: और इस प्रक्रिया को समझना भी बहुत दिलचस्प है। ताने या बाने के धागों के जिन हिस्सों को किसी खास रंग से बचाना होता है उसे कसकर बांध दिया जाता है, फिर धागों को रंगा जाता है। बांधे गए हिस्सों पर रंग नहीं चढ़ता, इसके बाद अलग अलग हिस्सों को खोलकर दूसरे रंगों में रंगा जाता है और अंत में इन्हीं रंगे हुए धागों को करघे पर बुनकर मनमोहक पैटर्न तैयार किया जाता है। इसी वजह से इक्कत के डिजाइनों में हल्का सा धुंधलापन या धागों के मिलने का प्रभाव दिखाई देता है, जो इसकी खूबसूरती और पहचान दोनों है।
0: बिल्कुल, अब हमारी जिन सखियों ने ये साड़ी खरीदी होगी या जिन्हें पसंद है, तो वो जानती है कि इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, जैसे हीरे वाला जो पैटर्न है ना, हीरे का आकार या चौकर डायमंड शेप या चौकर पैटर्न होंगे, धारियां मिलेंगी या फिर पारंपरिक मोटिफ दिखाई देते हैं। कलर की बात करें तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, काला, ऐसे सारे चटक रंग इस्तेमाल होते हैं इनमें। और आज के समय में बुनकर पारंपरिक रंगों के साथ कुछ पेस्टल और आधुनिक रंग, ये उसका भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो तैयार करते हैं, वैसी साड़ियां भी पसंद की जा रही हैं।
1: और पोचमपल्ली इक्कत की परंपरा का इतिहास कई पीढ़ियों पुराना है। यहाँ के बुनकरों ने इस कला को अपने परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया है। कभी ये कला मुख्य रूप से स्थानीय और पारंपरिक जरूरतों से जुड़ी थी, लेकिन समय के साथ पोचमपल्ली इक्कत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। आज साड़ी

0: इक्का से दुपट्टे, कुर्ते, स्टोल, शर्ट और घर की सजावट से जुड़ी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं।
1: अब भाई बात होगी कि चलिए आपकी इतनी सारी जानकारी से अब हमारी तो इच्छा जागृत हो गई कि हमें साड़ी
0: और
1: खरीदनी है।
0: इसमें शर्ट का जिक्र किया है तो हमारे पुरुष जो भाई हैं श्रोता
1: वो
0: भाई,
1: भी खरीद
0: वो भी
1: सकते
0: खरीद
1: हैं।
0: सकते हैं इक्कत का शर्ट।
1: अब वो जानेंगे भाई मैं शर्ट लूं उससे पहले मुझे घर में जो महिलाएं उनको दिलाना पड़ेगा, तो कीमत क्या है इन साड़ियों की? तो कीमत जो है उसके कपड़े, धागे, डिजाइन, बुनाई की जो जटिलता है या हस्तकरघा का काम या पावरलूम पर बन रही है उस पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अब अगर आप मिक्स्ड फैब्रिक का, मिक्स्ड कपड़े का लेते हैं ना इक्कत की साड़ियां, तो 1500 से 2000 या 2500 तक की भी मिल सकती है शुरुआती उसके जो रेट हैं। और अब बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉटन की लेते हैं या सिल्क कॉटन साड़ियां तो लगभग 3000 से 7000 के बीच में ये मिल जाती हैं। और वहीं शुद्ध रेशम से की हाथ से बनी हुई जटिल डिजाइन वाली और एकदम प्रीमियम पोचमपल्ली इक्कत साड़ियों की कीमत अगर आप जानना चाहें तो 10000 से 25000 तक या उससे ऊपर भी हो सकती है। अब अगर उसमें जितने ये है कि कितना बारीक काम है उस पर निर्भर करता है इसका रेट, और हाँ फैब्रिक पर भी कि किस तरह का आपने कपड़ा चुना है।
0: जी, और इसलिए जब अगली बार आप किसी पोचमपल्ली इक्का साड़ी को देखें तो सिर्फ उसके रंग और डिजाइन पर नजर मत डालिएगा, उसके पीछे छिपी उस मेहनत को भी महसूस कीजिएगा जिसमें एक एक धागे को बांधा जाता है, रंगा जाता है, फिर करघे पर बड़ी कुशलता से बुना जाता है। यही तो भारतीय हथकरघे की खूबसूरती है। कपड़ा केवल बुना नहीं जाता, उसमें हमारी परंपराएं, कारीगरों की मेहनत और पीढ़ियों की कला भी बुनी जाती है।
1: सही बात है। और ये जो सपनीली दुनिया है इसको बुनने के लिए क्या सबसे खूबसूरत साधन है?
0: गीत।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: सोनाली, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हम नहीं सुनेंगे पोचमपल्ली की जानकारी क्योंकि बजट हमारा बिगड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखिए हर रेंज की साड़ियों के बारे में आपको बताया। आप अगर चाहिए तो मिक्स्ड फैब्रिक, जिसमें कि
3: कॉटन भी ले सकते हैं,
2: कॉटन में भी इकत की जो वीविंग वाली साड़ी आती है, और अगर आप वीविंग वाली भी नहीं लेना चाहें तो प्रिंट वाली भी आती है। तो आप एक बार अपने मर्जी से बिना उनसे पूछे, घर में बगैर पूछे लेके तो जाइए और ये तोहफा देके बताइए, और उसके बाद यहाँ आकर के बताइएगा इसी मंच पर कि वो उनका चेहरा खुशी से देखिए, खूबसूरती उनकी बढ़ी या नहीं।
3: बिल्कुल। और महिलाएं जो है ना दीपा, वो तो अपनी जो है ना परिवार की सलामती के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। तो घर की महिलाएं अगर खुश हो जाए, फिर भला ही वो साड़ी के माध्यम से हो या छोटे के तोहफे से माध्यम से हो, तो इतनी बड़ी बात होगी।
2: सच में छोटी छोटी बात है, और कोई साड़ी लेना भी जरूरी नहीं, आप छोटी सी चीज भी लेकर जाएंगे ना। बस यूं ही जाते हुए घर, दफ्तर से घर आते हुए अगर आप एक गुलाब का फूल भी लेके जाते हैं, वो फूल देख कर भी बहुत खुश हो जाती है कि अरे मुझे याद किया, क्या बात है।
3: या उनकी पसंद की कोई चीज है ना, भले ही वो छोटी सी चॉकलेट क्यों ना हो। और अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का,

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली। इतने सारे संदेश आए हैं ना कि वो ब्रेक खत्म होने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। हमारी एक सखी ने लिखा कि कुछ महीने पहले मेरे भतीजी की शादी के एक कार्यक्रम में मैंने पोचमपल्ली साड़ी खरीदी थी और अच्छा उनका अनुभव रहा, ऐसा वो कहती हैं। तो सच में अलग अलग हथकरघा या आप अलग अलग प्रदेशों की साड़ियां जब आप पहनते हैं अलग अलग हमारे अनुभव होते हैं। और सच में बहुत जो आपस में जो ये जो कहते हैं ना महिलाओं वाली बातें, उसमें साड़ियों का जिक्र तो निकलता ही है।
0: वैसे प्रार्थना की बात चली है तो हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे स्कूल में शुरुआत में सभी स्टूडेंट और टीचर प्रिंसिपल एक साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। वे प्रार्थनाएं आज भी याद है। कुछ खास बात प्रिंसिपल को कहनी होती तो उसी समय कहते थे। प्रार्थना का असर क्या होता था पता नहीं, पर मन बहुत शांत हो जाता था। मैं रोज सुबह नहाने के बाद 10 मिनट के लिए प्रार्थना के लिए बैठती हूँ। उस समय जो भी भगवान से जो कहना होता है वो कह लेती हूँ। आखिरकार उस परम पिता की कोई तो शक्ति है जो इतनी बड़ी दुनिया को चला रहा है। प्रार्थना से शांति तो मिलती ही है।
1: बहुत सही कहा, बिल्कुल सही। और इसी तरह से विचार हमारे एक श्रोता के कहते हैं।

0: चेतना तक पहुंचती है, जिसे हम ईश्वर, प्रकृति या ब्रह्मांड कहते हैं। जब हम कहते हैं शब्द हमारा विचार आपके, तो इसका अर्थ है कि यह शब्द केवल एक माध्यम है, लेकिन उनके पीछे की भावना, गहराई और चिंतन पूरी तरह से आपका अपना होना चाहिए। प्रार्थना हमारे जीवन में एक ऐसा सेतु है जो हमें अशांति से शांति की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और संदेश अगला कहता है कि पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तित्व आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
0: एक साथी कहते हैं, प्रार्थना हृदय का गीत है। चाहे आप शब्दों का प्रयोग करें या मौन रहकर केवल अपने मन के भावों को अर्पित करें, यदि उसमें सच्चाई और श्रद्धा है तो ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को भूलकर उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक होता है, के भीतर क्षमा, करुणा और प्रेम जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। प्रार्थना हमारे जीवन को सुंदर, अनुशासित और उद्देश्य पूर्ण बनाने का सबसे सरल माध्यम है। यह हमारे भीतर छिपी असीम शक्तियों को जगाने और ईश्वर के साथ एक अटूट व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने का जरिया है। शब्द चाहे कोई भी हो, यदि आपके विचार और भावनाएं शुद्ध है, तो आपकी हर प्रार्थना स्वीकार्य है। कितनी सुंदर बात, कितनी
1: बहुत
0: सुंदर विचार लिखे हैं।
1: बिल्कुल
0: हमारे
1: सभी सही कहा सुनाली। हमारे एक श्रोता ने कुछ फिल्मों में दिखाए गए प्रार्थनाओं बारे में जिक्र किया है, जैसे कि हे प्रभु आनंद दाता, ए मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें देना दाता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ये सारे फिल्मों में प्रार्थना के रूप में इन्हें जो गीतों को दिखाया है, आज भी हम बेहद पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति आभार, सम्मान और मार्गदर्शन व्यक्त करना, जो मन को शांति और एकाग्रता प्रदान करती है। आगे लिखते हैं कि स्कूल में पढ़ाई शुरू होने से ठीक पहले प्रार्थना करवाए जाते थे, पहले हमारे समय में, और एक स्वस्थ और अच्छी दिनचर्या मानी गई है सुबह की प्रार्थना। बच्चों के मन को शांत करती है और दिन भर की पढ़ाई के लिए उनका ध्यान केंद्रित रखती है। और आगे कहते हैं कि कतार में खड़े होकर साथ में प्रार्थना करने से बच्चों में अनुशासन, नियम और की पाबंदी की जो कि ये जो आदत है, ये विकसित होती है।
0: एक साथी कहते हैं, पूजा उपासना के जितने प्रकार हैं, उनमें सबसे अधिक सर्व सुलभ प्रकार है प्रार्थना। यह मनुष्य की नितांत व्यक्तिगत आनंद प्राप्ति का रास्ता है। प्रार्थना से मनुष्य झुकना सीखता है, नम्रता और विनम्रता सीखता है। जैसे व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही प्रार्थना से मन प्रसन्न रहता है।
1: एक और कहते हैं कि प्रार्थना शब्द सुनते ही वो स्कूल की सुबह की प्रार्थना याद आ जाती। छोटा सा ढोलक और एक खंजरी बजाकर तीन लड़कियां सामने बैठकर गाती थी और उनके पीछे सब गाते थे। हर दिन एक नई प्रार्थना गाई जाती थी, हमें बड़ा मजा आता था।
0: एक कहते हैं, प्रार्थना दुखी मन को न केवल शांति प्रदान करता है, अपितु हृदय में धैर्य भी भरता है, और इस दृष्टिकोण से प्रार्थना करते हुए जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
1: एक अगला संदेश कह रहा है कि प्रार्थना ईश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि जो मिला है उसका धन्यवाद करने के लिए भी होना चाहिए। किसी असहाय की मदद करना, भूखे को भोजन कराना, दुखी को सांत्वना देना जैसे काम भी प्रार्थना के ही रूप है।
0: एक साथी कहते हैं, हम सभी लगभग प्रार्थना करते ही है, परंतु अगर हम संसार के रचयिता से सच्चे मन से भगवान से जुड़कर प्रार्थना करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी प्रार्थना स्वीकार न हो। जरूरी होती है, ये मेरा खुद का अनुभव है। सुख और दुख दोनों में प्रार्थना कर जगत के पालनहारी से प्रार्थना करें। और अब
1: गीत सुनते हैं।

0: प्रार्थना से देखिए, सच में कहा ना, सभी हमारी जैसे सखियां बता रही थी कि मन में एक सुकून आ जाता है और शांति आ जाती है ना, और सबके लिए ऐसा लगता है एक शुभ कामनाएं निकलती हैं दिल से कि इसका भी अच्छा हो, इसका भी अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो, जो हमारे संबंधी हैं उन लोगों का सबका अच्छा हो, है ना।
1: और जो माताएं होती, जो मम्मियां होती है जिनके युवा शादी नहीं करते, तो वो भी प्रार्थना करती कि जल्दी से हमारे घर में बहू रानी आ जाए या फिर हमारे घर में दामाद आ जाए। हमेशा हाथ जोड़ के कहती कि भाई हमारे बच्चों को अब इस तरह की इच्छा जागृत हो कि वे जल्दी से शादी के लिए हाँ कह दे।
0: बिल्कुल। लेकिन आज के जो बदलते सामाजिक परिवेश है ना सोनाली, उसमें जो युवा है, यूथ जो है, उनकी सोच, जीवन शैली और उनकी जो प्रायोरिटीज यानी प्राथमिकताएं हैं वो बहुत बदल गई हैं आजकल। एक समय था जब विवाह को जीवन का एक स्वाभाविक हम पड़ाव मानते थे कि हाँ अब इस एज के बाद तो ये शादी होनी है, पढ़ाई पूरी करना, नौकरी पाना, विवाह करना और परिवार बसाना, ये जीवन का एक सामान्य रूपरेखा हुआ करती थी। लेकिन आज जो युवा है वो विवाह करने और उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं।
1: इसके पीछे अनेक कारण हैं दीपा, कि जैसे उन्हें ऐसे लगता है कि अगर हमने शादी कर ली तो फिर हमारे करियर में, खासकर महिलाओं को, युवतियों को ऐसा लगता है कि हमारे करियर में बाधा आ जाएगी, या फिर हमने इतना बड़ी मेहनत से हमने इतनी पढ़ाई की है, हमने अपने करियर को इतना अच्छा सजाया संवारा है, और अगर हम शादी के बाद में उसमें बाधा आ जाएगी, हम पीछे हो जाएंगे, हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ये वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा, तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं से भी कहेंगे कि आपके क्या विचार है, आपको ऐसा लगता है क्या पुराने जमाने में भी करियर भी हुआ करते थे, शादियां भी हुआ करती थी, तब हमारे मन में विचार नहीं आता था, पर आजकल के युवाओं के मन में विचार क्यों आने लगे?
0: आपकी क्या राय है आप जरूर बताइएगा। हम भी यहाँ पर से अपनी तरफ से इस बातों को, इस विचार विमर्श को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये समझना आवश्यक है कि विवाह का अर्थ स्वतंत्रता का अंत नहीं है। सबको लगता है कि अरे भाई शादी हो गई ना, सारी आजादी खत्म, बस एक शब्द बोला जाता है, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच समझदारी, सहयोग और आपसी सम्मान का ये रिश्ता है। और आज के युवा पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अच्छी नौकरी, आर्थिक स्थिरता, फिर अपना घर, सुरक्षित भविष्य, और ये सब उनकी प्राथमिकताएं हैं। वो चाहते हैं कि विवाह से पहले उनका करियर स्थापित हो जाए ताकि वे अपने जीवन साथी के साथ एक आर्थिक तनाव के बिना जीवन बिता सकें।
1: और जैसे दीपा मैंने भी कहा था कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों युवा ये बात को सोचने पे मजबूर हो गए, उसके पीछे एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि माता पिता के बीच लगातार होने वाले झगड़े भी बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े होकर वे भी इसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहेंगे। हालांकि हर विवाह का अनुभव एक जैसा नहीं होता है, स्वस्थ संवाद, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बनाती है।
0: बिल्कुल। और अपने आसपास शादियों का जो टूटना देखते हैं ना, पारिवारिक विवाद भी देखते हैं, घरेलू तनाव और रिश्तों में कड़वाहट देखने वाले युवाओं के मन में भी एक विवाह को लेकर ना थोड़ी एक डाउट डर आ जाती है, और डाउट सा बनने लग जाता है। वे सोचते हैं कि यदि विवाह के बाद जीवन में शांति के बजाय अगर ये तनाव इस तरह मिलना है तो ऐसा रिश्ता बनाने का क्या लाभ है।
1: अब देखिए, दोस्ती के बीच में भी जब हम दोस्ती बनाते हैं ना किसी से, तब भी हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है।
0: ये बात
1: कि
0: तो सही,
1: हमारे हाथों की पांचों उंगलियां एक समान
0: वो
1: नहीं
0: भी
1: होता,
0: एक समान
1: तो हर इंसान कैसे एक समान।
0: अरे भाई, घर में भाई बहन जो होते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे, वो भी तो सब अलग अलग तरह से होते हैं।
1: तो हमें एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात है कि लड़का हो या लड़की, वो एक दूसरे को सम्मान देना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कही। और देखो, एडजस्ट करने की जो यहाँ पे बात कर रहे हो ना सोनाली, हम आजकल अपने बच्चों को थोड़ा कम समझाते हैं कि थोड़ा सा आप संभल के चलिए, या थोड़ा सा आपस में एक कोई अगर एक या हम कोई एक दो में से कोई एक में अगर हमने ही पहले थोड़ा सा झुक गए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं हमारा क्या वो हमारा अहंकार है जो आड़े आ जाता है कि मैं क्यों झुकूं, मैं भी तो इतनी पढ़ी लिखी हूं या मैं इतना पढ़ा लिखा हूं तो मैं क्यों झुकूं। ये बात, ये अहम की भावना कहीं पहले आके दीवार बना देती
1: और रिश्ते टूट जाते हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। भाई, हमारे साथियों ने भी लिखी है कुछ बातें। हमारे एक साथी कहते हैं कि वैवाहिक जिम्मेदारी से बचते युवा बड़ा रोचक मुद्दा है। नई शादी होने के बाद युवक और युवती अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। युवक त्योहार उत्सव में जाना बड़ा आनंद लेते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ना, फिर काम पर जाना, अभी हम सेटल नहीं हुए, अभी हम पढ़ रहे हैं, इस जंजाल में युवा फंसे होते हैं। हमारी माँ तो कहती है प्रभु ही शादी कराएगा, असल में प्रभु ही इनकी शादी करवाएगा, ऐसी उन्हें चिंता लगी रहती है।
0: एक संदेश ये भी कह रहा है कि भाई जहां तक वैवाहिक जवाबदारी से बचने की बात है, जवाब कम है, दुनियादारी ज्यादा है। आजकल के युवा 21वीं सदी के हैं जो कह रहे हैं हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को झुका कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, वो मंजिल है नौकरी या कोई बिजनेस, फिर बाद में बाद में कहते हैं बाद में छोकरी, मतलब ये गुजराती में शायद उन्होंने लिखा है कि भाई वो कहते हैं कि सब सेटल हो जाए हम उसके बाद ही विवाह करना चाहेंगे। अच्छा, माता पिता के बीच भी लगातार होने वाले झगड़ों में भी बच्चों का मन, ये अगर घर में कुछ ऐसा माहौल है ना कि माता पिता के बीच में बहसबाजियां अगर बच्चों ने देख रखी है तो उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर वो बड़े होकर उसी प्रकार के वैवाहिक जीवन से बचना चाहते हैं। हालांकि अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर विवाह का अनुभव एक जैसा होता भी नहीं है, स्वस्थ संवाद होते हैं, आपसी सम्मान और समस्याओं को मिलकर सुलझाने की इच्छा रिश्ते को मजबूत बना सकती है। अब ये भी बात है सोनाली कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का साथ नहीं है ना, इसके साथ हम इमोशनल तरीके से भी जुड़ते हैं, फिर घर की व्यवस्था भी देखनी होती है, आर्थिक योजना क्या है, या परिवार के प्रति संवेदनशीलता और भविष्य से जुड़े निर्णय भी आ जाते हैं।
1: और अब क्या किया जाए,
0: एक गीत सुना जाए,
1: सुनते हैं गीत।

0: सोनाली, बच्चे कहते हैं आजकल कि हमें ये तो यकीन है कि अभी शादी हमें नहीं करना है। और एक संदेश ये कहता है कि विगत सालों से सोशल मीडिया और खबरों ने शादी विवाह के मामले में ऐसा दहशत फैला दिया है कि लड़के लड़कियां क्या माँ बाप भी बेहद सहम गए हैं। बच्चों की शादियों की बातों से वो भी डरने लगे हैं। लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, सभी की कहानी एक समान होती जा रही है। कई सालों तक साथ रहने के बाद भी वैवाहिक जीवन का जो सुनहरा रंग है वो बदलता जा रहा है। यहाँ पर दबाव की ही नहीं, यहाँ बातचीत करके किसके दिमाग में क्या बैठा हुआ है उसे बदला जाए या उसके लिए कुछ अच्छा किया जाए, तो अच्छे लोग और अच्छे विचारों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक दिन में ये तय नहीं होता है। बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ही लड़के लड़कियों के दिमाग में बैठाना होगा कि वैवाहिक सूत्र दाम्पत्य जीवन एक पवित्र रिश्ता होता है। इसमें दो परिवार बनते हैं, दो लोग मिलते हैं, परिवार बढ़ता है और कई तरह की जिम्मेदारियां भी बढ़ती है, तो ये जिम्मेदारियां तो बढ़ेगी ही।
1: एक हमारे साथी ने कहा है, आज के युवा वैवाहिक जीवन से ज्यादा करियर पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। वे मानते हैं कि शादी कर लेने से घर गृहस्थी संभालनी पड़ेगी और करियर खत्म हो जाएगा। अभी कुछ कमा कर पग भर हो जाए तभी शादी तो बाद में होगी। मेरे घर में भी मेरी बेटी 29 साल की हो गई पर शादी से मना कर रही है और नौकरी के साथ साथ एग्जाम भी दे रही है ताकि और बेहतर नौकरी कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मेहनत कर रही है, पर शादी की ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक उम्र के बाद में ना बहुत कुछ बदलाव आ जाते हैं। शारीरिक बदलाव आ जाते हैं, मानसिक बदलाव आ जाते हैं, फिर वो एक उम्र के बाद में ना जो महिला है या पुरुष यानी लड़के लड़के कोई भी एक दूसरे साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह की सोच की एक और संदेश है कि आज के युवा, उन्होंने लिखा है, दोनों महिला और पुरुष अपने करियर और वित्तीय स्थिरता को पहली प्राथमिकता देते हैं। वे शादी से पहले एक मजबूत बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं जिसके कारण विवाह में देरी होती है या युवा इससे बचते हैं।

0: और एक और संदेश कहता है कि आधुनिक युवा अपनी जीवन शैली, प्राइवेसी और आजादी से समझौता नहीं करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद पारिवारिक जिम्मेदारियां उनके व्यक्तिगत विकास और सपनों में बाधा बन सकती है। बढ़ते तलाक के मामले और रिश्तों में अस्थिरता, समाज में टूटते हुए परिवारों और कोर्ट कचहरी के मामलों को देखकर युवाओं के मन में विवाह जैसी संस्था के प्रति एक अदृश्य डर बैठ गया है। ये बात सही है कि कभी कभी अगर ये मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाता है तो जो बच्चे जिनकी शादी होने वाली होती है तो वो बहुत डर जाते हैं। और अगर घर में ही कुछ आपके घर में इस तरह का कोई आपने किस्सा देख लिया हो या आपके रिश्तेदारों में तो और डर बैठ जाता है कि अरे भाई हमें अभी शादी नहीं करनी, अभी हमें थोड़ा वक्त दीजिए।
1: अब ये जो आज का जो मुद्दा है ना, थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा, थोड़ा सा हमारा मन भी भारी हो गया बात करते करते, क्यों ना व्यंजन की ओर बढ़ा जाए।
0: हाँ बिल्कुल,
1: शकरकंद के व्यंजन। तो एक हमारे साथी ने लिखा है, शकरकंद को उबाल ले, स्टीम कर ले, ठंडा होने पर इन्हें मोटे मोटे टुकड़ों में काट ले, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, अदरक को मोटा दरदरा कूट ले, अगर फलाहार बनाना है तो इसमें सेंधा नमक और नींबू, कूटी मूंगफली के मसाले मिलकर चटपटा शकरकंदी तैयार है। और इसे मीठा भी बना सकते हैं ना, तो उसे मीठे को उबाल के उसको छोटे यानी मीठा भी खा सकते हैं। तो उबले शकरकंद को टुकड़ों में काट ले, थोड़ा सा घी में भून ले, कढ़ाई में गुड़ को पिघला ले, उसमें शकरकंद के टुकड़े डालकर उलट पलट कर सुखा ले, मीठे शकरकंदी तैयार है। आप इसे घी में भुनना नहीं चाहते तो ऐसे भी गुड़ में बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब एक गीत
0: सुन सकते हैं।

0: हम तो ये कहेंगे अपनी हमारे श्रोताओं से कि जिन परिवार में बच्चे नहीं सुन रहे उन्हें ये गीत सुनाइए जहाँ पे उन्हें बताइए कि एक छोटा सा बंगला बनाकर एक नई दुनिया बसाए जो बहुत खूबसूरत है।
1: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुनने वाले हैं उन्हें जिनकी फिल्म हनुमान अंश इन दिनों हमारे मन को छू रही है, खास तौर से इसके कुछ गीत जैसे कि ये।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
2: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
0: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। इस बातचीत की पहली कड़ी हमने पिछले सप्ताह सुनी थी और अब सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
3: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
3: विशाल जी सबसे पहले तो बधाई लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश। हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
4: धन्यवाद।
3: और अब आपकी दूसरी फिल्मों का जिक्र करते हैं विशाल जी। इसके पहले भी आपने फिल्में बनाई हैं, तो उन फिल्मों के बारे में बताइए। कहाँ से आपकी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव और लिखने का चुनाव कैसे आपके मन में आता है, क्या क्राइटेरिया होता है?
4: मुझे लगता है कि एक तो

0: मैंने पहले ये डायरेक्टोरियली मेरी पहली फिल्म है, इसके पहले मैंने फौजी टू मतलब फॉलोअप सीजन ऑफ फौजी फौजी वन जो शाहरुख खान जी का जो सीरियल था उसका एक फॉलोअप सीजन मैंने पिछले से पिछले वर्ष लिखा
1: द गर्ल ऑन द हाईवे।
0: द गर्ल ऑन हाईवे। वो हमारे अपना हम बहुत सारी आईपीज हमने क्रिएट किए उसमें, वो अपनी अपनी आईपी अपना कंटेंट है। द गर्ल ऑन हाईवे प्लस जो है ना हुड़दंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं, बहुत से मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, प्लस जो है ना कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था। तो
1: करेगी
0: मुझे लगता है कि मैं जो है ना बहुत समय से वायरल फिल्म्स तो बना रहा था जो कि शॉर्ट थी,
1: जी
0: 10 मिनट 12 मिनट की फिल्म्स होती थी वो, और एड्स भी थे मेरे बहुत वायरल हो जाते थे। तो वायरल शॉर्ट से वायरल सोशल मीडिया वायरल कंटेंट से थिएट्रिकली वायरल फिल्म बनाने का मुझे एक चस्का भी था कि
1: हाँ।
0: ऐसी फिल्म बनानी जो सब एक्सेप्ट करें,
1: जी
0: उसको सब देखें, जिसके बारे में कोई निगेटिव ना बोले। अब ये अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझ की आवश्यकता थी, जो मुझे बहुत समय से जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि कैसे मैं ऐसा कंटेंट लिखूं जिसको सब प्यार करें, जिसमें आप महिलाएं तो महिलाएं, बच्चे तो बच्चे, ग्रैंड सन ग्रैंड फादर, मौसा फूफा, जो भी आप पॉसिबल है, दोस्त मित्र, आपको हर व्यक्ति के लिए हर रोल के लिए आपको एक कुछ मिल जाए फिल्म के अंदर और आप उस फिल्म को सराहें। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो
1: जी
0: कि हो कैसे गई मुझे पता नहीं है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी कितना भी अच्छा आप कर लो लेकिन आपको निगेटिव करने वाले कोई ना कोई मिल जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: आप समझिए, सोचिए, आपके 9.7 की रेटिंग है, ऑलमोस्ट 10 ही हो गया ऑन बुक माई शो, 1.5 लाख से ऊपर रिव्यूज हैं उस पर, आप निगेटिव ढूंढते रह जाएंगे आपको मिलेगा ही नहीं।
1: बिल्कुल
0: इंटरनेट सोशल मीडिया पे आप ढूंढते रह जाएंगे आपको निगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा निगेटिव।
1: बिल्कुल नहीं,
0: तो ये कैसे हो गया, ये अपने आप में एक चमत्कार है, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगता था कि लोग लेंगे साइड, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, चूंकि फिल्म में कोई विलन नहीं है, चूंकि फिल्म में किसी को भी एंटागनाइज नहीं किया, चूंकि फिल्म में ऐसा कोई मुद्दा समाज का नहीं है जो मैंने जिसको मैंने केटर नहीं किया, अगर वो पति
1: किसी
0: पत्नी के
1: पर
0: बीच में
1: आक्षेप नहीं है।
0: वो
1: बिल्कुल
0: है तो सबको एड्रेस किया है समाज समस्याओं को। तो मैं इस फिल्म को बोलता हूं, जब मैं फिल्म को पोजिशन कर रहा था तो मैं बोलता हूं इसको कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू द सोसाइटल प्रॉब्लम्स, ये मेरे लिए वो फिल्म है। मैं एज अ फिल्म मेकर क्या बोलूं, एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूं, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूं समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूं, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूं, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूं कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं,
1: मानवीयता है उसमें,
0: मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूं,
1: संवेदना
0: संवेदना को डिस्कस कर रहा हूं, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूं, कुंडलिनियों को डिस्कस कर रहा हूं। तो ये मैं एज अ डॉक्टर, एज अ स्पिरिचुअल पर्सन और somebody who's a filmmaker और वो समाज को कुछ तो दे है ना भाई, आप फिल्म बना के दे क्या रहे हो एंटरटेनमेंट के साथ में, बट किसी भी समय पे फिल्म में से एंटरटेनमेंट जाना नहीं चाहिए कि आपको फिल्म जो है ना टिटलेट करती रहे, आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो है ना वो एक बांध के रखे और आपको मजा भी आता रहे।
1: तो यहाँ एक गाना सुनते हैं
0: जी,
1: बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: मुझे लगता है कि मेरी जोरा जबी वो सुनवाइए,
1: सुनते हैं यही गाना।

0: गाने के बाद वापस की फिल्म पर आते हैं विशाल जी, एक आध्यात्मिक कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है, ये तो आपने इसमें हनुमान अंश में तथ्य समय और कहानी को कैसे तीनों में संतुलन बनाया आपने?
1: तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तथ्यात्मक रूप से मैंने रेफरेंसिंग करी अच्छे से, प्रॉपर रेफरेंसिंग करी, तो उसमें बहुत गलत ना चला जाऊं, सिनेमेटिक लिबर्टी तो लेते ही हम सब, लेकिन कहीं गलत ना चला जाऊं, गलत का मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए, उनकी उनके परिवार वाले इन्फेंड ना हो जाए, उनके फॉलोअर्स इन्फेंड ना हो जाए, या एक आप सनातन को मानने वाले हैं, आप अगर हिंदू धर्म में के बिलीवर हैं, आपकी भक्ति पे कोई किसी तरह का आपको ना बुरा लग जाए, तो संवेदनशीलता जब हम, मुझे मेरा कहना मानना ऐसा है कि संवेदनशील आप जब होते हो, आप जिस सब्जेक्ट पे भी काम कर रहे हो, तो आप एक अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सेंस रहता है कि आप कहीं गलत ना कर दो, तो तथ्यात्मक रूप से मैंने कोई उसको जो है ना बैलेंस करके रखा। कालखंड को मैनेज करना, क्योंकि पीरियड फिल्म्स जनरली बहुत टफ मानी जाती हैं और माना जाता है कि आप उस कालखंड को करोगे क्रिएट करोगे तो बहुत महंगा होगा, जबकि मैंने उसको उल्टा सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला कि 4 कलर्स के कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, 5वां नहीं होगा,
0: जी जी जी,
1: और थान खरीदो और उनको कलर करो, तो पगड़ियां बनेंगी या धोती बनेगी या कुछ भी बनेगा, वो सेम कलर, 4 कलर के अंदर 5वां कलर नहीं होगा कॉस्ट्यूम्स में। सिमिलरली ऑन द वॉल्स, जो भी वॉल्स हैं, एक तो मैं सेलेक्ट ही ऐसी जगह करूंगा जहां पे किसी तरह की मॉडर्निटी ना हो, तो उसको बचना वहां से, लेकिन जो हमें पेंट करना है, पेंट करने के लिए भी लगभग 4 कलर है, उनका पैलेट है एज एन वॉल का, जिसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं, और कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको बोलते हैं, तो कॉस्ट्यूम के कलर्स में और इसके कलर्स में इनको 4-4 कर दिया, प्लस मैंने पूरी फिल्म को 9 भाग में बांट दिया,
0: अच्छा,
1: लगभग 9 चैप्टर्स थे, उनको बांट दिया, और ये करने से हुआ ये कि हम कहीं ना कहीं वो जिन गलियों में घूम रहे थे, जिन वॉल्स को हम देख रहे थे, जिसको जो हमें कलर्स पता था, सबको क्लैरिटी थी कि यार ये कलर नहीं हो सकता, कोई कलर हो ही नहीं सकता मॉडर्न है, तो पेंट करो, रीपेंट करो उसको, मतलब जो आपको वापस करोगे तो रीपेंट कर दो, इफ दे आर ओके विद द सेम पेंट इट्स ओके। तो ऐसे करते करते करते मिट्टी के बने हुए मकान, पुरानी जो वॉल्स, पुराने कोतवाली, पुरानी जगह, उन सबको हमने टारगेट किया, फोकस किया, और मिलते भी गए हमको, तो ढूंढते ढूंढते हमको मिलते भी गए, तो ऐसे करके मैंने पीरियड अप्रोप्रिएट किया। तीसरा सवाल था आपका
0: कि कालखंड और इसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना
1: कैसे, बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हूँ बहुत समय से, पिछले 20 साल से, मैं उसका श्रेय पूरी तरह मैं अपनी माताजी को देता हूँ, मुझे कंसिस्टेंटली जो है ना वो पुश करती रहती हैं और कुछ कुछ बताती रहती हैं कि ये सुन लो, ये हो गया, वो हो गया, ये किताब पढ़ लेना, भले मैं पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ उनकी बात को मना नहीं करता, मैं कहता हाँ मैं कर लेता हूँ, और कई बार वो बोरिंग भी होता है जो बोलती हैं, कह रही नहीं ये सुन लो वो सुन लो, अब मैंने जिस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गए मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं नई नई चीज़ों में जंप नहीं करता, उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 से मैं जो फॉलो करते आया बिकॉज ऑफ मदर, आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर प्रिंसिपल्स, कि किसी का कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, अगर सिद्धियां आई तो कुंडली जागरण हुआ होगा, कुंडली जागरण के बिना तो सिद्धियां नहीं आएंगी, तो सिद्धियां कहां से आई होंगी, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको यू हैव टू डीप डाइव, यू हैव टू फिगर आउट कि हुआ क्या होगा। तो नाथ संप्रदाय के जो साधु मिलते हैं, जहां पर सांसा हाले हंसा चाले सॉन्ग है, जहां पे वो इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपके भीतर जो है ना, भीतर बड़ा उजाला भासे एक मणिधर आगे, दीज लाइन्स जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल, कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं, जिसको मणि बोलते हैं, कि कुंडलिनी का जो मणि है, तो भीतर बड़ा, और जो अंधेरे में जो ताला खोले, वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले, अंधेरा ही है ना, आप जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है, तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी, वो मुझे मेरी अपनी माताजी के वजह से बहुत मिली, प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट, ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ, मैं एक वंदे भारत ट्रेन में बैठा था, 6 घंटे का समय था, मेरे पे आईपैड पे वो बुक थी, मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया, उसके 58वें पेज पे मुझे सासा हाले हंसा चाले मिल गया, जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से, और वो इतनी

0: सिंप्लीफाइड और उतनी गूढ़ और सिंप्लीफाइड येट सिंप्लीफाइड. सो आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंप्लीफाइड. यू विल लव टू हियर देम इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड. गूढ़ इंफॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिले, पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल. इफ यू विश टू गो इन टू, आप डीप डाइव करोगे, अगर आप मैंने तेरी भरोसे अनुमान आप डीप डाइव करोगे तो आपको उसके अंदर वो मिलेगा जो आप शायद जिंदगी में ना खोज पाओ.
1: बिल्कुल.
0: उतनी क्लैरिटी ना मिले. तो मेरा ये जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, दैट आई प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. कि अगर आप उसमें डीप डाइव करना चाहते हो तो आप कर लो फिर.
1: बिल्कुल.
0: आपके पास में ये रास्ता है, सुगम रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए. मैंने समझाया, मैंने आपको समझा दिया. हो सकता है कि मैंने 5% ही समझाओ, लेकिन एटलीस्ट 5% 4% तो समझेंगे आप. फिर आपकी जर्नी आप देखेंगे आप कैसे कहाँ जाना है.
1: तो यहाँ पर ये आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है
0: जी.
1: और माँ पिता से हम बहुत कुछ सीखते हैं, कभी डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो ऐसी कोई शरारत वाली घटना भी बताइए. अच्छी अच्छी बातें तो बताए कि डांट पड़ी हो वो भी बताइए.
0: बहुत, मैं अपने भाई की वजह से बहुत मार खाता था. मेरे भाई मुझे जो है ना ट्रैप करा देता था कुछ कुछ चीजों में. कभी बचपन में भाई ने मुझे बहुत जो है ना इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है
1: जी.
0: तो मार तो मैं खाता था. हाँ. लेकिन भाई की वजह से खाता था. और वो तो फिर माता जी के हाथ में जो आ जाए, फिर वो हाँ. पाइप होता था जिससे
1: बेलन
0: पाइप चिमचा, तो कर ये तो आप सब देखते हो. लेकिन जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना जिसमें हाँ. पानी भरते हैं
1: हाँ.
0: वो बड़ा खतरनाक होता था, वो चिपकता भी बहुत था वो. तो वो तो मैंने बड़े काफी उम्र तक खाया है वो.
1: अच्छा.
0: मुझे याद नहीं कौन से, मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया है.
1: तो लेकिन क्या बात होती थी, घटना क्या रहती थी?
0: शी विल जस्ट गेट फ्यूरियस एंड देन शी विल बीट एंड देन नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज यू ये तो जॉब है.
1: तो मतलब कौन सी गलती आप करते थे जिससे मारना पड़ती थी?
0: मैं एक्चुअली कोई सच वो नहीं थी. इंफॉर्मेशन कैसी पास होती है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी के आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं उसको आप यू वर्क इट आउट. एंड आई टेल यू वन ऑफ द सीन जहां पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को और महाराज जी को उतार देते हैं. आपको जो हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही नहीं उस सीन के अंदर. किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी एरोगेंट है, उन्होंने अपने गुस्से में आके उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया. मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम, सोचता हूं मैं इस बारे में. तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया. तो अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है
1: जी.
0: पूरे सीक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं बोलता क्योंकि डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे. वो चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे, अगर आप याद हो आपको वो जब रोने लगता है वो कहते हैं यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी साधु संत को नहीं उतारेंगे. तो ही लुक्स एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही नोज दैट ही इज ये मेरे लिए कर रहे हैं. तो मैं उनका साथी, मुझे भाई भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं और मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं. दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स. तो इंटरप्रिटेशन है. अगर आपने इंटरप्रिटेशन में ध्यान नहीं दिया होता मैंने तो शायद वो सीन इतना अच्छा वर्क नहीं करता. हो सकता है कोई भी ना मुझसे क्वेश्चन करता.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन फिर भी मैं उस बात पे गौर किया और उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए फिल्म का इंटरप्रिटेशन चेंज किया. दैट वर्क फॉर पीपल. किसी ने मुझे कल ही बोला कि द वे ही लुक्स एट महाराज जी एंड स्टार्ट्स क्राइंग वो मेरे लिए सीन में सबसे ज्यादा वर्क किया.
1: तो यहाँ माँ का ही जिक्र चल रहा है तो मुझे लगता है कि माँ के नाम एक गाना होना चाहिए. माँ पिता के नाम कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
0: माँ के नाम पे माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे.

0: बहुत सारी बातें माँ पिता के बारे में संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे थे, मैं एमबीबीएस कर रहे थे, बाकायदा एक डॉक्टर बन चुके थे, फिर अचानक फिल्मों की ओर झुकाव कैसे हुआ? मतलब वो बीज कैसे आया? आप इतनी बड़ी, मतलब एक आपको नौकरी मिल चुकी है और फिल्मों की ओर जाना कितना बड़ा रिस्क था, तो कैसे आपने चयन किया ये?
1: आई थिंक बहुत टफ था। मुझे लगता है कि मैं आ तो गया मुंबई, और आया क्यों मैंने बता दिया कि मैंने लखनऊ में ऐसा माहौल में चला गया मैं कि मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया, म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंट आर्ट फॉर्म में पोइट्रीज लिखने शुरू कर दी मैंने। तो वो कॉलेज में भी करता रहा, परस्यू करता रहा करता रहा, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेडिसिन पसंद आ गई। अब वो दोनों पसंद है, अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बना नहीं। कुछ सालों मैंने जो है ना यहाँ पे नौकरियां भी की मुंबई में, और उसके बाद में कुछ समय मैंने अपनी क्लिनिक भी चलाई, और बाय द एंड ऑफ इट मुझे समझ में ये आया कि एक समय ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि इट इज टू एग्जॉस्टिंग टू, ये दोनों अलग अलग दुनिया है। मैं इस दुनिया में जाता हूँ फिर इस दुनिया में आता हूँ। और मेडिसिन जो है ना, चूंकि आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन, मैं अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यानी साइलेंट भी नहीं करता था। पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो है ना जोखिम में हो और वो बोल रहे हो। लेकिन लोग कॉल ऐसे भी करते थे, सर 2 बजे के, सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, बोल रहे पेट में गैस बन गया। तो फिर मुझे एकदम समझ में आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पे चलते हुए मैंने अचानक से एक दिन क्लिनिक बंद कर दिया, और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से। तो ऐसा नहीं होने उनको छोड़ दिया जी। सागर में नैया डाल दी, मैं उनको मजदार में नहीं छोड़ा मैंने जी। तो खैर, विद देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 में मैंने अपनी क्लिनिक बंद की, और उसके बाद से मैंने उसी समय मैंने कैमरा खरीदा, और सेम समय मैंने म्यूजिक भी छोड़ा था, म्यूजिक और मेडिसिन दोनों छोड़ दी मैंने। मैंने एक फिल्म साइन की थी, और काफी बड़े प्रोड्यूसर थे उनके, आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया बाद में आगे जाके। तो उनकी एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैं कर रहा था, सारे गाने सिलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल तक उस पर काम चलता रहता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गाने शायद वो डायरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या वो डिसाइडेड कि मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हूं नहीं, मैं म्यूजिक कंपोजर शायद सिंगर सॉन्ग राइटर ज्यादा अच्छा हूं, मैं अपने लिए अच्छा गाने म्यूजिक बनाता हूं, गाने बनाता हूं, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए मैं शायद बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं इस बात को क्वेश्चन करने लगा। और अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट करना था, लिखना था और डायरेक्ट करना था, मेरा वो अल्टीमेट उद्देश्य था। तो मैंने कहा कि जब वो ही अल्टीमेट है तो मैं क्यों ना उस पर ही लगूं। 2011 से 26 तक, 15 साल तक, 14 साल तक, वो 25 तक मैं कहूंगा, वो यात्रा पूरी मेरी चर्निंग चली है, टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन, टू राइटिंग, ये वो सब कुछ जो भी है। तो पहली स्क्रिप्ट मैंने 6 साल में लिखी, 6 साल तक एक ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास में, दूसरी स्क्रिप्ट मेरे 1.5 साल में, अनदर स्क्रिप्ट फिर साल में, फिर हर 2 महीने पे एक स्क्रिप्ट लिखने लगा मैं। तो ऐसा मेरे पास कुछ 53 कॉन्सेप्ट 54 स्क्रिप्ट प्लस कॉन्सेप्ट हैं जिन पे मैं अलग अलग समय पे काम करता रहा हूं या करना चाहता हूं भविष्य में।
0: और ये स्क्रिप्ट 15 दिन में लिखी, तो अगली स्क्रिप्ट 10 दिन
1: नहीं ऐसा नहीं,
0: डिजिटल माध्यम से,
1: अगर डिजिटल माध्यम से निकल गए तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डाउनलोड है।
0: यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।

0: गाने के बाद विशाल जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि एमबीबीएस आपने बचपन के उस संसार के बारे में बताया जहां माँ की मार थी, डांट थी। जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस समय टीचर्स की, प्रोफेसर्स की डांट भी तो रही होगी, तो उनके बारे में भी बताइए, कोई दिलचस्प घटना बताइए
1: तो मेडिकल
0: उनके।
1: कॉलेज में जो है ना कुछ होता नहीं, इज्जत नहीं होती है जूनियर की, है ना। मतलब ऐसा होता है कि वो कॉलेज के अंदर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति होती है पहले साल में। और मुझे क्या था कि मुझे, अब वो नया नया कॉलेज में हूँ लेकिन जाना तो बम्बई है,
0: जी
1: तो मैं दोस्तों के साथ में, दो तीन दोस्त मिलके बम्बई चले गए। हमने 15 दिन का बंक मार दिया। अब उसमें मेरा दूसरा दोस्त था, वो भी एमबीबीएस ही कर रहा था, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, निरंजन पांडे। उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, और वो बहुत ही होमसिक भी था, ये सब चीजें थी। हम तीनों दो लोग और मेरा एक लखनऊ का दोस्त, हम सब लोग बम्बई आए कि वहाँ पर जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो हम पिच करेंगे, ये करेंगे, वो
0: अच्छा
1: करेंगे। करके 15-17 दिन मैंने वहाँ पे करके वापस गया अपने कॉलेज। तो वहाँ पे बंक मारना, अच्छा है, तो वहाँ पे मेरे बहुत, अभी तो बहुत दिल अजीज टीचर हैं वो, रामजी पवार उनका नाम है,
0: जी
1: डॉक्टर रामजी पवार, एनाटॉमी पढ़ाते थे वो। ऐसा टॉल, डार्क, हैंडसम, 6 फीट, और मतलब क्या पर्सनालिटी थी, मतलब हमारे कॉलेज के अमिताभ बच्चन थे वो, सब फैसिनेटेड रहते थे उनसे। लेकिन वो बहुत फ्यूर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे,
0: अच्छा
1: और वो पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे। तो मेरे थोड़े से बाल लंबे हो गए, थोड़े लंबे बालों, मुझे लंबे बाल करने का शौक भी था, बम्बई से आया लंबे बाल के साथ में, और गलती से मैं जो है ना आगे वाली सीट पर बैठ गया।
0: अच्छा
1: अब उन्होंने पहले से नोटिस कर रखा था कि ये लड़का गायब है, या बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला, किसी को सवाल किया कल, क्या एनाटॉमी का कुछ तो सवाल था, जिसका जवाब मैंने दे नहीं पाया, और वो पता नहीं वो आगे बैठने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने मेरा सर पकड़ा, ऐसा बाल पकड़ और बाल पकड़ के पूरा ऐसा, और कई बार उन्होंने 7 मिनट 10 मिनट का लेक्चर बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते किया। तो जो जो इंसल्ट थी, जो जिसके बोलते हैं, हाँ, जो अनबीरा की, और क्या ये क्या कर दिया मैंने, और ये आगे क्यों बैठना था। तो ये सारी चीजें जब हुई तो कहीं ना कहीं उसके बाद से मेरा एक इंटरेस्ट वापस पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, क्योंकि इंसल्ट हो गई है। अभी तक तो आप म्यूजिशियन हो, पोइट हो, एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू समाउ। मैं ऐसा था कि मैं जब पहुंचा था अपने कॉलेज, तो पहुंचने से पहले लोगों को पता था कि देयर इज दिस गाय जो कि इसका बैंड है लखनऊ में और बहुत अच्छा गाता है, ऑल ऑफ दैट। तो मैं ऐसा छोटे से स्टार की तरह एंट्री हुई थी कॉलेज में, और वो जो धुलाई हुई मेरी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले साल में फेल हो जाता मैं।
0: जी, यहाँ पर पढ़ाई और धुलाई दोनों की बात हो गई, बैंड का जिक्र किया आपने
1: जी।
0: लखनऊ में कौन
1: जी
0: सा बैंड था, म्यूजिक बैंड?
1: म्यूजिक बैंड था, अपने मेरे अपने कंपोज सॉन्ग्स थे। मेरे एक मित्र हैं शिखर श्रीवास्तव, अभी वो गल्फ में चले गए, वहाँ म्यूजिक टीचर हैं, और भी दो दोस्त थे ऐसे, तो हम मिलके जो है ना, वी हैड अ बैंड, तो वहाँ पे जाके लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे ओरिजिनल सॉन्ग्स के। सो वी वर इन अ वे लिटिल पॉपुलर ऑल्सो, बट देन मूव टू गोरखपुर। तो गोरखपुर में तो क्या ही होता है, मतलब कॉलेज कल्चरल साल में एक बार होते हैं, उन 3 दिन में अपन स्टार होते हैं, उसके बाद फिर वापस वही जो है, जैसे बोलते ना कि रेगुलर डेज ऑफ लाइफ। तो वो 5-6 साल मैंने बहुत म्यूजिक को मिस किया कि मैं सीख नहीं पा रहा था और ये सब कुछ था। लेकिन फिर आके मुंबई आके भी मैंने एक बार, इन बिटवीन 2017 एंड 2020, आई डिड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, शॉट देम वेल, ऑल ऑफ दैट। तो वो एक इंटरेस्ट जो था उसको मैंने पूरा कर लिया।
0: अगर याद है वो म्यूजिक बैंड का कुछ,
1: आई कैन सिंग अ सॉन्ग, या आई कैन सिंग कपल ऑफ लाइंस। एक हवा का हूं झोंका, उड़ता ही फिर रहा हूं, इस गली उस डगर को घूमता फिर रहा हूं, रास्ते ही जिंदगी, क्या है गम क्या है खुशी, कौन जाने यहां।
0: क्या बात है,
1: दिस वॉज वन सॉन्ग,
0: बहुत बढ़िया।
1: उसकी उसकी एक एक दो लाइनें बहुत सुंदर लाइनें, वो मैंने लद्दाख में पूरा फिल्माया था उसको।
0: यहाँ जिक्र कविता का भी चला ना,
1: जी।
0: और यादों के गलियारों में इस समय सैर कर रहे हैं
1: जी।
0: तो कोई कविता याद है वो जो उन दिनों में लिखी है, कोई खास कविता?
1: एक एक खास कविता है जो मैं अभी मैंने रिसेंटली, एक जयपुरिया स्कूल है लखनऊ में, वहाँ पे बच्चों के सामने भी पढ़ी मैंने, क्योंकि ये लगभग मेरी उस समय की कविता है। अभी मैं कविताएं लिखता हूँ पर मैं वो थोड़ी, मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड। जीवन क्वेश्चन अपने आप से हरदम होता है ना कि ये जीवन है किस लिए,
0: जी जी,
1: क्यों जी रहे हैं जीवन, अल्टीमेटली क्यों जी रहे हैं, उसको क्वेश्चन करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं कुछ नहीं, बस मैं एक बात हूं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक बात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ।
0: क्या बात है,
1: इतना ट्रिवियल है ह्यूमन लाइफ। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, बस मैं एक बात हूँ, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूँ, जमी से हूँ उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया।
0: क्या बात है, वाह।
1: जमी से हूँ उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया, देख तेरा लाल माँ तुझे सांझ ढले मिल गया।
0: वाह वाह वाह,
1: ईश्वर माँ है। और डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, हूँ धन्य मेरी खाद से जो एक फूल खिल गया।
0: क्या बात है, वाह। तो आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू उजागर हो रहे हैं और तो अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
1: गाना आप सुनाइए रहमान साहब का वंदे मातरम, दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद विशाल जी, चाय वाली एक कविता
1: जी
0: बड़ी मशहूर हुई है आपकी, तो याद कीजिए और सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी, तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या जो सिनेमा में मैंने सीखा है, स्टोरी टेलिंग में जो सीखा है, क्या मैं किसी उसको किसी कविता पे अप्लाई कर सकता हूँ।
0: जी,
1: तो चाय को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना के, यानी चाय को एक हीरो बना के मैंने एक कविता लिखी।
0: जी,
1: इसके अंदर वो सब कुछ है, इसके अंदर विलेन भी है, इसके अंदर महिमा मंडन भी है, इलेवेशन सीन भी है, जो होते हैं ना फिल्मों के जो थ्री स्ट्रक्चर होते हैं, तीन स्ट्रक्चर भी हैं, फिर रेजोल्यूशन भी है।
0: तो क्या तरन्नुम में भी गाते हैं?
1: नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप ऐसे सुनिए।
0: ठीक है, ठीक है, सुनाइए।
1: चाय को मना कौन करता है भाई,
0: चाय को मना
1: चाय को मना कौन करता है भाई, कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक करंट मारती, जगाती हंसाती मूड बनाती, मिलने के बहाने सुझाती,
0: क्या बात है,
1: मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय,
0: क्या बात है,
1: होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: कत्थई सी रसीली सी नशीली सी, अदरक सी तीखी गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक करंट मारती, जगाती हंसाती मूड बनाती, बातें कराती, मिलने के बहाने सुझाती, मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय, होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई। लेखक रसपान कर उपन्यास लिख दें, कवि मीठी जुबान लिख दें, फिल्मकार कहानी कर दें, पात्र सब मुंह जबानी कह दें,
0: क्या बात है,
1: पात्र सब मुंह जबानी जुबानी कह दें, टपरी पे की कटिंग देती है गुहार, सुगंध छोड़ती है ले आती है बाहर, और कड़वी है कॉफी, यहां से विलेन की एंट्री,
0: और कड़वी है कॉफी
1: और कड़वी है कॉफी और चाय की है अपनी ही मिठास,
0: क्या बात है,
1: और कॉफी बोले अंग्रेजी पर अपनी चाय करती है हिंदी में बात,
0: वाह वाह वाह,
1: थकान मिटा देती है, इसे मना कौन करता है भाई। अब ये हो गया, विलेन खड़ा कर दिया, अब रेजोल्यूशन है भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है,
0: क्या बात है
1: भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है, उसकी अपनी शान होगी, कोई ऊंची दुकान होगी, होंगे एयर कंडीशन में मोका अमेरिकाने की चुस्की के अपने स्वाद, तुम्हारी कॉफी रहे आबाद,
0: क्या बात है, वाह,
1: पर अपनी चाय जिंदाबाद जिंदाबाद,
0: वाह,
1: और फिर कांच के कप में मचलती चली आए, और कैसी चमक छोड़ती है, इसे मना कौन करता है भाई,
0: वाह,
1: इसे मना कौन करता है भाई, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क,
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे हुनर आपके सामने आ रहे हैं आज की इस बातचीत में।
1: जी।
0: विशाल जी, एक बार फिर आपकी फिल्म की ओर चलते हैं, हनुमान अंश की ओर। इसमें जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा, तो ये पात्र कैसे मिले, मतलब कैसे आपने चयन किया कलाकारों का, एक बच्चा है फिर बड़ा बड़े कलाकार का, सत्य शोभिना सत्य कहाँ से मिलेगी?
1: तो मैं एक ही करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जिनको आप कलाकार को देख रहे हैं, जिनका नाम है चंदन के आनंद, जिन्होंने डॉक्टर भोसले का रोल प्ले किया है,
0: जी जी,
1: वो मेरे मित्र थे, एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे, पर बहुत समय के बाद में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, नॉट भोसलेस, मुझे चाहिए था नासिर अली के रोल के लिए।
0: जी।
1: तो मैंने उनको नासिर अली के रोल के लिए चयनित किया था। एक राजीव मिश्रा जी हैं, उनको मैंने सुखराम के लिए चूज किया था, और हुआ सेट पे ऐसा कि चूंकि मुझे डॉक्टर भोसले, जिनको मैं कास्ट करना चाह रहा था, कोई बड़े एक्टर थे
0: जी,
1: वो जब उनका नहीं हो पाया आखिरी तक, तो मैंने फिर इनको नासिर अली की जगह डॉक्टर भोसले पोज किया, और जिन जो सुखी राम प्ले कर रहे थे वो नासिर अली पोज किया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि, और वो ऐसे फिट हुए दोनों के दोनों, आई हैड एन आइडिया कि ये होगा, और मेरे दिमाग में था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। तो चयन तो किसी और कैरेक्टर के लिए, पांच कैरेक्टर्स उस दो सीन के अंदर

0: थे जिनको अपग्रेड किया मैंने, तो जो नीचे वाले रोल पे था ऊपर गया, उसके ऊपर वाले ऊपर पे गया, ऐसे ऐसे करके सब सबका ऐसा हो गया। देन जो बच्चा है विहान शेडगे जिसने लक्ष्मी नारायण जी का रोल प्ले किया है, बचपन का लक्ष्मी नारायण का रोल प्ले किया है, उसके साथ मैंने एक ऐड किया था पिछले साल, उसके पहले साल, और वो और जो पार्वती जिन्होंने प्ले किया है नेहा परांजपे, उन दोनों दोनों मराठी हैं, और वो मैंने
1: नेहा परांजपे विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर थी
0: रही हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है,
1: अभी भी कैजुअल
0: आकाशवाणी करती हैं।
1: जी जी।
0: तो नेहा और इन दोनों ने, मैंने एक मराठी एड किया था और वो इतना पॉपुलर हुआ एड, वो मैं मराठी मैं बोल नहीं सकता, समझता हूँ, मैंने वो मराठी एड था और वो इतना पॉपुलर हुआ, ये दोनों ने इतना अच्छा उसमें एक्टिंग की थी और इतने सिंगल टेक एक्टर्स थे लोग, दोनों के दोनों, एक पुणे से आया था और एक यहाँ से आया था, बट इट्स सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन दैट आई ऑलवेज थॉट कि मैं इनको किसी दिन कास्ट करूंगा। तो ये दो कैरेक्टर वहां से आए। फिर जिन्होंने राम बेटी शर्मा जी का, मतलब महाराज जी की पत्नी का रोल प्ले किया है, वो उनको मैंने चयनित किया, उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने पहली बार कैमरा फेस किया है। ज्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो है ना, वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सिक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों के तीनों एक एल्बिनो है, और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ के लेके आके हमने उनको उनसे एक्टिंग कराई है, जो पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। शोभना सत्य जो है ना, वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरे लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है, और वो नीम करोली बाबा जैसे महाराज जी से दिखता था वो। मैं जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आया था, तो मैं एग्जैक्टली सीधे इमीडिएटली मैंने बोला, अरे तो महाराज जी हैं, और मैं उस पर गुस्सा था कि वो तीन दिन बाद आए, लेट आया था वो। सो आई वाज एंग्री एट हिम, कह रहे यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम तीन दिन लेट आ रहे हो। तो मैं गया लेकिन भूल गया, मैं तो बोला रही महाराज जी, बट मेरे लीड एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है उन सेट, तो रिप्लेसमेंट के तौर पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ मंदाकिनी रिवर पे, तुलसी घाट पे, चित्रकूट के तुलसी घाट पे, जहां पे तुलसी जी ने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी भी हैं, उसी घाट पे मैं उसका 5 घंटे तक टेस्ट करता हूँ, और फिर वो सुर पकड़ लेता है। जब वो सुर पकड़ लेता है, तो मेरी एक आदत है, आदत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एक्टर्स को बहुत ओवर गाइड नहीं करता हूँ, मैं उनको ओवर इन्फॉर्म भी नहीं करता, मैं सिर्फ उनके उनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ।
1: अच्छा।
0: मेरी टेक्निक ही है कि मैं सारे एक्टर्स को, चाहे नया हो पुराना हो, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली बताता रहता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना रिसेप्टिव होता है और इतना समझदार है कि जैसे ही वो अपने कैरेक्टर को समझ पाएगा, वो बिहेव करने लगेगा वैसा।
1: बिल्कुल।
0: हम अपने बच्चे के सामने पिता की तरह बिहेव करते हैं, वही हम पत्नी आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, और मैं माता आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, दोस्त आता है तो अरे यार करके बात शुरू कर देता हूँ। हम अपने जीवन में जैसे ही हम अपने रोल को समझ पाते हैं, हम इमीडिएटली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतने सिंपल प्रोसेस है, मैं किसी भी, जितने भी आपने एक्टर्स देख रहे हैं, उसमें कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, कुछ लोग बहुत वीक एक्टर्स भी हैं, पर उनका एक ही मेरा तरीका है, मैं सब किसी को कैमरे के सामने डांटता नहीं हूं। अगर मुझे किसी एक्टर से बात करनी है, मैं उसको साइड में ले जाऊंगा और फिर से वही बात समझाऊंगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले से। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स, तो यही शोभना के साथ में भी हुआ कि मैंने उसको ओवर इन्फॉर्म नहीं किया। वंस ही कॉट द कैरेक्टर, जब उसने कैरेक्टर पकड़ लिया, डायलॉग्स उसको याद है, हिंदी उसकी अच्छी है, तो मैं क्यों उसको ओवर इंस्ट्रक्ट करूं। और वो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई कि हमने 22 दिन में रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने 2.5 घंटे की फिल्म शूट करी है,
1: हिट हुई। तो अब यहाँ एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से हनुमान अंश फिल्म का ही एक गाना प्ले करें, जिसका टाइटल है सासा हाले हासा चाले।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: विशाल जी, संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जब आपका संघर्ष चल रहा था उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है कि कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लें तो फिर वो सब चलता रहता है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैसे कमाने का या नाम कमाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए इम्पैक्ट सिनेमा, समाज पे इम्पैक्ट होना, समाज पे क्या असर डालेगा, आप कैसे, क्योंकि इंफॉर्मेशन की दुनिया है, इंफॉर्मेशन का एज है, इस एज में इंफॉर्मेशन ही सबको ड्राइव कर रही है। हम ये पानी के बॉटल से पानी पीना चाहिए हमको, ये बेसिस इंफॉर्मेशन है और यही ड्राइव कर रहा है। तो गलत है सही है वो एक वो बात की बात है, लेकिन इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन के दुनिया में आप इंफॉर्मेशन को कैसे पॉकेट करो और समाज में एक नई राह पे उनको एक नया इंटरेस्टिंग कोई पर्सपेक्टिव दो, ये ड्राइव करता है मुझे। तो वो इसलिए मुझे कभी कभी हुआ नहीं। और मैं बहुत ही, रघु जी जानते हैं बात, कि मैं बहुत मॉडेस्ट लाइफ जीता हूँ, कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है और पार्टियां वार्टियां नहीं करता हूँ, किसी तरह कोई खर्चा अदरवाइज है नहीं, जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है वो, खाने पीना और जो किराए हैं यही मेरे खर्चे हैं, इसके ऊपर किताबें खरीदना और फिल्में देखना ये दूसरे खर्चे हैं जो एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि जो लग्जरी है, या कभी टेंटिंग वेंटिंग करने के लिए उस तरह, उसमें बहुत मुझे मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाके मतलब टेंटिंग करूं और एकांत में जाके, तो ये मेरे शौक है, जिस वजह से मैंने काफी अपने जीवन को बहुत ही मॉडरेट लाइफ में, मिनिमल और मॉडरेट लाइफ की तरह से जीता हूं। तो बहुत आवश्यकताएं जब नहीं होती हैं तो आप किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका जीवन चलता रहता है। जीवन जब चलता नहीं है, जब उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है और आप किल्लत में हैं, इसमें हैं, उसमें, फिर आप उल्टी सीधी संगत में जाते हैं, फिर आप नए नए रास्ते निकालते हैं जो सही रास्ते नहीं हैं, तो इनकी वजह से मुझे खास कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। और मैं बहुत जो मेरे अंदर है वो बहुत वोकल हूँ उसको लेके मैं, और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूँ। तो मुझे इस परिवेश में रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ या मुझे सक्सेस पानी है। फिल्म बनानी है ये एक डेफिनेटली एक बात थी जो कि हरदम कचोटती थी कि यार सब कुछ कर लिया, फिल्म ही बन रही अपनी।
0: जी विशाल जी, रघु का जिक्र आपने किया, रघुविंदर सिंह
1: जी,
0: और फिल्म में इनका नाम भी बाकायदा हम देखते हैं
1: जी,
0: तो इनके बारे में बताइए, इनकी फिल्म में क्या भूमिका है और क्या योगदान रहा है आपकी इस फिल्म मेकिंग में?
1: मुझे लगता है कि जीवन में मतलब काफी मेरे मित्रों के नाम फिल्में हैं, और जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड्स में से, मतलब मैं कहूंगा रघु ही एक अकेले फ्रेंड है जो मेरे घर में मतलब घर की तरह से ही रहे हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं था, ये मेरे घर पे आके टिका करते थे ना, अपना जॉब करके आ गए तो अपना जागरण में काम करते थे, फिर फिल्म फेयर चले गए, तो उनके साथ में एक जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक वो भी है कि हम एक

0: सलाह भी बहुत लेते हैं, तो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से, और मैं भी इनका सलाहकार हूँ, ऐसा नहीं कि मैं
1: जी
0: ये
1: जी
0: सिर्फ सलाह लेते हैं। फिर मैं डॉक्टर हूँ इनका,
1: जी
0: तो इनकी तबीयत जब जब खराब होती थी तो जो होता था तो मैं इसका इलाज भी करता, तो मेरे घर पे आके ही फिर मैं मेरा इसको हॉस्पिटल बना के उसमें इलाज भी कराते थे।
1: जी
0: लेकिन हमने साथ में काम, शायद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ काम ऐसा किया, अब हम साथ में काम करेंगे भविष्य में। लेकिन रघु की जर्नी, रघु का जो जो उसकी बेस्ट उसकी क्वालिटीज हैं वो ये हैं, बहुत सारा बहुत सीखता हूँ उससे कि कैसे, हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, हाउ टू द पूरी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो पीपल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है। इफ़ यू नो हाउ टू मैनेज, एंड ही नोज इट सो सो वेल, एंड बहुत बैलेंस्ड हैं, बहुत शार्प हैं, बहुत क्लियर थाट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थाट्स है कि ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी थॉट है। और हिंदी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे, तो हमें हिंदी भी बहुत जोड़ती है आपस में। मतलब मैं भी अपने आप को हिंदी नाजी मान, नाजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे लगता है कि फ्लैग बेयर हूं मैं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना चाहिए इसको, मैं बॉलीवुड नहीं कहना पसंद करता हूं। मेरे ट्विटर वगैरह जहां भी जाएंगे आपको लिखे दिखा मिलेगा फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नॉट बॉलीवुड। तो वो हमारा
1: वो इलाहाबाद के, आप लखनऊ के
0: जी,
1: ये भी एक रिश्ता है। तो
0: मिले तो ही मुंबई में थे, मेरे पेशेंट थे जब मैं क्लिनिक चलाता था, तो ये एक दिन एक मित्र मनीष,
1: अभी तो आपके बहुत सारे पेशेंट हो गए फिल्म के माध्यम से, जो मरीज हो गए हैं कि आपसे मिलने के लिए इच्छुक हैं, एक लंबी तादाद। अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन होते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर और राइटर के इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं आप, बहुत सारी बधाइयां। यहाँ हमें हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुंबई में रहते हुए आप लखनऊ रहे और बुंदेलखंड का जीवन जिया है, तो यहाँ उन शहरों को क्या चीज मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं?
0: एक तो वो शांति और जो बेफिक्री होती है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा वहां जाते से ही आपको एक एक शांत वो महसूस होता है, जैसे कि जीवन चल रहा है उसी पेस पे चल रहा है, प्रॉब्लम जैसे मेरा अंतरंग, मेरा मन चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है, यहाँ पे शरीर और वो सब पीछे रहता है और आप हरदम कॉन्स्टेंटली उसको कोप अप करने के लिए कॉफियां चाय दुनिया भर के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि आप जो है ना उसके साथ कोप अप कर पाओ। लेकिन मुंबई जो है मुझे बहुत सुंदर शहर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो यहाँ लोगों के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता प्रॉब्लम, तो एक बहुत सिक्योर्ड शहर लगता है।
1: जी बिल्कुल, बहुत ऐसा अनुशासित
0: है, लोगों से आपको भय नहीं होता, लोगों ऐसा लगता नहीं कि आपको ये व्यक्ति कुछ बात मांगने पूछने जाएंगे तो वो आदमी मना कर देगा, बहुत सौहार्द रहता है, लोग बहुत हेल्पिंग है, और जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित शहर है, जिस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, ऑटो वाला कभी आपको मीटर उल्टा नहीं मारता है, ऐसी हजारों खूबियां हैं शहर के अंदर
1: जी।
0: जो वहां पे आपको टेंशन होती है वहां पे उलझन होती है, जिस तरह से लोग जो है ना हर चीज को मतलब ग्रैब करने के लिए दे कॉम्पीट एंड बहुत ज्यादा, तो मुंबई में उतना वो मुझे लगता है इस मामले में बहुत रिलैक्स है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे कि सुबह सुबह कहाँ की अच्छी होती है और शाम कहाँ की अच्छी होती है, तो मैं लखनऊ से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं होती है।
1: बिल्कुल, बनारस की सुबह और
0: लखनऊ की शाम, अवध की शाम,
1: अवध की शाम। जी विशाल जी, एक आखिरी बात जो पहले हमें जाननी चाहिए थी, मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, कैची धाम जहाँ पर आप रहे हैं, कैची धाम की पहाड़ियां तो किस तरह से आपको मोहित करती रही, और फिल्मांकन भी उन्हीं इलाकों में किया है, तो कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में।
0: तो आप चूंकि आप देख के आपको लग रहा है कि वो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, वो सब चित्रकूट है।
1: ओहो,
0: और
1: चित्रकूट
0: चित्रकूट है।
1: ओहो,
0: तो जो भी आप उसमें बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब हमने VFX पे क्रिएट किया है।
1: चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश, चित्रकूट
0: उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो है ना।
1: वाह क्या बात है, और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम,
0: कैची धाम
1: है, क्योंकि आपने कई बार
0: धाम भी दिखाया, जो भी आपने कहा वो अगमर्षण कुंड है जहाँ पे यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था।
1: हाँ।
0: वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट के डीप इन जंगल्स है, जहाँ पे तेंदुए और दुनिया भर के वो सब हमारे यूनिट ने भी देख लिए, तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं वहाँ पे, और अजगर वजगर सब कुछ था वहाँ पे,
1: घने जंगल हैं।
0: तो हमने वहां जाके शूट किया उसको, अगमर्षण कुंड में धारकुंडी आश्रम था वहां पे शूट करा। इसके अलावा चित्रकूट में जितनी भी आप लोकेशन देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, सब वो हमने मैच कर दिए। तो फिल्म मेकिंग जो है ना, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, इट्स ऑल अबाउट मेक बिलीव, इट्स ऑल अबाउट चीटिंग टू, जिसे बोलते हैं चीट सीन करना, रियल लोकेशन हैं वो लेकिन किसी और जगह की हैं, पर आपको वो ऐसा महसूस कराती हैं भावनात्मक लेवल पे, आपको ऐसे वहां पहुंच ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। तो जो भी आप एलिमेंटली जो चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो वहां का, वो आप कर लेते हो इस तरह से।

0: हमने किसी तरह से चित्रकूट में ही,
1: जी
0: और चित्रकूट नहीं होता तो शायद ही फिल्म उस बजट में जिसमें उन्होंने बनाई बन नहीं पाती।
1: बिल्कुल। अब चलते चलते हमारे जो नए श्रोता है, युवा श्रोता है, उन्हें कुछ दो लाइन में संदेश दे सकते हैं तो दीजिए।
0: तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो जो संस्कृति है, जो संत परंपरा है, जिसने धागे की तरह से पूरे पिछले 5-7 हज़ार साल में सारा टेक्स्ट, सारा लिटरेचर और समाज को बांध के रखा है। संत समाज से बाहर निकल जाता है, ना उसका जाति होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है। संप्रदाय होते हैं पर वो संप्रदाय फिल्म के अंदर आपने उसमें देखा भी, उसी
1: बिल्कुल
0: विरक्ति उसको हो जाती है। वो ना नाम से अटैचमेंट रखता है, ना किसी जेंडर से अटैचमेंट रखता है, वो पूरी तरह से ईश्वर का हो जाता है। जब आदमी अपने आप को बिल्कुल बाहर रख के थर्ड पर्सपेक्टिव से, दृष्टा भाव से देखता है, एक संत दृष्टा भाव से ही दुनिया को देखता है, तो सारे जो मैल होते हैं ना, वो सारे मैल आपको दिखने बंद हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीन चीजें जो नीम करोली बाबा भी बोलते थे, लव ऑल, सभी को प्रेम करो, फीड ऑल, भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाओ, सबसे पहले खाना पूछो आदमी को, और तीसरा राम राम लिखो, ईश्वर को हरदम याद करते रहो। ये तीन चीजें वो सिखा के गए। मुझे लगता है कि जो जेंजी है या जो नई जनरेशन है, वो भी ऐसा ही कुछ सोचती है, जस्ट दैट उनको अलाइन करने की आवश्यकता है। वो भी यही बातें कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली कोर है। और
1: जी
0: यही तो, इसलिए नीम करोली बाबा की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जेनजी और जेन अल्फा को सबसे ज्यादा प्रभावित, जो मैं करना चाहता भी था, करेगी।
1: बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। क्या एक दो लाइन गुनगुनाएंगे?
0: जी। अब ना देर लगाओ देर, अब कृपा करो महादेव, अब ना देर लगाओ देर, बस कृपा करो महादेव, ये दुनिया एक छलावा, तू साचा ठौर है बाबा, के आहवा के जावा, के
1: क्या बात।
0: आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, हर हर महादेव।
1: हरे महादेव।
0: इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ दी रेयरेस्ट सॉन्ग्स जो मुक्ति चाह रहा है पर वो हंस के मांग रहा है, इतने ज्यादा फन भाव में, इतने अच्छे सुंदर भाव में हंसते हंसते बोल रहा है कि आवागमन मिटा दो भोले शंकर।
1: जी, विशाल जी यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी बातें, यादें साझा की, बड़ी दिलचस्प लगी हमें, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगेंगी हमें उम्मीद है। आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, मैं 1960s में कहीं बैठा हूँ, ऐसा
1: क्या
0: फीलिंग आ
1: बात
0: रही
1: है।
0: है। नमस्कार, धन्यवाद।
1: हाँ।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
3: मेरा साया साथ होगा।
0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: करो वादा,
2: हाँ जी वादा।
0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
3: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
5: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
6: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
7: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर
3: मार उड़ा दी लिखो के मार उड़ा,
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की,
8: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी।
9: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज रहे हैं और ये समय है युवा श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी उज्जैन केंद्र और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रचना श्रीवास्तव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे शो आपकी फरमाइश में। दोस्तों, हर बुधवार की तरह आज भी हम सब इस शो के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। गानों का मज़ा तभी आता है जब उनके साथ हमारी कुछ पुरानी यादें, छोटी छोटी बातें और अपनों का प्यार जुड़ा हो। जब आप अपने पसंद के गाने और फरमाइशें भेजते हैं तो यह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं रहता बल्कि हम सब का एक छोटा सा परिवार बन जाता है और हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके भेजी हुई हर फरमाइश हमारी आवाज़ के ज़रिए आप तक पहुँचे। देश के अलग अलग हिस्सों से आप लोग अपनी फरमाइशें लगातार भेजते हैं। आपके नाम और संदेश सामने आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम सब संगीत के इस डोर से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा म्यूजिकल सफ़र। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश हमें भेजी है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवान गुरवंश सिंह जोड़ा ने। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल ने। धमदा ग्राम सूखरी कला से भेरूलाल वाक्तरिया, भोला वाक्तरिया, प्रवीण वाक्तरिया, रियांश वाक्तरिया, प्रतीक वाक्तरिया ने। ग्राम भगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम ने। राजा जोखर बाजार अररिया बिहार से शरीफ आरजू गुड्डू रंगीला ने। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नभानकर, निर्मला नभानकर, विशाल नभानकर, सोपान इत्यादि की फरमाइश पर पेश है यह गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे ब्रेक के उस पार, फिल्म में प्रेम की दीवानी हूं से, जिसे अपने दिलकश आवाज दी थी कैस चित्रा और शान ने, संगीतकार थे अनु मलिक और गीतकार थे देव कोहली। इसी के साथ अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है छत्रपति संभाजीनगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट अंशुमन, बेबी ओवी ने, सिविल लाइन्स रायपुर छत्तीसगढ़ से राजेश शर्मा, वंदना शर्मा, अमन शर्मा, प्रिया शर्मा ने, शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश से मनोज कुमार गुप्ता, अनीता गुप्ता, राहुल गुप्ता, नेहा गुप्ता ने, मॉडल टाउन अम्बाला हरियाणा से गुरप्रीत सिंह, रमनदीप कौर, युवराज सिंह ने, गांधी चौक बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संजय तिवारी, संध्या तिवारी, आशुतोष तिवारी ने, तिलकनगर इंदौर मध्य प्रदेश से राकेश वर्मा, सुनीता वर्मा, मयंक वर्मा, पलक वर्मा ने, स्टेशन रोड कोटा राजस्थान से दिनेश माहेश्वरी, रेखा माहेश्वरी, मोहित माहेश्वरी ने, बरगदवा गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ब्रजेश सिंह, पूनम सिंह, आदर्श सिंह, दिव्या सिंह ने, बजरंग चौक जबलपुर मध्य प्रदेश से आशीष जैन, शिल्पी जैन, रुद्राक्ष जैन ने, हाउसिंग बोर्ड भिलाई छत्तीसगढ़ से पीके देशमुख, मंगला देशमुख, सौरभ देशमुख ने, शक्तिनगर भोपाल मध्य प्रदेश से आलोक सक्सेना, निशी सक्सेना, अनंत सक्सेना ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना चाहा है रामनगर नागपुर महाराष्ट्र से मिलिंद काले, माधुरी काले, संचित काले ने, अलकापुरी बड़ौदा गुजरात से जिग्नेश पटेल, सोनल पटेल, ध्रुव पटेल ने, अशोकनगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हरिशंकर कुशवाहा, उमा कुशवाहा, रोहित कुशवाहा की फरमाइश पर पेश है यह गीत।

सुलाए दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
2: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
3: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित, भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
2: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
3: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है, E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
2: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
4: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म फना से, सोनू निगम सुनिधि चौहान की दिलकश आवाज में, गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत दिया था जतिन ललित ने। श्रोताओं, इसी के साथ अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है टीचर्स कॉलोनी जयपुर राजस्थान से डॉक्टर वी के शर्मा, ममता शर्मा, कुणाल शर्मा, इंदिरानगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से संतोष वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी, प्रतीक वाजपेयी, बसंत विहार देहरादून उत्तराखंड से विनोद नौटियाल, बीना नौटियाल, सौरभ नौटियाल, कबीरनगर रायपुर छत्तीसगढ़ से संतोष साहू, गायत्री साहू, योगेश साहू, सुभाष चौक झुंझुनू राजस्थान से बजरंग लाल जांगीर, संतोष जांगीर, विकास जांगीर, जनता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से महावीर सिंह, सुमित्रा देवी, दीपक सिंह। इसी के साथ इस गीत को सुनना चाहा है विजयनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से संदीप पचौरी, प्रीति पचौरी, आरव पाचौरी ने, पटेल नगर हिसार हरियाणा से बलवान सिंह, कृष्णा देवी, नवीन सिंह ने, कृपाल नगर वाराणसी उत्तर प्रदेश से शिव कुमार मिश्रा, शकुंतला मिश्रा, राहुल मिश्रा ने, विवेकानंद मार्ग पटना बिहार से डॉक्टर आर एन सिंह, पुष्पा सिंह।

आलोक सिंह ने मालवीय नगर जयपुर राजस्थान से, महेंद्र जैन, सुनीता जैन, वरुण जैन ने सिविल लाइन्स झांसी उत्तर प्रदेश से, राजीव श्रीवास्तव, अलका श्रीवास्तव, शशांक श्रीवास्तव ने नेहरू नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, अरुण कुमार देवांगन, निर्मला देवांगन, तरुण देवांगन ने दुर्गा नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से, के एल निषाद, भुवनेश्वरी निषाद, हेमंत निषाद ने राजा पार्क जयपुर राजस्थान से, गुरमीत सिंह, सिमरन कौर, जसमीत सिंह की फरमाइश पर पेश है यह गीत।

0: यार एक बात बताओ, किसी चीज पर 15-20 साल तक रिसर्च हुई हो, हजारों घंटों तक उसकी टेस्टिंग हुई हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ARAI, SIAM और BIS जैसी संस्थाओं ने उसे परखा हो, नीति आयोग ने खुद उसके इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसी बनाई हो और फिर उसे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया हो,
1: तो फिर वो भरोसेमंद ही होगी।
2: बिल्कुल, E20 भी ऐसा ही ईंधन है, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित, प्रमाणित और सुरक्षित। भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी। भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
0: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
2: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
0: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: श्रोताओं, आपने सुना ये गीत फिल्म आर्टिकल 15 से। अरमान मलिक की आवाज़ में गीतकार थे शकील आज़मी और संगीत दिया था अनुराग सैकिया ने। इसी के साथ अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है संजय नगर बरेली उत्तर प्रदेश से मोहम्मद रिजवान, शबनम बानो, फैजान खान। तिलक नगर नागपुर महाराष्ट्र से अनंत कुलकर्णी, सुप्रिया कुलकर्णी, पार्थ कुलकर्णी। शांतिनगर अमरावती महाराष्ट्र से सुरेश गावड़े, मंगला गावड़े, शुभम गावड़े ने। गोपालनगर अकोला महाराष्ट्र से विजय पाटिल, छाया पाटिल, तेजस पाटिल। इसी के साथ इस गीत को सुना चाहा है शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र से मिलिंद जोशी, वैशाली, अथर्व जोशी ने। शास्त्री नगर जोधपुर राजस्थान से भंवर सिंह राठौर, मंजू कंवर, विक्रम सिंह राठौर ने। सेक्टर 22 चंडीगढ़ से ब्रिगेडियर HS संधू, परिपिंदर कौर, अंगद संधु ने। विकास नगर शिमला हिमाचल प्रदेश से प्रेमलाल ठाकुर, कांता ठाकुर, आशुतोष ठाकुर ने। लेक रोड रांची झारखंड से सुब्रत मुखर्जी, डोला मुखर्जी, अर्णब मुखर्जी ने। पार्क स्ट्रीट कोलकाता पश्चिम बंगाल से देवाशीष रॉय, मौमिता रॉय, रोहन रॉय ने। मरीन ड्राइव मुंबई महाराष्ट्र से संजय मेहता, अमित मेहता, कबीर मेहता, दिशा मेहता ने। सेक्टर 17 चंडीगढ़ से विनीत मल्होत्रा, शालिनी मल्होत्रा, रोहन मल्होत्रा ने। सिविल लाइन्स इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आलोक बनर्जी, नंदिनी बनर्जी, शौर्य बनर्जी की फरमाइश पर पेश है यह गीत।

श्रोताओं, आपने सुना है गीत फिल्म एक विलेन से अंकित तिवारी की आवाज़ में, जिसके गीतकार थे मनोज मंतशिर और संगीत दिया था अंकित तिवारी ने। तो श्रोताओं, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब इस म्यूजिकल सफ़र को यहीं रोकने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आज के गाने और आपकी भेजी हुई इन खूबसूरत फरमाइशों ने आपके दिन को थोड़ा और ख़ास बना दिया होगा। आकाशवाणी उज्जैन के साथ यूं ही ट्यून इन रहिएगा, अपनी फरमाइशें भेजते रहिएगा, ताकि अगले बुधवार हम फिर से इन्हीं रेडियो तरंगों पर एक नए सफ़र के लिए मिल सके। मैं आपकी रेडियो दोस्त रचना श्रीवास्तव अब लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फिल्मी बातें।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी उज्जैन पर मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दुर्गा शंकर सूर्यवंशी, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फिल्मी बातें। दोस्तों, जब भी बात 90 के दशक के उस जादुई दौर की होती है जिसने भारतीय संगीत जगत की पूरी तस्वीर ही बदल दी, तो एक फिल्म का नाम सबसे पहले जहन में आता है। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी कालजयी संगीतमयी फिल्म आशिकी। आज के एपिसोड में हम 23 जुलाई 1990 को रिलीज हुई इसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के निर्माण, इसके संगीत और इससे जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस रोमांटिक संगीतमय सफर का आगाज करते हैं इस अमर नगमे के साथ।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: श्रोताओं, ब्रेक के पहले आपने सुना कुमार सानू की आवाज में रचा गया वह यादगार गीत, जिसने उस दौर में हर युवा के दिल को छू लिया था। फिल्म आशिकी की कहानी राहुल और अनु की है, दो ऐसे युवा जो अपने अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत तनावों से जूझ रहे होते हैं और एक अनाथालय में उनकी मुलाकात प्यार का रूप ले लेती है। यह फिल्म भारतीय संगीत जगत में एक नया मोड़ साबित हुई। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार और संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने मिलकर इस फिल्म के गाने को एक अलग ही ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं इस प्रेम कहानी का वो खूबसूरत मोड़, जहां प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: वाह, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाज में रचा गया यह गीत आज भी दिल को एक अजीब सा सुकून देता है। दोस्तों, अब आते हैं फिल्म आशिकी से जुड़ी उन खास बातों पर जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गुलशन कुमार जी ने शुरुआत में नदीम श्रवण के साथ मिलकर सिर्फ एक एल्बम बनाने की योजना बनाई थी जिसका नाम चाहत रखा जाना था। जब महेश भट्ट ने ये गाने सुने तो उन्हें ये गाने बेहद पसंद आए और उन्होंने इस एल्बम के इर्द गिर्द पूरी फिल्म बनाने का सुझाव दे दिया। आशिकी का साउंडट्रैक भारतीय सिनेमा के इतिहास का अब तक का सबसे ज़्यादा बिकने वाला ऑडियो एल्बम है। इसके 2 करोड़ से अधिक आधिकारिक कैसेट्स बिके थे। पोस्टर में दोनों कलाकारों को कोर्ट के पीछे छुपाने का विचार निर्देशक महेश भट्ट का था। वे बिना चेहरा दिखाए दर्शकों में उत्सुकता पैदा करना चाहते थे और यह रणनीति इतनी सफल रही कि यह पोस्टर भारतीय सिनेमा का लैंडमार्क बन गया। फिल्म आशिकी के रिलीज होने के बाद राहुल रॉय का हेयर स्टाइल युवाओं के बीच इतना लोकप्रिय हुआ कि उस दौर में सैलून वाले राहुल रॉय कट के लिए अलग से पैसे लिया करते थे। और जब इस प्यार की, इस मखमली भावना की बात हो रही है तो इस सदाबहार गीत को कैसे भुला जा सकता है।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: क्या बात है, समीर साहब के लिखे बोल, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, आज भी हर प्रेमी जोड़े का पसंदीदा गीत बना हुआ है। लेकिन श्रोताओं, सच्ची मोहब्बत की राह कभी सीधी साधी नहीं होती। फिल्म की कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जब कैरियर, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और गलत फहमियों के कारण राहुल और अनु के बीच दूरियां आ जाती है। प्यार की जगह जुदाई का दर्द ले लेता है। आइए सुनते हैं बिछड़ने के इसी दर्द को बयां करता हुआ यह बेमिसाल नगमा।

वाह, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। कुमार सानू की दर्द भरी आवाज में यह गीत

आज भी आंखों को नम कर देता है। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा विशेष कार्यक्रम फिल्मी बातें, जिसमें हमने बात की 1990 की ऐतिहासिक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी की खट्टी मीठी यादों, उसके इतिहास और अमर संगीत की। उम्मीद है यह संगीतमय सफ़र आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ज़रूर भेजिएगा। कल ठीक इसी समय फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक फिल्म उसके अनसुने इतिहास के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम फिल्मी बातें FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन से भजन संध्या के इस पावन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं दुर्गा शंकर सूर्यवंशी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम का यह समय मन को सुकून देने और ऊर्जा को भरने का होता है। अगले आधे घंटे तक हम सुरों और भक्ति भाव के इसी सुंदर तालमेल का आनंद लेंगे। तो आइए बिना किसी देर के आज के इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं पहला भजन।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: ब्रेक के पहले आप सुन रहे थे मन को प्रसन्नता देने वाले स्वर। भक्ति संगीत की यही तो खासियत है कि यह हमें पल भर में एक अलग ही शांति का एहसास करा देता है। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम का पहला भजन आपको बहुत पसंद आया होगा। आइए इसी मिठास को और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला भजन।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन से भजन संध्या। सुर और शब्दों का यह तालमेल हमारी शाम को और भी खूबसूरत बना देता है। संगीत सिर्फ सुनने का माध्यम नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाला एक सुंदर एहसास होता है। तो चलिए इसी सुरीली महफिल को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की भजन संध्या की श्रृंखला का अगला भजन।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: बेहद मनमोहक सुर। समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। जीवन के इस सफर में ऐसे शांत और सुकून भरे पल बेहद अनमोल होते हैं। हमें उम्मीद है आपके शाम का यह वक्त बहुत ही खास तरीके से बीत रहा होगा। तो आइए देर न करते हुए सुनते हैं आज की कड़ी का अगला भजन।

श्रोताओं, अब हम आज के इस कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस समय को इतना सुंदर बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के इस कार्यक्रम भजन संध्या को विराम देने से पहले सुनते हैं आज का अंतिम भजन।

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का हमारा भजन संध्या का ये कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। हमें दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 6:30 हो रहे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। आइए आज का संगीतमय सफ़र शुरू करते हैं और सुनते हैं पहला गीत।

कुर्बानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। नाजिया हसन की आवाज़ में संगीत दिया था बिद्दू ने और गीतकार थे इंदिवर। आइए सुनते हैं अगला गीत।

डोली सजा के रखना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे एमजी श्री कुमार और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में। गीतकार थे महबूब और संगीत दिया था ए आर रहमान ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

पाप फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में। गीतकार थे अमजद इस्लाम अमजद और संगीत दिया था M.M. क्रीम ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

मंजिल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत के बोल लिखे थे योगेश ने और संगीत दिया था RD बर्मन ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

गुनाह फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर और साबरी ब्रदर्स की आवाज़ में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था साजिद वाजिद ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: अशोका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार थे गुलजार और संगीत दिया था अनु मलिक ने। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,921

0: ₹97 का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है।
1: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीज का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, MSMEs को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुकों, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जनसमुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने बताया कि ये हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को ₹5,000 की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,623 पर स्थिर हुआ। आनंद कुमार वेलकुमार ने परागवे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए आपको संध्याकालीन सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं।

शाम 7:21 पर गांव की चौपाल से होगा कार्यक्रम माटीरी बात, जिसमें आप सुनेंगे ग्रामीण जीवन की उपयोगी बातें और निमाड़ी लोकगीत। रात्रि 8:00 हम पेश करेंगे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा और 8:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात 9:30 पर होगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात 10:00 आप सुनेंगे आपकी फरमाइश और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:20 पर। श्रोताओं, अब आपको कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की भी जानकारी देते हैं। कल सुबह 5:52 पर हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी। सुबह 6:05 पर सुनिएगा विविध भारती मुंबई से वंदनवार। 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान और संगीत सरिता का अनुप्रसारण होगा सुबह 6:45 पर। सुबह 7:00 आकाशवाणी उज्जैन से होगा भक्तिमय कार्यक्रम महाकाल वंदन। सुबह 7:20 पर उज्जैन की रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आएंगे सुप्रभात उज्जैन में। प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 9:00 आपको हम सुनाएंगे चित्र कथा। 9:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बॉलीवुड बीट्स। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे कल सुबह 10:00। सुबह 11:00 से विविध भारती मुंबई का अनुप्रसारण होगा। कार्यक्रम होगा रंग तरंग। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम होगा। सदाबहार नगमे हम आपके लिए लेकर आएंगे दोपहर 2:00। 2:30 पर हम आपको सदाबहार नगमे सुनाएंगे। सखी सहेली कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 3:00। शाम 4:00 आप सुनेंगे हेलो फरमाइश। शाम 5:00 आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से सुनिएगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम फिल्मी बातें आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। भजन संध्या का कार्यक्रम होगा शाम 6:00। 6:30 पर सुनिएगा उज्जैन डायरी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। रात 8:35 पर हम आपके लिए पेश करेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आपकी फरमाइश। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: 7:10 हुए, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उमरिया जिले में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी की और मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के चयनित सीएम फेलोज का प्रशिक्षण शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। ये कार्यक्रम शाम करीब 4:30 बजे होगा, जहां प्रधानमंत्री श्री मोदी खिलाड़ियों को संबोधित भी करेंगे। जापान के आइची नागोया में हुए एशियन गेम्स में भारत ने 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया था। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि सॉफ्ट टेनिस और एमएमए में भी भारत ने पहली बार पदक जीतकर इतिहास रचा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का उत्पादकता आधारित बोनस देने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्योहारों से पहले गैर राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जा रहा है। प्रत्येक पात्र रेलवे कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: प्रदेश में शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए 28 अक्टूबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में राज्य स्तरीय अर्बन कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 2800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नगरी विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी। इनमें इंदौर की जल प्रदाय और सीवरेज व्यवस्था, उज्जैन में मंदिर क्षेत्र का विकास और रीवा की जल प्रदाय योजना शामिल है। इस कार्यक्रम में वित्तीय संस्थानों के साथ अनुबंध किए जाएंगे और निवेशकों, स्टार्टअप्स और युवाओं को भी भागीदारी का मौका मिलेगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उमरिया जिले के गुरुवाही गांव में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी की। इसके तहत प्रदेश की करीब 1,25,00,000 महिलाओं के खातों में 1500 रुपये प्रति महिला के हिसाब से राशि ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही पात्र लाडली बहनों को 450 रुपये में गैस रिफिल के लिए अनुदान राशि भी दी गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 144 करोड़ रुपये से ज्यादा के 136 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया।
3: आज यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमारी अपनी बहनों के खाते में भी लाडली बहना के पैसे जा रहे हैं। ऐसे में उनके खाते में एक और राशि भी गई, 23,00,000 बहनों के खाते में 115 करोड़ से ज्यादा की राशि उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए भी दी गई।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आज मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत चयनित सीएम फेलोज के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 55 जिलों से चुने गए युवा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करेंगे और कमियों को दूर करने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें युवाओं की भूमिका अहम होगी। भोपाल के आपदा प्रबंधन संस्थान में आज अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें आपदाओं से निपटने, जोखिम को कम करने और पहले से तैयारी करने की तकनीकी जानकारी दी गई। इस साल की थीम रिजिलियंट स्टार्ट्स एट होम रही, जिसमें घर परिवार और समुदाय के स्तर पर आपदा से बचाव की तैयारी पर जोर दिया गया। आपदा प्रबंधन संस्थान के संयुक्त संचालक डॉक्टर जॉर्ज वी जोसेफ ने बताया कि
4: हमको हमारा घर में रेसिलियंस डेवलप करना है, डिसास्टर का न्यूनीकरण करना है और डिसास्टर का पूर्व तैयारी घर के लेवल में करना है। जो घर जो बनाया है वो सेफ्टी के लिए बनाना चाहिए और घर में जो डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए जरूरत रिसोर्सेस होना चाहिए, जैसे उनका अवेयरनेस होना चाहिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम का व्यवस्था होना चाहिए। और हम लोग ये इस साल में इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं बिकॉज उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है सेफ घर बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए।
0: भोपाल के डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू अस्पताल में आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के तहत जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में 150 से अधिक महिलाओं को मातृत्व मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान 70 से ज्यादा महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें 24 महिलाओं में हल्के अवसाद और चिंता के लक्षण मिले। उन्हें काउंसलिंग और जरूरी परामर्श दिया गया। भारत में वर्ष 2015 से 2024 के बीच टीबी के नए मामलों में 21% की कमी आई है, जबकि दुनिया में यह गिरावट 12% रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टीबी के इलाज का दायरा बढ़कर 92% हो गया है, जबकि वैश्विक औसत 78% है। सरकार टीबी उन्मूलन के लिए जांच बढ़ाने, आधुनिक तकनीकें अपनाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दे रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और उद्यानिकी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने आज ग्वालियर जिले के जौरासी में निर्माणाधीन अंबेडकर धाम का जायजा लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल कल से ग्वालियर जिले के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और तानसेन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। सागर जिले में आयोजित की जा रही वार्षिक अग्निवीर भर्ती रैली का आज समापन हुआ। बैतूल जिले में सेंट्रल कॉफी बोर्ड की टीम ने कलेक्टर से मुलाकात कर कुकुरु क्षेत्र को कॉफी की खेती के अनुकूल बताया। सिंगरौली जिले के एनटीपीसी विंध्याचल स्थित शाहपुर राख बांध में व्हील वॉशिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। निवाड़ी कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। आगरमालवा की ग्राम पंचायत बेड़लावदा में शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतने पर पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डिंडौरी जिले में आगामी 19 से 31 अक्टूबर तक जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया जाएगा। झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के पात्र हितग्राही 26 अक्टूबर तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। पांडुर्णा जिले में कल जिला स्त्री रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ में सेवा संकल्प अभियान के तहत तकनीकी कौशल और उद्यमिता पर ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किए गए और खंडवा में आगामी संघर्ष की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने ओंकारेश्वर में विभिन्न विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उमरिया में लाडली बहना योजना की 41वीं किस्त जारी की और मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम के चयनित सीएम फेलोज का प्रशिक्षण शुरू। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: FM 102.5 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। शाम के 7:21 हो रहे हैं और ये समय है कार्यक्रम माटीरी बात का।

नमस्कार के साथ राम राम मारा किसान साथियों, एक बार फिर हाजिर है तुम्हारा भाई सुमित कुमार थम सबका बीच में। तो सबसे पहला तो मैं ये आशा करूँ कि तुम सब चकाचक होगा। अपना आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र थी एक बार फिर थम सबका बीच में लेके आई गयो हूँ मैं ये अपना विशेष कार्यक्रम माटी री बात। सबसे पहला थम सबको स्वागत है, वंदन है, उके साथ घणो घणो अभिनंदन भी है। कार्यक्रम में आगे बढ़वा के साथ चला आज की तिथि पे। तो आज की तिथि की बात करा तो अपना अश्विनी शुक्ल पक्ष की चौथ हो गई है आज। आज तारीख है 14 अक्टूबर ने वार बुधवार। अब बात करा आज का दिन की तो आज भी घनसारा दिन मनाया जाए है जिनमें विश्व मानक दिवस और भारत में धर्म चक्र परिवर्तन दिवस जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाने की स्मृति में मनाया गया। तो एक अलावा अनिदन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी घनसारा देश और अन्य विदेश विशेष दिवस मनाया जाए है जिनमें राष्ट्रीय मिठाई दिवस, गंजा होने की आजादी को दिवस, राष्ट्रीय बदमाशी बंद करो दिवस, राष्ट्रीय जीवाश्म दिवस और भी ऐसा घनसारा दिन ना जाए। पर अपने इन सबसे कई लेना देना नहीं, अपने तो अपना जो दिन चली रहा अभी अभी पे ध्यान देना, क्योंकि अभी चली रहा है नवरात्रि का दिन और नवरात्रि को महत्व बहुत ज्यादा रहे अपने परिवार में अपना एरे मेरे, क्योंकि अभी कहीं 9-10 दिन तक माता जी की रोज आराधना होएगा, रोज पूजा पाठ होएगा और गरबा होएगा जिनमें एक ती एक गरबा करें, एक ती एक गाना पे पग थिर के गाने, गरबा चलेगा ने तरह तरह का घन सारा कार्यक्रम होएगा। एक साथ अभी बात करा किसान की तो किसान रबी की फसल की तैयारी में लगे हुए है। लई दई ने खेत के अंखाणों जोतड़ो बोनो और पानी चालू हुई है, सब चालू ही है काम। अपन आगे कार्यक्रम में ईपेज बात करवा रहा हाँ अपन, क्योंकि कहीं है नहीं अभी सोयाबीन से निपटी हो किसान, पर यो एक ऐसो टाइम रे में सोयाबीन ते निपटवा के बाद किसान के जरा सो भी टाइम नहीं मिलेगा अपन थोड़ा आराम कर ला। जैसे सोयाबीन ते खेत फ्री होया ने तत्काल खेत में ट्रैक्टर चलाओ ने दूसरी फसल की तैयारी करो या रबी फसल गेहूं चलाने की तैयारी करो। तो अपन आगे पे बात करवाना हाँ और अपन इन्हीं संदर्भ में अपना कृषि विभाग का एक वैज्ञानिक जानकारी भी लांगी, अपनी भेंटवार्ता भी सुनांगी कि कैसे रबी की फसल में किन किन बात को ध्यान रखना चाहिए, किन किन बात की सावधानी रखनी चाहिए, इन सब बात पे अपन बात करवाना हाँ। पर उका पहला जैसो कि तुम्हारे मानना में कि अपन अपना कार्यक्रम के शुरू करवा का साथ मुख्य रूप से मालवी समाचार सुना हाँ। तो आज भी का श्रृंखला के तोड़ा आओ अपना कार्यक्रम में आगे बढ़वा के साथ चला तुम्हारे आज का मुख्य मालवी समाचार पे। नमस्कार, आकाशवाणी उज्जैन ते प्रस्तुत है मालवी समाचार।

नमस्कार, समाचार के साथ मैं तुम्हारा भाई सुमित कुमार। सबसे पहला बुलेटिन का मुख्य समाचार। प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उमरिया जिला का गुरवाई गांव में लाडली बहना योजना की 41 किस्त जारी कर दी है। उसके बाद प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना को लेकर आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करी गई। और खंडवा में जल्द ही एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह में आने की घोषणा करी है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक लेख साझा करियो है। अनिमे लेख में देश की शासन व्यवस्था में कल्याण की आगे बढ़ी के लोग के सशक्त

बढ़ाने पर जोर दियो गयो है। श्री मोदी ने बोलियो है कि स्वच्छता, गैस कनेक्शन, स्वास्थ्य सेवा और ऋण सुविधाओं के जरिए लोगों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश करी जा रही है। उन्होंने अनिकेत 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य का अहम हिस्सा बताया है। श्री सिंधिया ने अपना लेख में बोलियो है कि देश की प्रगति का असली पैमानो हर नागरिक तक सुविधा पहुंचाना है और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी बनाना है। अब बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उमरिया जिला का गुरवाई गांव में लाडली बहना योजना का 41वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं का खाता में 1500 रुपया प्रति महिला का हिसाब से राशि ट्रांसफर करी गई है। अनेक साथ पात्र लाडली बहना के 450 रुपये में गैस रिफिल करने का अनुदान राशि भी दी गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 144 करोड़ रुपये से ज्यादा का 136 विकास कार्य को लोकार्पण और भूमि पूजन भी करियो है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आज मुख्यमंत्री यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम का तहत चाइनीज सीएम फेलोज का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करी है। उन्होंने बोलियो है कि प्रदेश का 55 जिला में चुने गया युवा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का मूल्यांकन करेगा और कमियां की दूरी करने की मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने बतायो है कि वर्ष 2027 का युवा वर्ष का रूप में मनाया जाएगा, जिसमें युवाओं की अहम भूमिका रहेगा। प्रदेश का अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने आज भोपाल में 16 नव नियुक्त अधिकारियों के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इनमें 8 सहायक कार्यपालन अधिकारी और 8 क्षेत्राधिकारी शामिल है। मंत्री ने बोलियो है कि अधिकारी अनुसूचित जाति वर्ग का लोग के शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का साथ सरकारी योजना का लाभ पात्र हितग्राही तक पहुंचाएगा। प्रदेश सरकार ने काले रात ते बड़ो प्रशासनिक फेरबदल करता हुआ 11 जिला का कलेक्टर समेत कई IAS अधिकारी को तबादला कर दिया है। रघु सुखवीर सिंह के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया, जबकि उनके PWD का अतिरिक्त प्रभार भी मिलो है। भरत यादव के जनसंपर्क विभाग का सचिव का जिम्मेदारी सौंपी गई। माझ, हरदा, नर्मदापुरम, भालाघाट और सिंगरौली में नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लेके आज भोपाल में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करी गई। इनमें पात्र विद्यार्थी के छात्रवृत्ति देने और आवेदन प्रक्रिया के आसान बनाने पर चर्चा हुई है। योजना का तहत चयनित विद्यार्थी के कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर साल 12,000 रुपये यानी कुल 48,000 रुपये की मदद मिले है। इगले अभिभावक की सालाना आय 3.50 लाख रुपया मतलब 3.5 लाख रुपये तक और कक्षा 7वीं में कम से कम 55% अंक होना जरूरी है। खंडवा में जल्दी एयरपोर्ट बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने काले राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह में अनेक की घोषणा करी है। उन्होंने बोलियो है कि अनेका क्षेत्र का विकास का साथ ओंकारेश्वर आने वाला श्रद्धालु और पर्यटकों के भी सुविधा मिलेगा। समारोह में अभिनेता रघुवीर यादव के वर्ष 2026 का राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान दियो गयो है। उन्होंने 5 लाख रुपये की सम्मान राशि, प्रस्तावित पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट करियो गयो है। अब बात करें मौसम की, तो प्रदेश में 15 से 17 अक्टूबर का बीच मौसम बदलने वालों है। प्रदेश का 20 जिला में आंधी, गरज चमक और बारिश की संभावना है। 15 और 16 अक्टूबर के ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में असर दिखेगा, जबकि 17 अक्टूबर के रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग में बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में फिलहाल बारिश को कोई अलर्ट नहीं है। अब कुछ समाचार विस्तार संक्षेप में। आगरमालवा जिला पंचायत CEO BS सोलंकी ने बड़ौद जनपद पंचायत में ग्रामीण विकास योजना की समीक्षा करी है। दाहा जिला में राष्ट्रीय अवकाश की तारीख में बदलाव किया गया। कलेक्टर ने 21 अक्टूबर के दशहरा का दूसरा दिन अवकाश निरस्त करके अब 10 नवंबर के गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन स्थानीय अवकाश घोषित करियो है। झाबुआ में पुलिस सुनवाई का दौरान SP देवेंद्र पट्टीदार ने 37 आवेदकों की शिकायत सुनी, समय सीमा में निष्पक्ष कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। मंदसौर में कल कलेक्टर दिव्यांग सिंह ने जनसुनवाई में 64 आवेदन पर सुनवाई करेंगे, संबंधित अधिकारी के निराकरण करने का निर्देश दिया है। देवास जिले का कन्नौत विकासखंड का ग्राम कसुमिनिया में 16 अक्टूबर के मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर लगाया जाएगा। तो ये था आज का मुख्य मालवी समाचार।

0: ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: तो समाचार का पहले अपन बात कर रहे थे किसान का जीवन में भी कहीं चली रहे है। तो देखो, किसान का जीवन में 12 महीना 24 घंटा कहीं ना कहीं चलते रहे, ऐसो तो एक दिन नहीं रहे जिन किसान बिल्कुल फ्री बैठो रहे। गर्मी का सीजन में भी अपन सब फ्री बैठा रहा, किसान कहीं ना कहीं तुम्बो करते रहे हो, कहीं खेत का बागर साही करेगा, कहीं खेत का चारों काटेगा, कहीं खेत की मेड़ साफ करेगा, कहीं अगर पानी होएगा तो उसमें फसल करने लग जाएगा, सब्जी वब्जी बोने लगी जाएगा। तो किसान ने पूरे जो 12 महीना 24 घंटा व्यस्त हो रहे हैं। तो अभी जो किसान है सोयाबीन की फसल से निपटी गयो है और अब लई दई ने लगी गयो है वो गहूं चना की तैयारी में, यानी कि रबी की फसल की तैयारी में। और उकाले किसान अपना खेत के आंकी रो है, बोई रो है, फिर उनमें पाना चालू करी रो है। और इन बार किसान के शुरुती एक सलाह देता आया है, क्योंकि इन बार बारिश फसल का अनुकूल नहीं हुई है। तो इकाले किसान हमेशा फसल चयनित करता समय एक बात को ध्यान रखे कि आनी बार ऐसी फसल लेनी है अपने जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे दे है। क्योंकि तुम्हारे मालूम है नहीं कि कम पानी में अगर अपन ज्यादा पानी वाली फसल, यानी कि अपन ने 10 बीघा जमीन है उन्हें 8 बीघा में लहसुन लगाई दी, उन्हें पानी नहीं अपना गने, तो ऐसी समस्या खड़ी हुई उसका पहला मैं जागरूक कर दूं तुम्हारे के अगर पानी नहीं पर्याप्त नहीं है तुम्हारे घर, तो उसका पानी का अनुकूल अपना सिंचाई साधन का अनुकूल खेती करनी है। ज्यादा बात में नहीं भरनी अपने अलग फसल के, क्योंकि नुकसान नहीं होगा तो अगले साल और ज़्यादा कर देंगे अपन। पर पिछला साल का अनुमानित इन बार फसल को रकबो घटाना है, और कम पानी वाली फसल जैसे कि चना, मसूर, अलसी, इन पे अपने ज़्यादा जानो है। तो इस पे अपन आगे बात करवा रहा हाँ, पर उसका पहला क्यों नहीं अपन कार्यक्रम की शुरुआत एक गीत से कर ला, तो आओ सुना एक अच्छा सो गीत।

0: यार ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
1: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
0: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
2: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो किसान भाइयों, मालवा अपनी जो मालवा की धरती है, खेती बाड़ी के लिए जानी जाए है। इनमें किसान अपनी मेहनत, लगन और पसीना की धरती माता की गोद ती सोना उखाड़ ले है। किसान के लिए खेत खाली पड़े हो तो भी अगली फसल की तैयारी मन में चलती रहे है। जब खरीफ की फसल घर आवा लगी जाए, सोयाबीन की कटाई पिटाई पूरी हुई जाए, तब किसान भाई अगली फसल यानी रबी की तैयारी में जुटी जावे हैं। कोई खेत की जुताई कराए वे हैं, तो कोई बीज जुटावे हैं, तो कोई खाद और पानी की व्यवस्था में लगी जावे हैं। तो मालवा में रबी की फसल की किसान की आजीविका को एक बड़ो आधार रहे हैं। गेहूँ, चना, मसूर, सरसों और जो जैसी फसल खेती में ले रहावे, तो इन खातिर किसान ने समय पर तैयारी करनी जरूरी है। खेत में मेहनत तो हर किसान करे है, पर मेहनत का साथ सही समय, सही जानकारी और सही तरीका ती जुड़ी जानो तो फसल की बढ़वार अच्छी होने की संभावना बढ़ी जावे है। अब खरीफ की फसल कटवा की बेला चली गई है। अब किसान भाई सोयाबीन निकाली में खत्म भैया फिरी, तो कई किसान खेत खाली करके अगली फसल की तैयारी करवा लग गया है। इन्हीं वक्त किसान ने अपना खेत की मिट्टी, पानी की उपलब्धता, बीज की किस्म और मौसम की स्थिति के ध्यान में रखना चाहिए। रबी की फसल की तैयारी खाली बीज बोवा तक सीमित को नहीं रहे, बल्कि इसकी शुरुआत खेत की सफाई और जमीन के तैयार करवाती होवे है। खेत की तैयारी में सबसे पहली बात आवे है कि जमीन की हालत। खरीफ की फसल काटा का बात जो खेत में फसल का डंठल रहे, खरपतवार और दूसरी वनस्पति बची रहे है, किसान भाई खेत की जरूरत अनुसार इनकी व्यवस्था करे है। खेत में जब नमी हुई जाए, जब जुताई करवाती मिट्टी में भरभूरी करवा में मदद मिले है। जुताई कितनी कभी करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए और खेत में कद तैयार करना चाहिए, एको फैसलो मिट्टी की किस्म और खेत की हालत देखी करना चाहिए। हर

0: में एक जैसो तरीको काम करे है ये जरूरी नहीं रहे। अपना मालवा में काली मिट्टी खूब मिले है। काली मिट्टी में नमी रोकवा की अच्छी क्षमता हुई है, पर ज़्यादा गीलापन हो तो जुताई और मशीन को काम मुश्किल हो सके है। इन अणी का लिए किसान भाई के खेत में काम करवा के पहला मिट्टी में नमी देखनी लेना जरूरी है और खेत की हालत देखी के काम करना समझदारी को काम भी हुए है। जमीन तैयार करवा में खेत की समतलता पर भी ध्यान देना चाहे। खेत समतल होएगा तो सिंचाई को पानी एक सार फेरी जाएगा। ऊंची नीची जमीन में कई जगह पानी ज़्यादा भरी जाएगा, कई जगह कम पहुँचेगा तो फसल की बर्बाद पर असर पड़ सके है। किसान भाई खेत में पानी निकास की व्यवस्था पर ध्यान देना चाहे। मतलब यो है कि खासकर जब मिट्टी पानी भराव की समस्या रहे, रबी की फसल में जरूरत अनुसार पानी मिलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी खेत में अतिरिक्त पानी के बाहर निकालना भी है। अब बात करा बीज की, तो किसान की पूरी मेहनत का आधार बीज हुई है। बीज खरीदता वक्त किसान के प्रमाणित बीज किस्म को नाम, अंकुरण क्षमता, पैकिंग की तारीख और बीज की शुद्धता संबंधी जानकारी जरूर देखनी चाहिए। भरोसामंद विक्रेता से बीज लेना चाहिए। अपनी जमीन और मौसम का हिसाब से उपयुक्त किस्म चुनवा का खातिर किसान कृषि विभाग या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ भी फैसला ले सकता है। गेहूँ बोवा वाला किसान भाई गेहूँ की किस्म चुनता वक्त खेती में किसान की मतलब खेत में सिंचाई की सुविधा, बोने को समय और जमीन की स्थिति के भी ध्यान में रख सके हैं। जब सिंचाई की अच्छी सुविधा हो उन खेत में अलग अलग किस्म अच्छी रहे हैं, जबकि कम पानी वाली जमीन खातिर दूसरी किस्म ज़्यादा अनुकूल नहीं हो सके। एक खातर पड़ोसी किसान के देखी ने बीज चुनवा की जगह अपनी जमीन की जरूरत समझी ने बीज चुनो चाहें। चना मालवा की एक महत्वपूर्ण रबी की फसल हो गई है, हमारे सबके मामले में है। कई किसान भाई गेहूँ का साथ चना भी बोए है। चना अपेक्षाकृत कम पानी में उगने वाली फसल है, पर इन खातिर भी खेत की तैयारी, सही बीज, समय पर बोनी और खरपतवार नियंत्रण पर ध्यान देना जरूरी हो है। और चना बोवा से पहले भी चना बोवा का पहला भी पानी भरवा की समस्या हो तो इनकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। फसल की किस्म और बोवनी की दूरी कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार तय करनी चाहिए। तो आओ सुनाए हमारे अपना एक कृषि वैज्ञानिक केंद्र थी कृषि विशेषज्ञ कमलेश कुमार राठौर से करी हुई भेंटवार्ता, जिनमें उन्होंने बताया है कि कैसे अपन रबी की फसल की तैयारी और सावधानी रख सकता। तो सुनो यह भेंटवार्ता का बाद बात करेंगे।
1: नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी उज्जैन में।
2: नमस्कार समित जी, मैं कमलेश कुमार राठौर, सहायक संचालक कृषि कार्यालय उप संचालक कृषि, आप सभी का किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
1: सर एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी वर्तमान में किसान रबी की फसल की तैयारी में लगा हुआ है
2: जी,
1: तो ऐसे में कृषि विभाग किसानों को क्या सलाह देता है?
2: देखिए किसान भाइयों को हमारे कृषि विभाग की तरफ से सलाह है, हम देख रहे हैं कि गत वर्ष लगभग 865 mm बारिश हुई थी, जबकि इस वर्ष लगभग 623 mm बारिश कम हुई है। लगभग पिछले साल की अपेक्षा 28% वर्षा कम हुई है। कम वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं, कृषि विभाग सलाह देता है कि किसान भाइयों के पास उपलब्ध जल संसाधन को ध्यान में रखते हुए आगामी रबी सीजन की फसल की बुआई करें। हम ये जानते हैं कि उज्जैन जिला में गेहूं बहुत आयात में लगाया जाता है। गत वर्ष का अगर हम डाटा देखें तो लगभग 460,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल की बुआई की गई थी। उज्जैन का गेहूं, सिंचित गेहूं बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन इस वर्ष हम देख पा रहे हैं कि वर्षा कम है। तो कृषि विभाग के माध्यम से आपको सलाह है कि अपने पास उपलब्ध जल संसाधन को ध्यान में रखें, पूर्ण रूप से सिंचित गेहूं न लगाते हुए कम पानी चाहने वाले गेहूं की प्रजातियां लगाएं, जैसे अपने क्षेत्र में लोकवन HI 1531 हर्षिता के नाम से काफी प्रसिद्ध है, HI 16-5 पूसा उजाला, पूसा बकुला, पूसा सरबती, हर्षिता पूर्णा, ये मुख्य वेराइटियां हैं जो 1-2 पानी में भी अच्छा उत्पादन देगी। साथ ही कुछ किसान भाइयों के पास और भी कम पानी है तो वो गेहूं की फसल न लगाते हुए चना, मसूर और सरसों की फसलों की बुआई कर सकता है।
1: सर जैसा कि आपने बताया कि गेहूं के वैकल्पिक तौर पे आप दूसरी फसल पर जा सकते हैं, तो इसमें किसानों को क्या सलाह है, कौन सी फसल को अपना सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, जैसे कि गेहूं में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है

0: तो मैंने जैसे पूर्व में आपको बताया कि कम पानी वाली फसलों का चयन करें। दूसरा, यदि और भी कम पानी है आपके पास तो गेहूं फसल के स्थान पे आप चना फसल ले सकते हैं, रायडा लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं। जिले में अभी जो हम किसानों से चर्चा कर रहे हैं, फील्ड में हमारे मैदानी अधिकारी घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं, किसानों से चर्चा कर रहे हैं, तो किसानों का रुझान भी कम पानी को देखते हुए रायडा और सरसों का भी काफी एरिया लग रहा है। किसान भाई इसकी बुआई भी कर दी है। तो ये जो तीन फसलें हैं, चना, रायडा, मसूर और अलसी, ये जरूर लगाएं किसान। अपने पास उपलब्ध सिंचाई संसाधनों को ध्यान में रखकर ही फसल की बुआई करें।
1: सर, जैसा कि हम जानते हैं कि उज्जैन जिले के एवं आसपास के किसान लहसुन, प्याज, आलू जैसी फसलों पे अपना रुझान ज्यादा रखते हैं, ऐसे में इस वर्ष वर्षा की स्थिति इन फसलों के अनुकूल नहीं लग रही है, तो ऐसे में किसानों को क्या राय देना चाहेंगे आप?
0: जी बिल्कुल सुमित जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। हम उज्जैन जिला में लगभग आलू, लहसुन और प्याज का करीब करीब 60 से 65 हजार हेक्टेयर हर क्षेत्र में हर वर्ष इसका रकबा रहता है, लेकिन इस वर्ष वर्षा कम हुई है। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को अपने जो सिंचाई के साधन है उसको ध्यान में रखकर इन उद्यान की फसलों का चयन करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम अधिक मात्रा में या गत वर्ष की तरह आलू, लहसुन, प्याज लगा सकते हैं। इसको हमारे को क्षेत्र को और इसका रकबा हमारे उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये फसलें पानी बहुत ज्यादा चाहती है, पानी ज्यादा लगता है। तो हमारी जो पानी की स्थिति को देखकर ही इनका रकबा निर्धारित करें।
1: वर्तमान की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग क्या योजनाएं चला रहा है?
0: जी देखिए, वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर हम पिछले 15 से 20 दिवस से मैदानी स्तर पे हमारे अधिकारी कर्मचारी सभी लोग मैदान में हैं और किसानों को सलाह दे रहे हैं कि कम वर्षा है, ये निश्चित है कम वर्षा है, लेकिन हमको कम वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखकर ही फसलों की बुआई करना है। इसके लिए हमारे मैदानी अधिकारी गांव गांव जाकर किसान चौपाल लगाकर किसानों को सलाह दे रहे हैं, उनको तकनीकी मार्गदर्शन दे रहे हैं। स्वयं उपसंचालक कृषि ने भी कम से कम 10 से 15 दौरे करे हैं, उनके साथ मैं भी गया हूँ। हमने भी किसानों के साथ चर्चा की है, किसानों को समझाइश दी है कि कम वर्षा जरूर है लेकिन इससे घबराए नहीं। हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, किसानों के पास जो उपलब्ध सिंचाई के संसाधन है, उसका किस प्रकार से अधिकतम उपयोग किया जा सके, ये सारी सलाह हम किसान भाइयों को दे रहे हैं।
1: सर, हमें ये बताइए, जब आप फील्ड में जा रहे हो तो किसानों की क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपसे?
0: जी हम फील्ड में जा रहे हैं, किसान भाई हमको अवगत करा रहे हैं और हमने खुद भी वहां पे फील्ड में देखा है कि कम वर्षा है तो जो गत वर्ष दूसरी या तीसरी सिंचाई करते थे तब खेत मतलब कुएं का पानी टूटता था या बोरवेल में कम पानी आता था। अभी किसान भाई हमको बता रहे हैं कि साहब पहले पलेवे में ही पानी इतना कम होगा कि जो दूसरी सिंचाई में होता था वो अभी से कम हो रहा है। दूसरा, किसान भाई ये बता रहे हैं कि साहब हमने फसल की बुआई शुरू कर दी है, आप लोगों के मार्गदर्शन में हम जो फसल की बुआई कर रहे हैं उसमें चना, मसूर का एरिया काफी बढ़ रहा है, ये किसान भाइयों ने भी हमको अवगत कराया है।
1: सर, इसमें आपकी क्या कार्य योजना है इस बार?
0: देखिए, हमारे मैदानी अधिकारी द्वारा जो फील्ड में जा रहे हैं, हम किसानों को हमारी जो कार्य योजना बनाई है कि सबसे पहले हमको फसल विविधीकरण करना है, ज्यादा पानी चाहने वाली फसलों के स्थान पर कम पानी चाहने वाली फसलों को बढ़ावा देना। दूसरा, समय पर बुआई करना। इसमें किसानों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि आपके पास जो उपलब्ध अभी वर्तमान में जो नमी है या उपलब्ध संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग आप कैसे कर सकें। तीसरा, बीज प्रबंधन की व्यवस्था में हम बता रहे हैं कि कम समय अवधि वाली फसलें लें। तीसरा, सिंचाई प्रबंधन में आप अधिक जल का अधिक से अधिक उपयोग कैसे कर सकें, इसके लिए सिंचाई में स्प्रिंकलर ड्रिप के उपयोग को बढ़ावें। तीसरा, एक महत्वपूर्ण चीज है कि प्राकृतिक खेती, आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है उसमें कम से कम 1 से 2 बीघा में स्वयं के उपयोग के लिए प्राकृतिक खेती करें। तीसरा, आप उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं वो भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग करें। तीसरा, हमने अभी आज हमारे यहाँ पे सभी मैदानी अधिकारियों की बैठक है इस संदर्भ में, आगामी सीजन में हम किसानों को और क्या सलाह दे सकते हैं, इसके लिए हम आज यहाँ पे वर्कशॉप भी कर रहे हैं। वो भी मैदान में जाकर आपको ये सारी जानकारी, किसान भाइयों को सारी जानकारी देंगे कि किसानों को कम पानी वाली फसलों को प्रेरित करना, वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग हो सके, इन सब पर चर्चा करेंगे।
1: सर, हमारे किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती के बारे में कुछ बताइए।
0: जी बिल्कुल सुमित जी, बहुत अच्छा सवाल है और कृषि में ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। कृषि विभाग किसान भाइयों को सलाह देता है कि आपके पास जो धारित रकबा है उसमें से कम 10%, या हम कहें कि कम से कम 1 से 2 बीघा में प्राकृतिक खेती जरूर करें। प्राकृतिक खेती सबसे पहले स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, मृदा के स्वास्थ्य के लिए और वातावरण की शुद्धता के लिए बहुत जरूरी है। हम कृषि विभाग की तरफ से आप सभी किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि स्वयं के उपयोग के लिए प्राकृतिक खेती जरूर करें। प्राकृतिक खेती का सबसे बड़ा जो फायदा रहेगा कि हम रसायन मुक्त जो कृषि उत्पाद प्राप्त होगा वो खाएंगे, स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा, खेती में हम उर्वरक नहीं डालेंगे तो उसका भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तीसरा, हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा किसान भाई कहीं कहीं पे उर्वरक का उपयोग कर लेते हैं तो उसमें मृदा का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मृदा कठोर हो गई है। आप हम सब देखते हैं कि पहले मैं छोटे ट्रैक्टर से ही खेत को काम कर लेते थे, लेकिन आज 55 या 65 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर भी खड़े हो जाते हैं। ये सब मैं अधिक मात्रा में या असंतुलित मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया है, उसका दुष्परिणाम है। किसान भाइयों से अनुरोध है, कृषि विभाग अनुरोध करता है कि आप प्राकृतिक खेती कम से कम 1 से 2 बीघा में शुरुआत करें, स्वयं के उपयोग के लिए जरूर करें।
1: सर, अंत में आप हमारे किसान साथियों और हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: जी बिल्कुल सुमित जी, आपका जो आकाशवाणी मेगाहर्ट्ज वाला 102.5 पर जो ये कार्यक्रम होता है, किसानों के लिए आप तकनीकी मार्गदर्शन अलग अलग विभागों से, अलग अलग अधिकारियों से लेते हैं, ये बहुत अच्छा आपका सोच है किसानों के बीच में जागरूकता लाने के लिए। क्योंकि ये निश्चित है कि हर अधिकारी हर क्षेत्र में फील्ड में नहीं जा सकता है, लेकिन आपके माध्यम से उनकी सलाह किसानों तक पहुंच रही है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज का ये कार्यक्रम शाम को 7:20 से 8 बजे के बीच में चलेगा। किसान भाइयों से अनुरोध है अधिक से अधिक मात्रा में ये तकनीकी सलाह सुने, आगामी रबी सीजन के लिए बहुत ही आपके काम की जानकारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री महाकाल की।
2: दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
3: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
2: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
3: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
4: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
5: यार, ये E20 को लेकर क्या कंफ्यूजन है?
6: मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है। E20 को ऑटोमोटिव और फ्यूल टेस्टिंग एक्सपर्ट्स ने एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है, जिसमें कोई भी एबनॉर्मल इंजन वेयर ऑब्जर्व नहीं हुआ। फ्यूल सिस्टम मटेरियल्स को भी E20 कंपैटिबिलिटी के लिए इवैल्यूएट किया गया है, जिसमें क्लियर है कि E20 से इंजन नॉकिंग कम होती है और हाई ऑक्टेन वैल्यू की वजह से पिकअप भी बेहतर।
5: फिर तो नो कंफ्यूजन, ओनली कॉन्फिडेंस।
4: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
1: तो जैसे कि सर ने अपने सब बताई दियो है कि रबी की फसल में कहीं कहीं अपने ध्यान रखना है, कहीं कहीं सावधानी रखनी है, तो हमारे हिसाब से और कहीं चीज़ तो बची नहीं है कि किसान उनके जानकारी नहीं होएगा। तो आओ अपने कार्यक्रम में गानों और सुनना अपन, क्योंकि टाइम भी होने वाला है अपनों। तो सुनो ये गीत।

0: जहां आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: तो देखो आज का कार्यक्रम को मैं मतलब यो थो कि जो किसान रबी की फसल की तैयारी में लगे हुए है तो वो अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इन बार की बारिश की फसल का अनुकूल बारिश नहीं हुई पाई है तो ऐसा में किसान उन ध्यान रखे कि अपने कौन सी फसल बोनी है, कौन सी किस्म को चयन करना है और किन प्रकार अपना पास संसाधन है बारिश का, सिंचाई को संसाधन के ध्यान में रखे फसल के बोनो है। तो अब थोड़ा अपना टाइम भी होने वालों है तो मैं तुम्हारे से याद कहूँगा कि थम सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो, नवरात्र चली रहा है तो खूब एंजॉय करो, माता की खूब आराधना करो। अभी कबाद त्यौहार त्यौहार आने वाला है, दशहरा दिवाली कबाद शादी ब्याह चालू हो गया तो ये सब तो चलने ही वाला है लगातार। तो यूज कहना चाहूँगा मैं अंत में रोज कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चकाचक रहो और सुनता रहो FM 102.5 MHz पे आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र पे और हमारे दो यहाँ से इजाज़त जिसे मैं जाऊँ और आज को तुम्हारे सबके नमस्कार, जय श्री महाकाल के साथ शुभ रात्रि।

FM 102.5 MHz और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8 बजने को है, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए विशेष कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह, समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और

0: पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज जलेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में, पूरी जो कोस्ट लाइन है वहां पर भी सफल रहा है?
2: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो दो चार साल पहले, मेरे ख्याल से 2020 के आसपास, एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरीटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
0: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को, पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे अब 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
1: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है, वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले दो दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कॉमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी, ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है। इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है, अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो तो, ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं, 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी हैं, इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है, उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं, वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह हैं, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के और उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित हैं और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं, अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 MTPA मिलियन टन्स पर एनम था, और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है, और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
2: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में, ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है तो पहले तीन दिन में होता था, अभी एक दिन में तीन जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता तीन दिन में, तो उस हिसाब से टर्न ओवर पर शिप अगर देखे तो 3 times हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है, वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में, एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे आपने सही बोला मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये 3 पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
0: जी बिल्कुल, इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
1: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 95% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी ये स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबड़ जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इस सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
0: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो

0: आप नेवी में रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
1: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से, जब ये दुनिया में जब इनका हुतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं। और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा आगे। वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और हमारे जहाज कंटिन्यूअसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे। तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें जो नेवी के जहाज बन रहे हैं वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्टलेट डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार?
2: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है, वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो या रेलवेज के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह हैं उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहें कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सकें और उसमें अपना योगदान दे सकें।
0: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
2: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका, और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवेज 1 की बात हो रही है जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलाइन वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं हैं, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्टलेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स हैं वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलाइन वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए, और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलाइन वाटरवेज को आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास।
0: आपने बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको, ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
1: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जांपल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में, और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है ट्रिवेंड्रम में
0: जी,
1: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेंस जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्टेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती है।

0: जाती है। और जो स्वेज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विरिंजम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो
1: जी
0: ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है, और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका, वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 मिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्वेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज टू और फेज थ्री खत्म होएगा 2028 तक,
1: जी
0: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEU का होने का उद्देश्य है इस बात का।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर KD जोशी, डिफेंस एनालिस्ट, और प्रोफेसर राहुल मिश्रा, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर। गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है।
2: देखिए, ये जो परियोजना है सागर कांठा के तमाम जो जिले हैं, जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले, बल्कि उससे ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना की संकल्पना की गई, और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग, जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन बंदरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक,
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी एक बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
2: जी बिल्कुल, दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें। तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता, विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
0: जी सुनो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था, तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेस में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये एक डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है, और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जनसाधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से कि ये बहुत ही अच्छा एक, आप कह सकते हैं, एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा लोगों के लिए, वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
2: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5,000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल, जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ सहयोग किए, ये दोनों देश भी, वियतनाम और नेदरलैंड्स दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं, तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए। और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम, जो कि जिसकी अपनी 5,000 साल की एक ग्लोरियस उसका इतिहास है, उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी।
1: सो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं, 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये, मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047, उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच, कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
0: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए, बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं
1: जी,
0: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो। पांचवा जो पिलर है सागरमाला का,
1: जी
0: वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब

0: पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है
1: जी
0: और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का एमआईवी के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए एमएकेवी के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी। और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे वन बन रहा है जो वाराणसी और हल्दिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर वडोदरा तक। तो अभी आप देखें कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है, बाकी पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है। और ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
0: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की वो
1: जी
0: एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में।
1: जी
0: और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट रेंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें
1: जी
0: महाराष्ट्र में जो बन रहा है वो एक और पोर्ट है,
1: जी
0: गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा, जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से। तो
1: जी
0: आप
1: जी
0: देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे पूरी देश की पूरी जो लैंडमास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की सब जगह कहीं ना कहीं
1: बिल्कुल
0: मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है मुझे।
1: जी बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था के समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
2: धन्यवाद
0: जी, शुक्रिया।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, समुद्र, बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
4: अभी आप सुन रहे थे FM 102.5 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। रात के 8:35 हो रहे हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। आइए संगीत के सफर की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: भाई हर दिन 6-7 करोड़ व्हीकल्स पेट्रोल पंप्स पर फ्यूल भरवाते हैं। देश में लगभग 20 करोड़ टू व्हीलर्स और 3 करोड़ कार्स पिछले 2.5 साल से E20 पर चल रहे हैं।
1: सब तो बढ़िया चल रहे हैं।
0: वही तो, अगर E20 से वाकई कोई वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम होती तो अब तक सामने आती, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं।
2: इसलिए रूमर्स पर नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए।
3: भारत सरकार के उपक्रम, तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी।
4: ब्रेक से पहले आप सुन रहे थे दीवाना फिल्म का वो सुमधुर

संगीत जिसे अपनी आवाज़ दी थी कुमार सानू ने, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने और गीत के बोल लिखे थे समीर ने। आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं पूर्ण होता है। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। दोनों देशों ने व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें तुरंत बंद करने को कहा। महाराष्ट्र ने 305 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया। दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी। पैराग्वे में आनंद कुमार वेलकुमार ने विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट में रजत पदक जीत लिया है और हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी।
2: दूसरा बड़ा फैसला आज लिया गया है, वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन।

0: 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
0: दिव्यांग जनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है।
2: भारत जिस तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट, ऐसी हमारे पास कई संस्थाएं चाहिए जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई को सपोर्ट कर सके। इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, उसमें एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इन्फ्यूज किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना।
1: मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की है। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा।
0: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है।
0: रेलवे में मैसिव रिक्रूटमेंट चल रहा है, भर्तियां करीब 1,65,000 भर्तियां निकली हुई है जिसपे एग्जाम लगातार चल रहा है। अब तक करीब करीब 37,000 रोजगार पक्की नौकरी दी जा चुकी है रेलवे में इसी पिछले कुछ समय में ही। टोटल अगर 2014 से अब तक की देखें तो करीब 5.5 लाख भर्तियां रेलवे में की गई है।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को आर्थिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार कम हिस्सेदारी बनाए रखते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से विकास के अगले चरण को गति दे रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इससे न केवल बैंकिंग व्यवस्था मजबूत होगी बल्कि बैंकिंग सेवाएं वैश्विक मानकों से बढ़कर होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें।

0: जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। श्री मोदी ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत को जल्द पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जन समुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संबंधी लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें फौरन बंद होना चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद उड़ानों में व्यवधान आया है।
2: भारत और सऊदी अरब के बीच में काफी आवाजाही होती है, लेकिन हमारे जो एम्बेसी हैं वो एयरलाइन से, समुदाय से और जिनको जिस प्रकार का जो भी उनको मदद चाहिए वो करा रही है और हमारा मानना है कि सिचुएशन अगर बेहतर हो जाए तो लोग वापस आ सकेंगे घर। कुछ जहाज चल रही है, हमारे जो भारतीय जहाज थी उन पे डिस्ट्रप्शन आया है, लेकिन सऊदी अरेबिया की तरफ से जो उनके हवाई जहाज की कंपनियां हैं वो फ्लाइट्स चल रही हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुओं, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र जनसेवा से देश सेवा रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष श्रृंखला में आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय ने किस तरह इस दृष्टिकोण को साकार किया है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, जिसमें देश के सभी प्रधानमंत्रियों के काम और देश के विकास में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय दिखाता है कि कैसे भारतीय लोकतंत्र ने समाज के हर वर्ग के नेताओं को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर दिए हैं। दो भवनों में फैला यह आधुनिक डिजिटल संग्रहालय भारत के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक परंपराओं और विकास यात्रा की झलक प्रस्तुत करता है। संग्रहालय में वीरांगनाओं की महागाथा नाम से एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें उन वीर महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इस संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सभी सरकारों की साझा विरासत और देश के विकास में उनके योगदान का प्रतीक है।
4: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद बनी प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
3: श्रीलंका के न्यायमूर्ति एस थुरैराजा ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के दौरे के दौरान भारत के लोकतंत्र और देश के विकास में प्रधानमंत्रियों की भूमिका पर अपने विचार साझा किए।
5: हम भारत के मुख्य न्यायाधीश के निमंत्रण पर दिल्ली आए। मैं सोच रहा था कि जाऊं या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो बहुत कुछ मिस कर देता। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आयोजक शानदार हैं और निर्देशक तथा वो बच्चे जो हमें गाइड कर रहे थे वे भी बेहद खुशमिजाज हैं।
3: नई दिल्ली के तीन मूर्ति मार्ग पर स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के सभी प्रधानमंत्रियों की सोच, नेतृत्व और योगदान को सामने लाकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है।
6: हमारे जो लक्ष्य है, उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का

0: अधिकरण वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती इस धरती को इस माटी को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना है। हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते कि अनियंत्रित केमिकल फर्टिलाइजर कीटनाशकों का उपयोग करके माटी के स्वास्थ्य खराब कर दें।
1: महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखा ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दीपावली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुंबई में श्री फडणवीस ने कहा कि सूखा राहत रियायतें सभी 305 प्रभावित तालुकों के किसानों तक पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए उचित उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया है। नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। आनंद कुमार वेल कुमार ने पैराग्वे में विश्व स्केटिंग खेलों में 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आनंद कुमार 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 248 रन का लक्ष्य दिया है। साई होप ने नाबाद 102 रन की पारी खेली। अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और अक्षर पटेल ने एक विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान के साथ ओले भी गिर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में अब तक 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 साल के लिए बढ़ाया। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड और सहायता दरों में संशोधन। सरकार ने IDBI बैंक के पुनर्गठन और रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने सऊदी अरब में नागरिक अवसंरचनाओं पर हमलों को अस्वीकार्य बताते हुए इन्हें फौरन बंद करने को कहा। और हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को दिया 248 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वर्षा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Cabinet approves continuation of National Social Assistance Program for 5 years, revises eligibility criteria and assistance rates for disability pension beneficiaries. Government gives nod to strategic restructuring of IDBI Bank and 78-day bonus for railway employees. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's commitment to building a forward-looking strategic partnership with Canada. Both countries review progress in ties with focus on trade, energy and security. India calls attacks on civil infrastructure in Saudi Arabia unacceptable, urges immediate cessation. Maharashtra declares 305 talukas drought hit, announces initial aid of 5,000 rupees for each farmer before Diwali. India's Anand Kumar Vel Kumar wins silver medal in men's 1,000-meter sprint at World Skating Games in Paraguay. And in men's cricket, fourth T20 international between India and West Indies underway in Hyderabad. The Union Cabinet has approved the continuation of the National Social Assistance Programme for 5 years from 2026-27 to 2030-31 with an outlay of 53,428 crore rupees. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement while briefing the media after the Union Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi today. The approval also includes renaming of the scheme and its subsidies.

0: और सभी 36 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख मुस्तफिदीन को इससे फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि माजूरी पेंशन स्कीम के तहत अब मुस्तफिदीन के लिए 79 साल की उम्र तक 375 रुपये और 80 साल या उससे ज़्यादा की उम्र के लिए 625 रुपये होंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि बुजुर्ग शहरियों और बेवाओं के लिए पेंशन स्कीमें उनके कुनबे को फ़ायदे की स्कीम के साथ इसी तरह जारी रहेंगी।
1: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांग जन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3 करोड़ 20 लाख हो जाएगी।
0: काबीना ने IDBI बैंक की अहम तंजीमें 9 को भी मंजूरी दी है। मीडिया को तफसील बताते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि भारत सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तंजीमें 9 शुदा इदारे में मुश्तरका तौर पर 34% हिस्सेदारी रहेगी। मरकजी काबीना ने 11,40,000 से ज्यादा अहल रेलवे मुलाजमीन के लिए उनकी कारकर्दगी को तस्लीम करते हुए 78 दिन के कारकर्दगी से मुंसलिक बोनस को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि ये बोनस त्योहारों से पहले अहल रेलवे मुलाजमीन को सालाना तौर पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस साल भी 78 दिन की उजरत के बराबर ये रकम गैर गजट रेलवे मुलाजमीन को दी जाएगी।
1: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस, 78 दिनों का बोनस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2,009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: 78 दिन के लिए हर अहल मुलाजिम को दिया जाने वाला ज्यादा से ज्यादा बोनस 17,951 रुपए है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी की जानिब से IDBI बैंक की स्ट्रेटेजिक तंजीम 9 की मंजूरी के साथ ही आज भारत की इस्लाहाती पेशरफ्त ने नया संग मील उबूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत अब बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के जरिए बैंक की तरक्की के अगले मरहले की राह हमवार कर रही है, जबकि बैंक में अपनी अकलियती हिस्सेदारी बरकरार रखेगी। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि इस इकदाम से न सिर्फ बैंकारी के निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी बल्कि बैंकारी खिदमात को आलमी मियार से भी आगे ले जाने में मदद हासिल होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ एक तामीरी और कलीदी शराकतदारी की खातिर भारत के अजम का इरादा किया है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के अवाम को वाज़ह फवायद फराहम करना है। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में कनाडा की वजीर खारिजा अनीता आनंद से मुलाकात की और बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के सिलसिले में जारी कोशिशों का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने तजारत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबतों समेत अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने बाहमी राबतों में मजबूती की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ये ठोस नतायज में तब्दील होने चाहिए, जिनमें जामे इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदा CEPA के सिलसिले में बातचीत जल्द मुकम्मल होना शामिल है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर भी नजरियात का तबादला किया। इससे कबल दिन में कनाडा की वजीर खारिजा ने कौमी राजधानी में वजीर खारिजा डॉ एस जयशंकर और हुनरमंदी के फरोख और कारोबार के वजीर मुमलिकत जयंत सिंह से बातचीत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की मौसीखी, रक्स, सिनेमा और खान पान दुनिया भर में मुआशरों के साथ मुल्क के मुसलसल राबते का अहम वसीला हैं और जोर देकर कहा है कि मुल्क के सकाफती विरसे को आलमी सतह पर ज्यादा से ज्यादा तस्लीम किया जा रहा है। वजीर आजम ने आज नई दिल्ली में दुनिया भर में भारत के सकाफती राबतों से मुतालिक 3 रोजा बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में एक तहरीरी पैगाम में ये बात कही। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते में कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, तवानाई के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, सकाफती विरसे को तहफ्फुज़ फराहम करना और पानी की यकीनी फराहमी में इजाफा करना है। इस मौके पर वो इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वजीर आजम लेह में कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा नई मुसाफिर टर्मिनल बिल्डिंग का इफ्तिताह करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर

0: की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये मुसलसल आगे भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार साल 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत मुसलसल काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय जैसी पहलों के जरिए इस नजरिए को किस तरह की शक्ल दी जा रही है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2022 में प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह किया था। ये म्यूजियम मुल्क की तरक्की में सभी वज़राए आज़म के तआवुन को उजागर करता है। मरकूजा म्यूजियम ये दिखाता है कि कैसे भारतीय जमहूरिया ने मुआशरे के हर तबके से आने वाले रहनुमाओं को मुल्क साजी में तआवुन करने के मौके फराहम किए हैं। दो इमारतों में फैला ये जदीद डिजिटल म्यूजियम यहां आने वाले लोगों को भारत की सियासी तारीख, जमहूरी रवायात और तरक्की के सफर से रोशनास कराता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसे तमाम हुकूमतों के मुश्तरक तआवुन और मुश्तरक विरसे की जीती जागती अलामत से ताबीर किया था।
2: देश आज जिस ऊंचाई पर है वहां तक उसे पहुंचाने में स्वतंत्र भारत के बाद प्रत्येक सरकार का योगदान है। मैंने लाल किले से भी ये बात कई बार दोहराई है। आज ये संग्रहालय भी प्रत्येक सरकार की साझा विरासत का जीवंत प्रतिबिंब बन गया है।
1: आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया है और मगरबी एशियाई मुल्क में हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कल आरामको हेडक्वार्टर पर हुए हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि भारत शहरी बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की मजम्मत करता है और उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए उन्हें फौरी तौर पर रोकने पर जोर दिया। जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत मुल्क के इख्तदार आला के दिफा के सिलसिले में सऊदी अरब के अवाम और हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार करता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत उम्मीद करता है कि खित्ते में जल्द अमन और मामूल के हालात बहाल होंगे। इंसानी हकूक से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर के दफ्तर की जानिब से कौमी राजधानी में सूरत हाल पर हालिया रायजनी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए जनाब जायसवाल ने इस तशवीश को गैर जरूरी और नाकाबिले कबूल करार दिया। आज रियाज में भारतीय सिफारतखाने ने सभी भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो मुसलसल मकामी हुकाम की हिदायत की पाबंदी करें, फजाई हमले की सूरत में घरों के अंदर रहें और सऊदी अरब में मौजूदा सूरत हाल के सिलसिले में किसी वीडियो या खबर को शेयर करने से गुरेज करें। रियाज में शाह खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर परवाजें अब भी मुअत्तल हैं। महाराष्ट्र में रियासत के कुल 358 तालुकाओं में से 305 तालुकाओं को सूखे से मुतासिर करार दिया गया है। सूखे से मुतासिर इलाकों की फेहरिस्त में मजीद 40 तालुके के इजाफे के बाद सूखे से मुतासिर तालुके की तादाद मजमूई तौर पर 85% हो गई है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि मुतासिर इलाकों में किसानों को दिवाली से पहले इब्तदाई इमदाद के तौर पर 5,000 रुपये बराह रास्त उनके बैंक खातों में भेजे जाएंगे। साल 2015 से 2024 के दरमियान भारत में तपेदिक टीबी के नए केसेस में आलमी सतह पर 12% की कमी के मुकाबले 21% की कमी दर्ज की गई है। आलमी इदारा सेहत की आलमी टीबी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टीबी के इलाज से मुतालिक कवरेज 92% तक पहुंच गई है, जबकि आलमी सतह पर यह कवरेज 78% है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
3: भारत में टीबी के केसेस में कमी से मुल्क भर में टीबी की रोकथाम और कंट्रोल से मुतालिक पहलुओं को मुस्तहकम करने के लिए अवामी सेहत से मुतालिक मुसलसल अकदामात मजबूत अवामी शिरकत और अहदबस्तगी की अक्कासी होती है। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 28 करोड़ से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 20 लाख से ज्यादा अफराद टीबी की रोकथाम से मुतालिक इलाज हासिल कर चुके हैं और 5,70,000 नए निक्षय मित्राज इस पहल से जुड़े हैं। टीबी को जड़ से ख़त्म करने से मुतालिक कौमी प्रोग्राम के तहत सेहत के तमाम अवामी मराकज और निजी मराकज पर टीबी की मुफ्त स्क्रीनिंग और इलाज से मुतालिक खिदमात फराहम की जाती है। नई दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर दिया है कि भारत और आसियान के दरमियान एक पुरमन मुस्तहकम और आज़ाद भारत बहरुल काहिल खित्ते से मुतालिक वाज़े मफादात मुश्तरक हैं। जनाब सिंह आज नई दिल्ली में आसियान इंडिया दिफाई थिंक टैंक फोरम से खिताब कर रहे थे।

थे। उन्होंने कहा कि आसियान भारत के भारत बहरुल काहिल विजन में मरकजी हैसियत रखता है और भारत की मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की पॉलिसी जुनूब मशरकी एशिया के साथ मिलकर काम करने से मुतालिक एक तवील मुद्दती अहद है। फोरम के लिए अमली इकदामात का जिक्र करते हुए जनाब सिंह ने बहरी सलामती, कुदरती आफात से निमटने, साइबर खतरात और फरोग पाती टेक्नोलॉजीज पर मरकूज एक मुश्तरक भारत आसियान रिसर्च एजेंडा वजा करने की तजवीज पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। वजीर आजम इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में मुनक़िद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर तमगों की फहरिस्त में चौथे मकाम पर है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पराग्वे के आसनसियों शहर में जारी आलमी स्केटिंग मुकाबलों के मर्दों के 1000 मीटर स्प्रिंट जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। तमिलनाडु के स्केटर बहुत कम फर्क से सोने का तमगा जीतने से चूक गए और दूसरे मकाम पर रहे। 1000 मीटर स्प्रिंट मुकाबले में उन्होंने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। उन्होंने मुकर्ररा दूरी 1 मिनट और 21.922 सेकंड में तय की। सोने का तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ी और आनंद कुमार के दरमियान वक्त का फर्क सिर्फ 4 मिलीसेकंड रहा। मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में खेले जा रहे चौथे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत की जीत के लिए 248 रन का निशाना रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 247 रन बनाए। वेस्टइंडीज के कप्तान ने 102 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने 4 ओवर्स में 1 विकेट पर 60 रन बना लिए थे। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। काबिना ने समाजी मदद से मुतालिक कौमी प्रोग्राम को मजीद 5 बरस जारी रखने को मंजूरी दी है। उसने माजूरी पेंशन के मुस्तफिदीन के लिए अहलियत की शराइत और इमदाद की शरहों में भी नजरसानी की है। हुकूमत ने IDBI बैंक की अहम तंजीमें 9 और रेलवे मुलाजिमीन के लिए 78 दिन के बोनस को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के साथ कलीदी शराकत दारी के भारत के अज़्म का इयादा किया है। दोनों ममालिक ने तिजारत, तवानाई और सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बाहमी ताल्लुकात की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत ने सऊदी अरब में सिविल बुनियादी ढांचे पर हमलों को नाकाबिले कबूल करार दिया है। उसने इन्हें फौरन रोके जाने पर जोर दिया। महाराष्ट्र ने 305 तालुकाओं को कहत से मुतासिर करार दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में हैदराबाद में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान चौथा T20 बैन-उल-अक़वामी मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार। संस्कृति मंत्रालय आज से नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और इस सम्मेलन का विषय है भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंध। और इस सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि, राजदूत, विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में अपना संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों पुरानी है और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा ज्ञान के साझा प्रयासों से जुड़ी हुई है। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: संस्कृति मंत्रालय में सचिव विवेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पढ़ते हुए कहा,
4: सो आई विल रीड द मैसेज ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आई एम प्लीज्ड टू लर्न दैट द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर थ्रू द नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली ऑन द थीम भारत्स कल्चर कनेक्शंस अक्रॉस द ग्लोब। आई वार्मली वेलकम द स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, डिप्लोमैट्स एंड अदर डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड हु आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। फॉर सेंचुरीज इंडिया'स सिविलाइजेशनल जर्नी हैज बीन अ स्टोरी ऑफ कल्चरल एक्सचेंज। Centers of learning such as Nalanda strengthened the exchange of knowledge between India and other parts of Asia. Monks, scholars, traders and travelers carried India's ideas to different parts of the world.

0: through land and maritime routes. Sites such as Angkor and Sambor Prey Cook in the Southeast Asia bear witness to this cultural dialogue, where Indian traditions interacted with local cultures and took distinctive forms. The cultural dialogue continues to evolve even today. Indian philosophy, music, dance, literature, cinema, and cuisine continue to connect India with societies across the world. Indian festivals and traditions are also celebrated with enthusiasm in many countries.
1: सचिव ने बृहत्तर भारत के बारे में बताया.
0: It's indeed a privilege for Ministry of Culture that Honorable Prime Minister has given us this mandate to take up the mission of bringing India's ancient connections with the rest of the world, to bring them out, to put in scholarly effort to establish these connections along with scholars of the countries in which we had our ancient connections, and then bring these papers and bring these connections with international recognition.
1: अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा. बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, एक आम श्रोता की दृष्टिकोण से अगर इसे समझने का प्रयास करें तो ये क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और इसका हमारी संस्कृति के लिए महत्व क्या है, और साथ ही हम जो अपने लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित देश के लिए, उस दिशा में इसका क्या महत्व है?
2: सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बृहत्तर भारत का अर्थ क्या है. इसका अर्थ भारत की पुरानी राजनीतिक सीमाओं का विस्तार नहीं है. इसका आशय उन व्यापक सांस्कृतिक संबंधों से है जिसके माध्यम से भारतीय विचार, भाषाएं, साहित्य, धार्मिक परंपराएं, कला और ज्ञान भारत के बाहर अनेक देशों तक पहुंचे, और इन संबंधों को व्यापारियों, समुद्री यात्रियों, विद्वानों, बौद्ध भिक्षुकों, कलाकारों और सामान्य लोगों ने विकसित किया है. तो यह प्रक्रिया कई शताब्दियों तक चलती रही और इसके प्रभाव आज भी अनेक देशों की संस्कृति में दिखाई देते हैं. तो भारत की सभ्यता की एक बड़ी विशेषता यह रही है कि उसने विभिन्न विचारों और परंपराओं के साथ समाज किया है, और यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं और दर्शन विकसित हुए हैं. आप देखिए, वैदिक साहित्य है, उपनिषद है, बौद्ध और जैन दर्शन है, योग, आयुर्वेद, गणित और खगोल विज्ञान ने भारत के बौद्धिक जीवन को समृद्ध बनाया है
1: जी.
2: तो समय के साथ इसमें से अनेक विचार भारत की सीमाओं से बाहर पहुंचे. दूसरे देशों ने उन्हें अपनी आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार अपना लिया, और इस प्रकार सांस्कृतिक संबंध केवल एक देश से दूसरे देश तक विचार पहुंचाने का माध्यम नहीं थे
1: जी.
2: बल्कि आपसी सिद्धियां और एक दूसरे को समृद्ध करने की प्रक्रिया भी थी. तो ये जो सम्मेलन हो रहा है ये इसी के विषय में.
1: पराशर जी, अगर आपसे मैं पूछूं तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की प्राचीन विरासत और सभ्यतागत संबंधों को वैश्विक मंचों पर रेखांकित करते रहे हैं, और भारत का जो सॉफ्ट पावर है उसका भी उन्होंने हमेशा जिक्र किया है, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर. जब भी कभी वो लोगों को संबोधित करते हैं तो ये बात जरूर रखते हैं. तो दूसरे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने की बात हो, संबंधों को और आगे ऊंचाई पर ले जाने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में बृहत्तर भारत का महत्व हमारे लिए क्या है?
3: जी निखिल जी, बृहत्तर भारत का जो एक महत्व वाधवा जी ने रेखांकित किया कि ये केवल भौगोलिक सीमाओं के विस्तार की कोई बात नहीं है
1: जी.
3: और जहां तक प्रधानमंत्री की आपने बात की, तो आज जो हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो वहां भारतीय डायस्पोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता. मोदी के साथ विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की जीवंत और खुशनुमा तस्वीरें हर बार हम लोग टेलीविजन पर और सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर देखते हैं. विदेश में भारतीयों ने खास पहचान कायम की है, और हम सब जानते हैं कि अब तो बहुत से देशों की राजनीति की मुख्य धारा में भी भारतीय मूल के लोगों ने अपनी पक्की और पुख्ता जगह बना ली है. जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर पढ़ा गया, और उन्होंने मुख्य रूप से, जो मुझे लगता है, कि तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया
1: जी.
3: कि आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत बड़ी पहचान और सम्मान मिल रहा है, इसमें किसी को भी शक संदेह नहीं होना चाहिए. दूसरी बात जो प्रमुख रूप से उन्होंने कही कि विदेशों में ले जाई गई भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कलाकृतियों और पुरावशेषों को वापस देश में लाने की कोशिशों में एक नई रफ्तार आई, यानी विदेशों में किसी भी तरह से जो हमारी धरोहरें थीं वो चली गई थीं, कलाकृतियां थीं, पांडुलिपियां थीं, तो अब दूसरे देश हमें ससम्मान वो हमारी पुरानी चीजें, पुरानी थाती, पुरानी ज्ञान परंपरा के स्रोत वापस लौटा रहे हैं. और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन पर कही कि भारत के संगीत, नृत्य और समृद्ध

0: दर्शन ने हमेशा दुनिया को जोड़ने वाले पुल के तौर पर काम किया है,
1: जी
0: और यही बात है, यही मूल संदेश है जो आपके प्रश्न में अंतर्निहित है। भारत का पूरी दुनिया के साथ जो कूटनयिक रिश्ता है वो कितना प्रगाढ़ है, कितना महत्वपूर्ण है, ये बात प्रधानमंत्री जी

0: मार्गों को विस्तार देना, जिसमें कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। हिंद प्रशांत की हम बात करते हैं, खुले हिंद प्रशांत की बात करते हैं, महासागर पहल की बात करते हैं, ये जो सारी चीजें हैं, अगर इनका एकीकरण करके देखें तो इन विचारों को कहां तक पहुंचता हुआ आप देखते हैं?
1: देखिए, जैसे कि आपने कहा कि इतिहास में कई उदाहरण हैं, जैसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंध इस इतिहास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर उनका बहुत गहरा प्रभाव है और बौद्ध धर्म ने भी भारत को एशिया के अनेक देशों से जोड़ा है। तो चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मध्य एशिया सब जगह बौद्ध विचार पहुंच चुके थे प्राचीन काल में। और फिर उसके बाद आज जैसे प्रधानमंत्री ने नालंदा और विक्रमशिला का जिक्र किया, इन प्राचीन शिक्षा केंद्रों की प्रतिष्ठा भी भारत के बाहर पहुंच चुकी थी। तो भारत की जो सांस्कृतिक यात्रा समुद्री मार्गों तक ही सीमित नहीं थी, क्योंकि मध्य एशिया को अगर हम देखें तो उसके साथ भी भारत के पुराने संबंध रहे हैं और एक रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध एक व्यापारिक नेटवर्क, उसके माध्यम से व्यापारी, यात्री, विद्वान सभी विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करा करते थे।
0: जी,
1: हम देखें तो इसका सांस्कृतिक मेल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज जो भारत की विदेश नीति है उसमें भी बृहत्तर भारत की अवधारणा आज भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम एक्ट ईस्ट नीति को देखें तो उसके अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इन देशों के साथ हमारे पुराने सांस्कृतिक संबंध आज व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क बनाने में सहायक हो सकते हैं। आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध समानता, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित होने चाहिए, ऐसा भारत का विश्वास है। और सांस्कृतिक की निकटता विश्वास बनाने में सहायता करती है, लेकिन उसे ठोस सहयोग और व्यावहारिक कार्यक्रमों में बदलने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए भारत ने दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग बढ़ाया है, क्योंकि संयुक्त शोध हम देख रहे हैं, काफी सारी छात्रवृत्तियां आरित की गई हैं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संरक्षण इस दिशा में उपयोगी कदम हो रहा है। और हम देखते हैं कि नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो युवाओं को शोध, छात्रवृत्तियां और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए और डिजिटल अभिलेखागार, ऑनलाइन पुस्तकालय और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी इस दिशा में उपयोगी साधन बन सकते हैं। तो यही बृहत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है और भारतीय परंपरा में जो वैष्णोदेव कुटुंबों का विचार है इसी व्यापक दृष्टि को व्यक्त करता है।
0: वाधवा जी, अभी आपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात की है तो बहुत ही कम शब्दों में अगर इसे समझना चाहें तो इसका बृहत्तर भारत की ऐतिहासिक अवधारणा के साथ किस तरह का संबंध नजर आता है और ये जो हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अतीत के संपर्क रहे हैं, आज के रणनीतिक सहयोग को कितना आगे ले जा रहे हैं, खासतौर पे आधुनिक विदेश नीति को धरातल पर उतारने के लिए आर्थिक और सुरक्षा हितों की जब हम बात करते हैं उनको आगे ले जाने की बात करते हैं।
1: जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण और महाभारत कहानियां दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति पर इनका बहुत गहरा प्रभाव है और इंडोनेशिया में रामायण नृत्य, नाटक और छाया पुतली कला के माध्यम से आज भी प्रस्तुत की जाती है। थाईलैंड में रामायण का स्थानीय रूप राम कियन के नाम से प्रसिद्ध है। कैम्बोडिया का अंकोर वाट मंदिर भी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। तो इन देशों में भारतीय परंपराओं को अपनी स्थानीय मान्यताओं और जीवन पद्धतियों के साथ मिलाकर नए रूप दिए गए हैं, इसलिए इन परंपराओं को केवल भारतीय संस्कृति का विस्तार मानना पर्याप्त नहीं है, वे उन देशों की एक सांस्कृतिक पहचान का एक हिस्सा है। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृतियां एक दूसरे से सीखकर, परिवर्तन स्वीकार करके और नए विचार अपनाकर समृद्ध होती है। और भारत ने जब एक्ट ईस्ट पॉलिसी शुरू करी थी 2014 में, उस समय में विदेश मंत्रालय में सचिव था और मुझे याद है कि बौद्ध धर्म के ऊपर हमने काफी काम किया और कई देशों को बौद्ध धर्म की जो विचारधारा है उसके चलते इन सभी देशों को भारत के साथ फिर से जोड़ने का काफी प्रयास किया था, क्योंकि भारत से बौद्ध विचार कई देशों में पहुंचे थे और बौद्ध भिक्षुओं ने लंबी यात्राएं की थी और विभिन्न देशों में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन की केंद्र स्थापित करने में योगदान दिया था। अब हम चीन को ही देखें तो चीन से फायान और हिंसांग जैसे यात्री भारत आए, उन्होंने यहाँ के धार्मिक जीवन, शिक्षा केंद्रों और सामाजिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया और दूसरी ओर भारतीय विद्वान बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन और अनुवाद के लिए चीन और दूसरे देशों में गए, तो हमने नालंदा का फिर से विकास किया और भारत सरकार आज भी नालंदा को काफी

0: मान्यता दे रही है, वो इसलिए है क्योंकि भारत प्राचीन काल में जो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान और शिक्षा का संसार का महत्वपूर्ण हिस्सा था, उसका एक रिवाइवल जिसको हम बोलते हैं, उसकी एक कोशिश आजकल हो रही है। और आगे मैंने गांधार की कला का भी जिक्र किया था,
1: जी
0: तो इसमें हमें भारतीय बौद्ध विषयों के साथ यूनानी और रोमन कला के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो इन सभी का प्रसार एक्ट ईस्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं विदेश नीति में, तो ये जो पुराने संबंध हैं भारत के इन सभी देशों के साथ में, इनका जो जिसको हम रिवाइवल बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर वो हो जाए तो विदेश नीति में इसकी काफी सहायता मिल सकती है।
1: जी पराशर जी, भारत और आसियान देशों की अगर हम बात करें तो साझा धार्मिक, साहित्यिक, भाषाई और कलात्मक विरासत की अक्सर चर्चा होती है। तो आपके विचारों को अगर मैं समझना चाहूं तो इन संबंधों की आज कितनी वास्तविक भूमिका आपको लगती है? क्या ये कोई केवल कूटनीतिक आयोजनों तक ही सीमित है, या फिर अभिव्यक्तियों तक सीमित है, या फिर व्यापार, शिक्षा, पर्यटन और क्षेत्रीय सहयोग में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं?
2: भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार बहुत से देशों तक बहुत पुराने समय से ही पहुंचने शुरू हो गए थे। भारत के लोग जिन देशों में पहुंचे, कुशल अकुशल मजदूर और कारीगर बनकर वे जिन देशों में पहुंचे और वहीं बस गए, वहां वहां भारतीय संस्कारों ने जड़ें जमाई। बहुत से विदेशी विद्वानों को भारतीय ज्ञान परंपरा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय विचार का प्रचार किया, उसे अपनाया भी और उसका प्रसार भी किया। भारतीय लोग व्यापार के लिए दूसरे देशों में जाते थे, बड़ी समृद्ध परंपरा थी, और विदेशी जो लोग थे वो व्यापार के लिए भारत आते थे। आज व्यापार का स्वरूप बहुत ज्यादा वैश्विक है। शिक्षा के लिए देश विदेश के द्वार उदारता से खुले हैं। हुनरमंद भारतीयों ने दुनिया के तमाम देशों में अपनी प्रतिभा के बूते बड़ी और सम्मानजनक जगह बनाई है। ऐसे में 73 भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का बड़ा इंपॉर्टेंस है।
1: जी
2: जैसा आपने बताया कि विश्व भर में भारत के सांस्कृतिक संबंध 73 भारत के जरिए जानने समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 73 भारत योजना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मूल उद्देश्य, मूल मकसद केवल इतिहास को याद करना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया एक कुटुंब है, जैसा कि अनिल जी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आज के आधुनिक दौर में भी भारत के वैश्विक सांस्कृतिक और कूटनैतिक संबंधों को नए आयाम देना है। खास बात यह है कि इस सम्मेलन में चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और ईरान समेत दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यानी नुमाइंदे, राजदूत और विद्वान लोग भाग ले रहे हैं। ऐसे में केवल एक दैशिक इसका उद्देश्य नहीं हो सकता है। मैं बहुत सारे एक दूसरे से संबंधित देशों के जो बनते हैं, तो केवल भाषाई आधार पर नहीं, साहित्यिक आधार पर नहीं, विकास के और दूसरे जो बुनियादी माध्यम है उनके द्वारा नहीं, एक बहुआयामी अप्रोच के साथ काम करना पड़ता है, और भारत सरकार ये काम कर रही है और काफी सफलतापूर्वक कर रही है, ये हम कह सकते हैं।
1: जी वाधवा जी, भारत चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच प्राचीन काल से व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंध, अपने आज के समय में जब लगातार हम ये देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और एशिया में भी इसका असर देखा जा रहा है, तो साझा इतिहास जो हमारा रहा है 73 भारत में, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे किस नजरिए से आज देख सकते हैं? क्या ये सभी देशों के बीच में सहयोग का एक बड़ा आधार बनेगा, या इतिहास को वर्तमान की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से हम अलग रखें, या दोनों को मिला करके आगे बढ़ सकते हैं?
0: 73 भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि संस्कृति लोगों को जोड़ सकती है, और आज दुनिया अनेक संघर्षों, राजनीतिक तनावों और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे समय में विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद का महत्व और बढ़ जाता है। अब किसी दूसरे समाज की भाषा, कला, साहित्य और परंपराओं को समझने से उसके लोगों के प्रति सम्मान भी बढ़ता है। इससे मतभेदों के बावजूद सहयोग के रास्ते खुले रखने में मदद मिलती है। तो नई पीढ़ी को हमें इस विरासत से जोड़ना है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। युवाओं को शोध और छात्रवृत्तियों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसर मिलने चाहिए। इसी तरह से कई बार किसी देश में सुरक्षित दस्तावेज दूसरे देश के इतिहास को समझने में भी सहायता करते हैं, तो ऐसे में संयुक्त शोध और जानकारी का आदान प्रदान विशेष महत्व रखता है। क्योंकि विरासत का संरक्षण भी साझा जिम्मेदारी है। सरकारों के साथ साथ स्थानीय समुदायों, संग्रहालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उनकी भागीदारी भी आवश्यक है। तो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसमें आपसी सम्मान

0: साझा हितों पर बहुत जोर है आज के कॉन्टेक्स्ट में, और हम जो ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है इसके कॉन्टेक्स्ट में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं। तो मुझे लगता है कि नई दिल्ली में ये जो आयोजित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। तो इससे आशा की जा सकती है कि भारत और विश्व के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर नए शोध होंगे और विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ेगा और हमारी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के नए रास्ते भी खुलेंगे।
1: जी पराशर जी, बृहत्तर भारत की अवधारणा सांस्कृतिक गौरव के संदर्भ में भी हमारे सामने आती है और इसे राजनीतिक विस्तारवाद से भी जोड़ा जा सकता है। तो आपका विचार क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई अंतर है या दोनों अब एक ही सिक्के के दो पहलू होकर के एक साथ चलेंगे ताकि इतिहास को ना तो संकीर्ण दृष्टि से देखा जाए और ना ही उसका अधिकतम राजनीतिक इस्तेमाल हो?
2: निखिल जी, बृहत्तर भारत योजना, ये योजना पहली बार भारत की किसी सरकार ने शुरू की है और इसके महत्व को इस तरह से हम समझ सकते हैं। ये योजना 2026 से 2031 के बीच तक चलेगी और इसके बाद इसका कोई दूसरा चरण पर विचार किया जा सकता है। बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जहां तक बात है तो ये भारत सरकार की बृहत्तर भारत योजना का ही हिस्सा है। संस्कृति मंत्रालय के ग्लोबल एंगेजमेंट टीम के तहत चलाई जा रही इस योजना के जो लक्ष्य हैं उन्हें पहले समझ लेते हैं।
1: जी
2: ये है कि दुनिया भर में बिखरी हुई भारत की साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण करना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए दूसरे देशों के साथ मिलकर, ये इम्पोर्टेंट है, दूसरे देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय नामांकन दाखिल करना भी इसका लक्ष्य है और एक समर्पित डिजिटल बृहत्तर भारत पोर्टल तैयार करना ताकि वैश्विक स्तर पर इस साझा विरासत को शोधकर्ताओं और आम जनता तक आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा सके, ये भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है। और ये सम्मेलन नई दिल्ली में क्यों किया जा रहा है, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, ये भी जान लें।
1: जी
2: ये सम्मेलन बृहत्तर भारत परिषद यानी ग्रेटर इंडिया सोसाइटी, काउंसिल नहीं, परिषद के लिए काउंसिल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, ग्रेटर इंडिया सोसाइटी की स्थापना के 100 साल पूरे होने पर किया जा रहा है, यानी ये शताब्दी वर्ष है बृहत्तर भारत परिषद। परिषद की स्थापना 14 अक्टूबर 1926 को तत्कालीन कलकत्ता में भारतीय विद्वानों ने की थी। इसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इस संस्था का मूल उद्देश्य भारत के बाहर, खासकर दक्षिण पूर्वी और मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति, कला, भाषा, धर्म और आध्यात्मिक विचारों के प्रचार और उसके ऐतिहासिक प्रभावों का अकादमिक अध्ययन करना। यानी हम देख रहे हैं कि 100 साल पहले ही हमारे देश के जो दूरदर्शी विद्वान थे उन्होंने भांप लिया था कि भारतीय संस्कृति की जड़ें पूरी दुनिया में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई रहें, इसके लिए बाकायदा एक संस्थागत प्रयास किया जाना चाहिए और वो प्रयास 100 साल पूरे होने पर किया गया। इसकी जो थीम है सम्मेलन की, 3 दिनों के दौरान विभिन्न देशों के भारत के साथ सभ्यतागत जुड़ाव, पुराने व्यापार मार्ग जैसे सिल्क रूट का जिक्र हुआ, उल्लेख हुआ, दर्शन, कला, वस्त्र यानी टेक्सटाइल और खान पान के आदान प्रदान जैसे 10 जीवंत विषयों पर गहन चर्चा इस सम्मेलन में होगी। एक एक करके अगर देखें हम तो शुरुआती जुड़ाव और सभ्यतागत संपर्क यानी प्राचीन पुरातत्व, व्यापारिक मार्ग और शुरुआती संपर्क के साधन कौन कौन से थे उनका अध्ययन करना, धार्मिक परंपराएं और ज्ञान प्रणालियां जैसे बौद्ध धर्म का उल्लेख हुआ, हिंदू और सूफी विचारों का वैश्विक प्रसार इसका उल्लेख हुआ, इससे संबंधित अध्ययन करना, दर्शन, भारतीय ग्रंथों और दर्शन का दूसरी भाषाओं और संस्कृतियों में रूपांतरण यानी अनुवाद और उसका प्रकाशन, मूर्त वास्तुकला, मूर्तिकला और प्रदर्शन कलाओं की निरंतरता क्या क्या रही इसका अध्ययन, प्राचीन काल में वस्तुओं और विचारों के वाहक के रूप में व्यापारिक संबंध किस तरह के थे
1: जी,
2: उसका अध्ययन करना, वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रवासियों द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और सभ्यतागत निरंतरता इसकी स्टडी करना, भोजन और पहनावे के माध्यम से संस्कृतियों का आपसी तालमेल बिठाना, अमूर्त विरासत का संरक्षण करना जैसे लोक कलाएं हैं, त्योहार हैं और मौखिक वाचिक परंपराएं हैं, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और भारतीय विद्वता की पुनर्प्राप्ति ये हासिल करना, और समकालीन दौर में यानी आज के दौर में कंटेम्पररी टाइम में सांस्कृतिक कूटनीति आधुनिक युग में सॉफ्ट पावर के रूप में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है इस बात को स्टडी करना इसका लक्ष्य है।
1: जी वाजवा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत के विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक के विचार विमर्श की जब बात होती है तो इन्हें दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में किस तरह का स्थान प्राप्त होता है, हमारी मतलब जो विरासत है उसे वहां पर किस तरह से लिया जाता है?
0: आज हमारे भारतीय मूल के लोग विश्व के अनेक देशों में रहते हैं और मॉरिशस, फिजी, कैरिबियन देश हैं, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी क्षेत्र में भारतीय समुदायों ने अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखा है, क्योंकि वो भारतीय भाषाएं बोलते हैं, त्योहार मनाते हैं और फिर संगीत, नृत्य और खान पान की परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही वे अपने निवास देशों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी योगदान देते रहते हैं। तो प्रवासी भारतीय भारत और दूसरे देशों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेतु हैं। उनकी भूमिका केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था सीमित नहीं है, वे अपने अनुभवों, भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं के माध्यम से दोनों समाजों को करीब लाते हैं और कई पीढ़ियां भारतीय परंपराओं को अपने निवास देशों की संस्कृति के साथ जोड़कर नए रूप भी दे रही हैं। तो इससे पता चलता है कि संस्कृति कोई स्थिर वस्तु नहीं है, जीवन के साथ बदलती है और आगे बढ़ती रहती है। तो आज योग हो या भारतीय संगीत हो, नृत्य, सिनेमा, साहित्य और खान पान की लोकप्रियता विश्व के अनेक देशों में दिखाई देती है। अभी हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत ने कुछ सालों से मनाया है, योग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दिया है और भारतीय फिल्मों और संगीत ने विभिन्न भाषाओं और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के लोगों को भारत से परिचित कराया है। ये भी भारत की सांस्कृतिक पहचान की मजबूती बताते हैं और भारत की संस्कृति में करुणा, अहिंसा, सहिष्णुता और प्रकृति के प्रति सम्मान जैसे विचारों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों के बीच इन विषयों पर विचार विमर्श उपयोगी हो सकता है और पारंपरिक ज्ञान का आधुनिक विज्ञान के साथ अध्ययन करके हम उसके उपयोगी पक्षों को समझ सकते हैं और मानवता के कल्याण में योगदान दे सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति शक्ति केवल उसके प्राचीन इतिहास में नहीं बल्कि दूसरों से सीखने, विचारों का आदान प्रदान करने और फिर विश्व को जोड़ने की क्षमता में भी है। तो यही बृहत्तर भारत का संदेश भी है, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, विश्व की विविधता का सम्मान करना और शांतिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण भविष्य के निर्माण में योगदान देना।
1: जी पराशर जी, आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है जहां पर ऐतिहासिक तथ्यों की बात तो होती है, साथ में उसमें अतिरंजित दावे भी बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। तो ऐसे में जब हम इतना बड़ा एक आयोजन लेकर के चल रहे हैं जहां पर बृहत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे सुनिश्चित होगा कि सांस्कृतिक विरासत की जो चर्चा होगी वो तथ्यों पर आधारित होगी और उन्हीं बातों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा जो वास्तव में हमारी विरासत से, हमारे इतिहास से, हमारी संस्कृति से जुड़े रहे हों।
2: निखिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटरनेट की दुनिया में आजकल गलत खबर, गलत सूचना, गलत तथ्य बड़ी आसानी से, बहुत सुगमता के साथ प्रचारित कर दिए जाते हैं। लेकिन आज इंटरनेट की सामग्री जो है पूरे विश्व में उसके प्रति जागरूकता भी बढ़ी है और सरकारी सिस्टम में भी ऐसे प्रावधान किए गए हैं ताकि इस तरह की जो फेक न्यूज है, गलत न्यूज है, गलत तथ्य है, उनका प्रसारण और उनका प्रसार प्रचार पर अंकुश लगाया जा सके, उन्हें फैलने से रोका जा सके। पूरे आयोजन का जो लक्ष्य है, अगर एक वाक्य में कहें तो औपनिवेशिक सीमाओं से दूर जाकर, परे जाकर, भारत को मात्र एक भौगोलिक भूमि न मानकर एक आध्यात्मिक और सभ्यतागत विचार के रूप में फिर से स्थापित करना है। और अगर इसके प्रचार प्रसार पर सही तरह से सकारात्मक माध्यमों से, सकारात्मक स्वरूप में लोगों तक पहुंचाया जाए, दुनिया भर में पहुंचाया जाए, तो मुझे लगता है कि लक्ष्य की प्राप्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसा कि अभी उल्लेख हुआ, प्राचीन भारत के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में उस समय बहुत सारे देशों के छात्र विद्या अध्ययन के लिए आते थे। भारत की पहल पर पूरी उस समय तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों की जो पहचान है, उनकी जो कीर्ति है, पूरी दुनिया में किस तरह फैली होगी। भारत की पहल पर पूरी दुनिया योग दिवस मनाती है, अनिल जी ने भी उल्लेख किया। भारतीय आयुर्वेद की ओर पूरी दुनिया में आकर्षण बढ़ रहा है। भारतीय खगोल विज्ञान का लोहा पूरी दुनिया मानती है। भारत ने शून्य दिया जिसके बिना गणितीय गणनाएं संभव ही नहीं थी। रामलीलाओं का आयोजन दुनिया के कई देशों में होता है। होली, दीपावली जैसे भारतीय त्योहार पूरी दुनिया में मनाए जा रहे हैं आजकल। भारतीय संगीत, नृत्य परंपराएं, खान पान, शाकाहार, संयम, प्रकृति के सम्मान की परंपरा पूरी दुनिया ने अपनाई है। अनिल जी ने भी कहा, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्राचीन विचारों की पूरी दुनिया कायल है और ये विशुद्ध भारतीय विचार हैं। अभी हमने प्रयागराज महाकुंभ में देखा कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु विदेशी नागरिक उसमें शामिल होने आए, और भी हमारे जो आध्यात्मिक आयोजन होते हैं उसमें बड़ी संख्या में विदेशों में रह रहे जो भारतीय तो आते ही हैं लेकिन विदेशी नागरिक भी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। ऐसे में इस तरह के जो आयोजन हैं वो बहुत आवश्यक हो जाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने पहली बार ये योजना 5 साल के लिए लागू की है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और बृहत्तर भारत योजना कोई राजनीतिक योजना नहीं है मेरे हिसाब से, ये एक सांस्कृतिक जो धरोहर है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है बहुत प्राचीन समय से, उसका पूरे विश्व में प्रचार प्रसार का ये अच्छा अवसर है। और इसके प्रचार प्रसार पर सरकार को भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो संस्कृति कर्मी है हमारे देश के, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इनको भी इसके प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान देना चाहिए, तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे, और खासतौर पर नई पीढ़ी के सामने।
1: जी अनिल वाधवा जी और रवि पराशर जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे बृहत्तर भारत, विश्व में सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाते एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।
5: मीडियम वेव 188.3 मीटर्स पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है नाटक अलिफ लैला की कहानी, प्रस्तुत करता है शाकिर अली।

0: लगता है आज भी किस्मत अच्छी नहीं है। अब ये आंधी शुरू हो गई। खैर जो भी हो, जाल तो फेंकते ही है। पानी तो अच्छा गहरा है, अब कुछ हाथ आए तो जाने। चलो खींच कर देखते हैं। अरे ये तो कहीं अटक गया, लगता है किसी चट्टान में फंस गया है। आ गया ऊपर। तेरे की तो खाली लोटा हाथ आया है, लेकिन इस पीतल के लोटे को बंद करके ये मोहर क्यों लगी है? लगता भी भारी है, शायद इसमें कुछ है। ढक्कन तोड़ना पड़ेगा। ढक्कन तो खुल गया।
1: हमको किसने आजाद किया?
2: ये भूत कहाँ से आया? आधा धुआं और आधा ये आसमान में टंगा भूत।
1: बुढ़े अब मरने को तैयार हो जा।
2: लेकिन भैया जैसा मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, तुम्हें कैसे रिहाई दिलवाई है, फिर ये बेइंसाफी क्यों?
1: बकवास बंद कर बुढ़े। मरने से पहले अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता।
2: ख्वाहिश?
1: हाँ।
2: अब ख्वाहिश कैसी भैया? एक बात थी।
1: हाँ क्या बात थी? जल्दी बोल, जल्दी बोल।
2: मैं जिन साहब तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता।
1: हैं? किस बात पर?
2: अरे यही कि तुम इतने बड़े ऊंचे पूरे इस लोटे में बंद थे। तुमने ये सारी बातें मेरी जान लेने के लिए तो नहीं गणी?
1: तेरी ये मजाल। तू मुझे झूठा कहता है?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं भैया, जैसा लगा वैसा।

0: लगता है आज भी किस्मत अच्छी नहीं। अब ये आंधी शुरू हो गई। खैर जो भी हो, जाल तो फेंकते ही है। पानी तो अच्छा गहरा है, अब कुछ हाथ आए तो जाने। चलो खींच कर देखते हैं। अरे ये तो कहीं अटक गया, लगता है किसी चट्टान में फंस गया है। आ गया ऊपर। अरे तेरे की तो खाली लोटा हाथ आया है, लेकिन इस पीतल के लोटे को बंद करके ये मुहर क्यों लगी है? लगता भी भारी है, शायद इसमें कुछ है। ढक्कन तोड़ना पड़ेगा। ढक्कन तो खुल गया।
1: हमको किसने आजाद किया?
2: ये भूत कहाँ से आया? आधा धुआं और आधा ये आसमान में टंगा भूत।
1: बुढ़े अब मरने को तैयार हो जा।
2: लेकिन भैया जैसा मैंने तुम्हारे साथ भलाई की है, तुम्हें कैसे रिहाई दिलवाई है, फिर ये बेइंसाफी क्यों?
1: बकवास बंद कर बुढ़े। मरने से पहले अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता।
2: ख्वाहिश?
1: हाँ।
2: अब ख्वाहिश कैसी भैया? हाँ, एक बात थी।
1: हाँ, क्या बात थी? जल्दी बोल, जल्दी बोल।
2: मैं जिन साहब तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आता।
1: हैं? किस बात पर?
2: अरे यही कि तुम इतने बड़े ऊंचे पूरे इस लोटे में बंद थे। तुमने ये सारी बातें मेरी जान लेने के लिए तो नहीं गणी?
1: तेरी ये मजाक। तू मुझे झूठा कहता है?
2: नहीं भैया, जैसा लगा वैसा कह दिया। जान लेना है तो वैसे ही ले लो।
1: अच्छा तुझे यकीन नहीं तो ले, खुद अपनी आंखों से देख ले। मैं फिर लोटे में चला।
0: ले अब मैंने भी ढक्कन लगा दिया, और अब हजरत सुलेमान की मोहर भी। बड़ा होशियार बनता था।
1: मछले भाई, तू इतनी जल्दी मेरे मजाक का बुरा मान गया? तूने क्या मुझे सचमुच इतना नीच समझ रखा है कि मैं अपने पर एहसान करने वाले पर जुल्म करूंगा?
0: मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं। क्या मुझे यूनान के वजीर और हकीम दूधबान की कहानी याद नहीं?
1: हकीम दूधबान?
0: हाँ हाँ।
1: वो कौन था?
0: अरे
1: कौन था?
0: उसकी कहानी नहीं जानता तू?
1: नहीं
0: तो सुन। यूनान का एक बादशाह था।
1: अच्छा।
0: बहुत ताकतवर और बेहद शान शौकत वाला।
1: अच्छा।
0: लेकिन खुदा की कुदरत को उसे कोढ़ हो गया था। दुनिया भर का इलाज करवाया लेकिन कोई तदबीर कारगर न हुई। फिर एक दिन
3: हुजूर का इकबाल बुलंद हो।
4: तुम कौन हो?
3: अलीजा, मैं एक नाचीज हकीम हूँ। आपके शहर में आया, मालूम हुआ कि जहां पनाह के दुश्मनों को तकलीफ लाहक है।
4: तो तुम इसमें क्या कर लोगे? अरे भाई, बड़े बड़े हकीम आए, नाकाम चले गए, कीमती से कीमती दवाएं और मरहम बने, कोई काम ना आया। अब तुम क्या मौजजा दिखाओगे?
3: हुजूर, एक मौका तो देकर देखें।
4: लेकिन हम हर दवा और हर मरहम से तंग आ चुके हैं।
3: आलीजा, बंदा मिजाज आली को पहचानता है और बिला दवा खिलाए और मरहम लगाए हुजूर का इलाज कर सकता है।
4: भाई कमाल है, इसका हम जरूर तजर्बा करेंगे। कल तक तुम शाही मेहमान खाने में रहो, कल दरबार में फिर आओ। तुम्हारी दवा ने काम किया तो बड़े से बड़ा इनाम और एजाज तुम्हारा, और ये सब ढोंग निकला तो कल का सूरज डूबने से पहले तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा।
3: हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर।
2: जान की अमान पाऊं तो हुजूर से कुछ अर्ज करूं?
4: कहो वजीर, यहां तखलीए में कौन सी बात कहना है?
2: हुजूर के सारे नमकवारों को इससे बड़ी खुशी है कि जहां पनाह को खुदा के हुक्म से मूजी मर से निजात मिली, लेकिन हुजूर दरबार के अमीरों में कुछ परेशानी है।
4: वो कैसी?
5: हुजूर, जो चुटकी बजाते ऐसे पुराने मूजी मर्ज को दूर कर सकता है, वो चुटकी बजाते खुदा ना करे हुजूर किसी की जान भी ले सकता है।
4: वजीर आजम, मैंने तुम्हें अपना वजीर इसलिए बनाया था कि मुझे लगा था कि तुम दूसरों से ज्यादा समझदार और अकलमंद हो, लेकिन आज तुम घटिया ना समझ छोटी छोटी बातों पर दूसरों से जलने वाले आम दरबारियों की तरह बातें कर रहे हो, और चाहते हो कि मैं हकीम की तरफ से बदगुमान हो जाऊं, उसे कत्ल कर दूं और फिर उस सौदागर की तरह सारी उम्र पछताता रहूं जिसने जल्दबाजी में अपने प्यारे तोते की जान उसे गुस्से में जमीन पर पटक कर ले ली थी।
2: जहां पना, वो क्या किस्सा है?
4: एक सौदागर की नहायत खूबसूरत बीवी थी, वो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन वो अक्सर तिजारत का माल लिए मुल्क मुल्क शहर शहर चक्कर लगाता, महीनों घर से दूर रहता। एक बार उसे बाजार में ऐसा तोता मिल गया जो इंसानों की तरह बोलता था, वो उसे खरीद लाया, सोचा कि उसकी बीवी का जी बहलाएगा।
2: फिर क्या हुआ जहां पना?
4: अगली बार दौरे से लौटकर घर आया तो सोचा तोते से बातें करके दिल बहलाए।
6: अरे तोते मिया, तुम्हारी कटोरी में तो बड़ा मालटाल है, लेकिन तुम तो वही टटेरी के टटेरी हो जैसा हम छोड़ गए थे।
7: किस्मत अपनी अपनी।
6: अच्छा, बेगम साहिबा का दिल तो बहलाया होगा, लगती तो खुश है।
7: काला सही, जवान तो है, गुलाम सही, पर मालिक जैसा सुख देता है।
6: तू झूठ बकता है, मुझ पर जान देने वाली बीवी और बेवफा, नामुमकिन।
4: लेकिन सौदागर के दिल को बात लग गई, बीवी को बहुत भला बुरा कहा और जान से मार डालने की धमकी दी। वो उस वक्त तो चुप रही, फिर उसने एक चाल चली और अगले दिन।

0: पिंजरा उनके कमरे में तू?
1: जी बेगम साहिबा, आप मजा आएगा उसे अपनी चुगलखोरी का।
2: रात को मिट्टू मियाँ की खातिरदारी तो तूने ठीक से की ना? पानी का छिड़काव, चक्की की आवाज और आईने की चमक।
1: खनीज आपके हुक्म में कसर छोड़ सकती है? चलिए दरवाजे की ओर से सुने तोते और मालिक के बीच क्या गुजरती है।
0: हाँ चलो चलो।
3: तोते मियाँ, आज दिन में भी ऊँग रहे हो, क्या बात है? पागल हो गया है? कल की रात तो बेहद गर्म थी।
4: रात भर पिंजरे में तोता और तोते के सीने में दिल तूफान की शिद्दत से लरसते रहे हो।
3: ला हौल विला कुव्वत।
5: क्या बात है मेरे सरताज?
3: ये तोता यकीनन पागल है, कहता है कल रात तूफान आया था, बारिश और आंधी आई थी।
5: अब आप खुद ही देख लीजिए, खुश्क रात को तूफानी रात बता रहा है।
4: हाँ।
5: बात कम करता है और शायरी ज्यादा। और आप है कि उसकी बात का एतबार करते हैं और अपनी बीबी को बेवफा समझते हैं।
4: आपके सर की कसम।
3: झूठ, गुस्ताख तेरी यह हिम्मत मेरे दिल में मेरी बीवी की पाक दामनी पर शुबा पैदा करता है। तू तो जहर है, तू तो मेरे घर में आग लगा देगा। ये ले।
5: ये आपने क्या किया? इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसकी जान निकल गई।
3: वो इसी का मुस्तहिक था।
6: फिर क्या हुआ हुजूर?
7: फिर एक दिन जब सौदागर देर से घर लौटा तो उसने देखा कि हबशी गुलाम उसकी ख्वाबगाह से निकल रहा है।
8: क्या बात है।
3: कौन है तू और हरम सरा में कैसे दाखिल हुआ?
8: अरे ये मेरी महबूब का महल है, महल हरम सरा नहीं है। जा, भाग जा, वरना मिट्टू की तरह मार दिया जाएगा। हैं? जा, जा, चला जा।
3: जलील हबशी, अब मिट्टू की तरह मरने की बारी तेरी है और तेरी महबूबा की। ले संभल।
5: कौन है? क्या हुआ? कब आए?
3: जब आंधी और तूफान गुजर रहा था।
5: आंधी तूफान?
3: हाँ, उधर देख, वही है ना तेरा आंधी और तूफान। और अब तेरे खात्मे के साथ उस आंधी तूफान का गुबार भी साफ हो जाएगा। ये ले।
7: सौदागर ने अपनी बेवफा बीवी और गुलाम को तो जहन्नम पहुंचा दिया, लेकिन उसके दिल की आग न बुझी और उम्र भर तोते की वफादारी को याद करके रोता रहा।
6: जहां पना, ये वाकई एक बड़ी इबरत अंगेज कहानी।
7: बेशक।
6: लेकिन हुजूर, मैंने भी इस वक्त आपके सामने हकीम के बारे में जो अर्ज रखी है उसके लिए अपने फर्ज के एहसास से मजबूर था। हुजूर,
7: हम तुम्हारी वफादारी से बहुत खुश हुए। हम अभी इस मामले का तस्फिया किए देते हैं, अब तुम जा सकते हो।
6: जो हुजूर।
7: हकीम दूधबान को फौरन हाजिर करो।
9: बंदे के लिए क्या हुक्म है आलीजा?
7: हकीम दूधबान, तुमने हमारी बहुत खिदमत की है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखो, हकीम को महल के बाहर ले जाकर इसका सर उड़ा दो।
6: जी, लेकिन हुजूर, इतनी तो इजाजत दें कि मरने से पहले अपनी खता का इल्म तो हो जाए।
7: हमें पता चला है कि तुम हमारी जान लेने की साजिश कर रहे हो, ले जाओ इसे।
6: हुजूर, हुजूर, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश थी।
7: बोल बोल, क्या बात है?
6: जिस दिन से हुजूर का नमक चखा है उसी दिन से बंदा इस तलाश में था कि अक्सीर का नुस्खा मुझे मिल जाए।
7: फिर क्या हुआ?
6: हुजूर की जूतियों का सदका है कि वो नुस्खा अब मुझे मिल गया है। मैंने ये नुस्खा एक किताब में लिख दिया है। ये किताब मेरे तकिए के नीचे दबी है इस डर से
9: कि कोई भी इसे आसानी से ना समझ ले। बंदे ने हर सफ़े की आखिरी सत्र में इस नुस्खे के इशारे लिख दिए हैं और 40वें सफ़े पर इसकी तरकीब इस्तेमाल है। मेरी इल्तिजा है।
7: बोल, क्या इल्तिजा है?
9: कि मेरे कत्ल के फौरन बाद ये नुस्खा खुद पढ़ लें, वरना डर है।
7: किस बात का डर है?
9: कि देर लगने से लिखाई धुंधली ना पड़ जाए।
7: क्यों?
9: क्योंकि वो खास किस्म की जड़ी बूटियों से लिखी गई है।
7: जल्लाद
10: आलीजा,
7: हुक्म की तामील हो।
10: चलो
11: आलीजा, आलीजा मेरी आपसे इल्तिजा है, उस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा आलीजा।
12: जहां पना किताब।
7: यहां रखो और ये शमा करीब कर दो। किताब में क्या क्या लिखा है कमबख्त ने? ये बारीक बारीक सफ़े भी तो आपस में कैसे चिपक रहे हैं, उंगली को गीला करना पड़ेगा। ये पहले सफ़े पर तो किसी उस्ताद का शेर है। अगला सफ़ा देखें, किसी बुजुर्ग का कौल है। ये खांसी का इलाज है। कमबख्त ने बेवकूफ तो नहीं बनाया। ये हलक में क्या हो रहा है? ये नसें मेरी क्यों खिंच रही हैं? 40वां सफा किधर है? किधर है 40वां सफा? ये आंखों के सामने धुंध कैसी? ये 40वां। अरे क्या लिखा है, क्या लिखा है? तुम वो सारा जहर चाट चुके हो। अब बचने की कोई तदबीर नहीं।

0: लेकिन मछेरे भाई, मैं तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा।
1: अच्छा,
0: बल्कि दुनिया के सारे खजाने तुम्हारे सामने खोल कर रख दूंगा।
1: मगर मैं तुझ पर कैसे एतबार करूं?
0: भैया, मैं हजरत सुलेमान की कसम खाता हूँ, तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं करूंगा। खोल दो। हाँ, खोल।
1: ठीक है, मैं तुझे आजाद करता हूँ।
2: पहले जैसा हो गया।
0: तुमने मेरे वादे पर भरोसा किया मछेरे भाई, मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा।
1: अच्छा।
0: चलो, पहाड़ के पीछे वाले तालाब का रास्ता बता दूं। बाईं तरफ जो सूखा नाला दिखाई दे रहा है ना,
2: ये इधर।
0: हाँ, इस तरह।
2: अच्छा।
0: उस पर चढ़कर चले जाओ।
2: अच्छी बात है।
0: ऊपर वो झील मिलेगी।
2: अच्छा।
0: उसमें जाल डालना।
2: अच्छा।
0: उसमें चार रंग की मछलियाँ आएंगी।
2: चार रंग की?
0: हाँ, तुम उन्हें ले जाकर बादशाह के सामने पेश कर देना। वो तुम्हें मुंह मांगा इनाम देगा और तुम माला माल हो जाओगे।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: अच्छा, अब मछेरे भाई मैं चला।
1: चले झील में भी किस्मत आजमाई करके देखें। चलता हूँ भैया।
3: मछेरे
1: जहाँ पना,
3: तुम ये रंग बिरंगी मछलियाँ कहाँ से लाते हो?
1: जहाँ पना, पहाड़ की दूसरी तरफ एक झील है, वहीं से।
3: देखो, हम खुद वो झील देखना चाहते हैं।
1: गुलाम कल सुबह हाजिर हो जाएगा जहाँ पना।

0: हुजूर आली, अब तो सूरज भी छिपने को आया, झील तो आपने देख ही ली थी, अब क्या तलाश है?
1: मछेरे में बात की तह तक पहुंचना चाहता हूं। देखो, इस पेड़ पर चढ़ जाओ
0: जी
1: और बताओ आसपास कोई चीज दिखाई देती है?
0: जो हो सरकार।
2: देखो संभल के।
1: हाँ मछेरे, कुछ नजर आया क्या?
3: हुजूर, हर तरफ जंगली जंगल है। हाँ हाँ हाँ, बाई तरफ आसमान से लगा कुछ साया सा दिखाई देता है हुजूर, शायद कोई इमारत हो।
1: ठीक है ठीक है, उतराओ उतराओ, उधर ही चलकर देखते हैं।
3: अच्छी बात है,
1: संभल के आओ आओ।
0: हुजूर
1: चलो।
0: हुजूर रुकिए, आगे तो खंदक है।
1: कमाल है, इस जंगल में ये महल आज तक देखा ना सुना कि हमारे ही मुल्क में कोई इतना बड़ा काले पत्थर का महल है। एक काम करो, घोड़े इधर बांधो।
0: जी हुजूर।
1: देखते हैं अंदर कौन है।
0: अच्छी बात है।
1: अंदर से तो कोई जवाब नहीं आता। मछेरे, तुम यहीं घोड़ों के पास रहो।
0: बहुत अच्छा हुजूर।
1: और हाँ, चौकन्ना रहना।
0: जी हुजूर।
1: मैं अंदर जाकर देखता हूं।
0: हाँ हाँ।
1: कोई है? अरे महल में कोई है? अरे भाई कोई है? ताज्जुब है, सामने के दालान में कुछ रोशनी है, वहां शायद कोई हो। अरे ये तो कोई रो रहा है। ए, ए, कौन हो तुम और रोते क्यों हो?
0: आप कौन हैं? यहां कैसे आए?
4: जितनी जल्दी हो निकल जाइए यहां से।
1: लेकिन तुम्हें हुआ क्या है, क्यों रोते हो? मैं जाऊंगा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा।
0: लेकिन मैं नहीं जा सकता।
1: आखिर क्यों?
0: देखना चाहते हो तो लो।
1: अरे तुम्हारे पांव तो पत्थर के हो चुके हैं, ये सब कैसे हुआ?
0: तुम अपनी जान के दुश्मन न बनो, इससे पहले कि वो खबीस औरत यहां आए तुम निकल जाओ।
1: मैं इस जादू के तमाशे को समझना चाहता हूं और तुमको उससे निजात दिलाना चाहता हूं।
0: अगर नहीं मानते तो सुनो, मेरी बीवी दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से है। शादी के बाद महीनों में उसके हुस्न शबाब के नशे में मदहोश रहा, लेकिन एक दिन दो लौंडियों ने मेरी आंखें खोल दी।
1: कैसे?
0: मैं दोपहर को लेटा था, वो पंखा जल रही थी, समझी कि मैं सो गया।
1: फिर
0: मेरी बीवी सच धज कर चल दी, मैंने भी छिपकर उसका पीछा किया। महल के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था।
4: उसने मंत्र पढ़कर फूंका और अपने आप दरवाजा खुल गया। वो चलते चलते एक झोपड़ी पर पहुंची, वहां एक निहायत बदसूरत हबशी था। फिर चराग बुझाकर उसके पहलू में लेट गई। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं नंगी तलवार लिए वहां पहुंच गया। करीब था कि दोनों को मौत के घाट उतार दूं, लेकिन उसने मंत्र पढ़कर फूंका और मेरा धड़ पत्थर का हो गया। और फिर
1: क्या हुआ?
0: फिर उसने गुस्से में चारों तरफ हाथ फैलाकर मंत्र पढ़ा और पूरा शहर झील बन गया और सारे लोग रंग बिरंगी मछलियां। और अब
1: क्या करती है वो?
0: अब वो रोज सुबह शाम यहां आती है, मुझे सौ सौ कोड़े मारती है और मेरे मेरे जिस्म को मोटे छुपने वाले कंबल में लपेटकर चली जाती है। सुबह की तकलीफ कम नहीं होती कि वो
4: वो शाम को नए घाव लगा जाती है।
1: लेकिन यकीन रखो शहजादे, कल की सुबह ऐसी होगी जिसके बाद शाम नए घाव लेकर नहीं आएगी।
4: क्या?
1: तो खुदा हाफिज शहजादे।
4: खुदा हाफिज।
1: उम्मीद है कि जब हम कल मिलेंगे तो तुम्हारे चेहरे पर दुख नहीं इत्मीनान होगा।
4: हुजूर वाला, गुलाम तो घबरा ही गया था।
1: हाँ मछेरे, तुम्हें भी मालूम हो जाएगा। अब तुम उस सामने वाले पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाओ।
4: बहुत अच्छा।
1: और सुनो
4: जी,
1: गुंबद वाली इमारत से जैसे ही कोई औरत निकले, कोयल की बोली बोलकर इत्तला कर देना।
4: जो सरकार। हाँ। जो
1: ये इशारा मिल गया। हाँ, ये रही तलवार। तू निकल जा सालिम औरत, फिर समझूंगा तेरे नापाक हबशी को। हाँ, चली गई, पहले हबशी का काम तमाम कर दूं।

0: मछेरे उतर आओ।
1: बहुत अच्छा,
0: आओ।
2: जी सरकार।
3: देखो, मैं यहाँ इस हबशी की जगह पर लेटता हूँ, मुझे कंबल से अच्छी तरह छिपा देना और फिर पेड़ पर बैठ जाना। औरत वापस आए तो वही कोयल की आवाज। समझ गए?
4: बहुत अच्छा,
3: समझ गए?
4: बहुत अच्छा। हाँ,
3: शाबाश, इशारा मिल गया। अब लगता है वो जालिम औरत आ रही है।
5: अलिफ लैला की कहानी अभी आप सुन रहे थे। डॉक्टर हामिद हुसैन का लिखा ये नाटक प्रस्तुत करता थे शाकिर अली। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए लक्ष्मी शंकर का राग मारू बिहाग में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी शंकर का राग मारू बिहाग में ख्याल गायन। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से ही 11:05 पर सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अमन यादव। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 3 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि ₹375 और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए ₹625 होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांग जन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम ₹17,951 का भुगतान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कनाडा के साथ एक ऐसी रचनात्मक और भविष्योन्मुखी राजनीतिक साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जिसे दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के आवागमन में भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और लोगों के बीच आपसी संपर्क क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा कि व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाने से लेकर ऊर्जा, नवाचार और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तक भारत और कनाडा की प्रगति से वे उत्साहित हैं। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और तुरंत बंद होने चाहिए। श्री जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के साथ नियमित संपर्क में है और परामर्श भी जारी किया गया है। सरकार ने भारत मॉरिशस के दोहरे कराधान निवारण समझौते में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें कर चोरी और कर से बचने के लिए संधि प्रावधानों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक प्रमुख उद्देश्य परीक्षण शामिल किया गया है। संशोधित समझौते के अंतर्गत यदि किसी लेन देन या व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कर संधि लाभों को प्राप्त करना पाया जाता है तो ऐसे लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिश्वतखोरी के एक मामले में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार और 2 अन्य निजी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने पुणे में आरोपी अधिकारी के ठिकाने से 1,73,00,000 रुपये बरामद किए हैं। इसके अलावा मैसूरु, बेंगलुरु और दिल्ली में आरोपियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 50,00,000 रुपये नकद और मामले से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। CBI ने कहा है कि मामले की आगे का जाँच जारी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत किसानों की आजीविका में सुधार करते हुए वैश्विक खाद्य भंडार बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री चौहान ने बताया कि 2014 से 2024 के बीच खाद्य उत्पादन में 49% की वृद्धि के साथ भारतीय कृषि ने कमी के दौर से निकलकर आत्मनिर्भरता और रिकॉर्ड उत्पादन की ओर कदम बढ़ाया है और दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। कृषि में महिलाओं के योगदान को सम्मान देने के लिए कल नई दिल्ली में राष्ट्र स्तर पर महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार महिलाएं बुआई, रुपाई, फसल कटाई, पशुपालन और बीज संरक्षण जैसे कई कामों में अहम भूमिका निभाती है। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जीवन एक सुंदर नृत्य की तरह है, जहाँ कभी खुशियों की धुन बजती है तो कभी चुनौतियों की ताल पर कदम मिलाने पड़ते हैं। जो इंसान अपने मन में उत्साह, विश्वास और ईश्वर के प्रति प्रेम रखता है, वह मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराना सीख जाता है।

नई सुबह जिंदगी हमें एक नया अवसर देती है। बीते कल में कुछ अच्छा हुआ हो या कुछ ऐसा जिसे हम बदलना चाहते हो, आज हमारे पास फिर से शुरुआत करने का मौका है। इसलिए डर कर नहीं है, पूरे आत्मविश्वास के साथ जिंदगी का स्वागत कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रोग्राम है भोर सुहानी। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब नेचर की सुंदरता, अपनों का साथ और मन की शांति हमें एहसास कराते हैं कि जीवन कितना अनमोल है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरण, ये सब हमें सिखाते हैं कि खुशियाँ हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि छोटी छोटी बातों में भी छुपी होती हैं।